ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है, FM 100.7 MHz पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की 19वीं तिथि, तदनुसार 9 मई सन 2026। इस समय स्टूडियो घड़ी में सुबह के 5:59 होने ही वाले हैं। मंगल ध्वनि के साथ हमारी आज की यह प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं, सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहां पहली बार सरकार बनाने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री अधिकारी ने राज्यपाल आरएन रवि से भेंट की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कलगम तिवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने टीवीके को समर्थन देने की खबरों का खंडन किया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि वे आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल टीवीके प्रमुख ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर सहयोगी दलों के समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने ओमान की खाड़ी में एक तेल टैंकर को कब्जे में ले लिया है। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि उनके सुरक्षा बलों ने नाकेबंदी का उल्लंघन करने पर ईरानी झंडे वाले 2 टैंकरों को रोक दिया है। इन घटनाओं के बाद ईरान और अमरीका के बीच संघर्ष विराम टूटने के कगार पर पहुंच गया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इनमें दोनों पक्षों को 1,000 कैदियों का आदान प्रदान करना शामिल होगा। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध बताते हुए कहा कि स्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए बातचीत जारी है।

0: उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मौसम विभाग ने 13 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में बिजली चमकने और बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिक्काल में तेज बारिश हो सकती है। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की है। और IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने 8 विकेट खोकर 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में 147 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार चौथी जीत के साथ कोलकाता अंक तालिका में 7वें स्थान पर पहुंच गई है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। जयपुर में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण में लीजिए सुनिए हमारे यहाँ से आज पूरे दिन में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम और उनका प्रसारण समय। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:10 पर आप सुनिए चिंतन भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना होगा सुबह 6:15 से। 6:45 पर आप सुनेगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार। श्री रामचरित मानस गान आप सुन सकते हैं सुबह 7:20 से। कलाकार उत्तरा केलकर सुरेश वाडकर एपिसोड नंबर 370। दैनिक कार्यक्रम नमस्कार चूरू होगा 7:30 पर। और समाचार संध्या का अंक होगा सुबह 8 बजे और मॉर्निंग न्यूज का प्रसारण किया जाएगा सुबह 8:15 से। इन समाचारों को हम दिल्ली के अंदर से रिले करेंगे। 8:30 पर आप सुनिए कार्यक्रम सुर संगम। 9 बजे आप सुनेगा हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से प्रसारित हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

देशगान का समय रहेगा सुबह 9:10 का, सुबह 9:15 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम साहित्य सुगंध में हिंदी वार्ता परिवार समाज की आवश्यकता, वार्ताकार सुरेश कुमार शर्मा। 9:30 पर आप सुनिए कार्यक्रम दिल से दिल तक, जो होगा आपके फेसबुक कमेंट्स पर आधारित। 10:00 आप सुनेगा हमारे मुंबई केंद्र से प्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम। 11:05 पर आप सुनिए कार्यक्रम विवरण। 11:05 पर आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। एक बार पुनः सुने, सुबह 11:00 सुनिए हमारे केंद्र से कार्यक्रम विवरण। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का प्रोग्राम सुर बाहर होगा दिन में 12:00 से। 12:30 पर आप सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर, कलाकार होंगे विनोद कुमार एंड पार्टी। 1:05 पर महिलाओं के लिए होगा कार्यक्रम महिला जगत, दिन में 2:00 आप सुन सकते हैं मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार का समय रहेगा 2:15 का। इन समाचारों को हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। दिन में 2:30 पर आप सुनिए तराने नए पुराने, 3:00 हमारी प्रातःकालीन सभा का समापन होगा। हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होगी 5:00 कार्यक्रम विवरण के साथ। 5:55 पर आप सुनिए कार्यक्रम विवरण। 6:00 आप सुनिएगा हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित पहले हिंदी में समाचार, अंग्रेजी में समाचारों की 6:05 पर। देशभक्ति फिल्मी गीत आप सुनिए 6:10 पर। 6:20 पर आप सुन सकते हैं दिल्ली केंद्र से प्रसारित संस्कृत में समाचार। 6:30 पर हिंदी में और 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार हम जयपुर से रिले करेंगे। यहीं से आप सुनेगा जिले की चिट्ठी। 7:00 आप सुन सकते हैं हमारे केंद्र से कार्यक्रम किसान वाणी, चर्चा होगी खेती बाड़ी और नवाचार, दूसरी चर्चा होगी पशुपालन के फायदे। 7:30 पर और 9:15 पर सुनिए राजस्थानी लोक संगीत, 8:00 सुन सकते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। समाचार संध्या का अंक होगा 8:45 पर। 9:00 आप सुनिए न्यूज एट 9, 9:30 सुन सकते हैं हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम संस्कृति भारती। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम होगा 10:00 से। इस कार्यक्रम को हम

अभी आप सुन रहे थे हमारे इस केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम और उनका प्रसारण समय। आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है, प्रस्तुत है चिंतन। श्रोताओं, जीवन में अनेक बार ऐसे अवसर आते हैं, ऐसा समय आता है जब हम अपने आप को अकेला और तन्हा महसूस करते हैं, और इसका कारण भी यह होता है कि हम किसी समस्या से हमारा सामना होता है, कोई अवसाद हमारे मन में होता है, कोई ऐसी बड़ी बात जो हमारे जहन में घूमती रहती है जिसका समाधान हमें मिलना मुश्किल सा हो जाता है। ऐसे में कुछ मौक़ों पर तो हमें अपने आप की मदद मिल जाती है, जबकि कभी कभार हमें मदद मांगनी पड़ सकती है, और जब हम मदद मांगते हैं तो जाहिर सी बात है कोई न कोई हमारी मदद के लिए आगे आता है और हमारा काम निकल जाता है।

श्रोताओं हम जब मदद मांगते हैं, सहायता मांगते हैं, तो हमारा काम तो निकल जाता है, मगर उस परेशानी से हम पार पा जाते हैं क्योंकि हमने किसी से मदद मांगी। और वो समस्या जो हमारे सामने आई थी, इसके साथ साथ वो समस्या समय भी निकल गया और वो बात भी निकल गई, हमारा जो एक समय था कठिन वो भी निकल गया। परंतु यहाँ देखने वाली बात यह होती है कि जिसने भी हमारी मदद की, उसने तो ये जाहिर सी बात है कि निस्वार्थ भाव से ही की होगी, या हो सकता है कि उसने ये सोचा होगा कि कभी न कभी हमें जब अवसर मिलेगा तो ये भी हमारी मदद करेगा, और ये बात होनी भी चाहिए। तो ये हमारा भी कर्तव्य बनता है कि उस व्यक्ति को हमें याद रखें और उसे ये एहसास दिलाने की कोशिश करें कि आपने जो हमारी मदद की है उससे हम उस परेशानी से उबर आए, उस परेशानी से पार पा गए।

इसके साथ ही साथ श्रोताओं, अपने आप को इस बात के लिए हमेशा हमें तैयार रखना चाहिए कि हमें किसी भी समय किसी की मदद करनी हो तो हम पीछे नहीं हटेंगे, हमेशा आगे रहेंगे। और ख़ासकर उस व्यक्ति के लिए जिसने कभी किसी समय हमारी मदद की होगी, हमें समस्या से निकाला होगा। श्रोताओं, किसी की मदद करने से हमें अपने आप में एक संतुष्टि का भाव उत्पन्न होता है। इसके अलावा हम हमारे मन में हमें बहुत सुकून मिलता है। और कहा भी गया है कि जैसा हम सामने वाले के साथ बर्ताव करेंगे वैसा ही हमें मिलेगा, मतलब हम जैसा बोएंगे वैसे ही हम काटेंगे। हम मदद करेंगे तो कोई भी हमारी मदद के लिए आगे आएगा। हम किसी की मदद करते हैं तो भी कभी मुश्किल समय में कोई हमारे साथ होता है, इसलिए ऐसा समय आए तो हमें हमेशा मदद के लिए आगे रहना चाहिए। यकीन मानिए आपको बहुत अच्छा लगेगा और ये मन में महसूस होगा कि हम इस चीज़ के लिए लायक हैं कि हमने किसी ऐसे व्यक्ति की मदद की।

की है जब उसे वास्तव में मदद की ज़रूरत थी। वो चारों ओर से घिर गया था और कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि आदमी अवसाद से समस्या से घिर जाता है तो उसके जीवन पर भी संकट आ सकता है। तो हमें ऐसा करना चाहिए कि जब हम मदद करें तो सामने वाले की पूरी बात को सुने, सोचें और इस तरह प्रयास करें कि उसका जीवन निखर जाए और वो अपने काम पर हमेशा के लिए अच्छी तरह से लग जाए।

चिंतन अभी आपने सुना, आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, कलाकार हरिओम शरण और उनके साथी।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कलाकार थे हरिओम शरण और उनके साथी। आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बाहर। सबसे पहले सुनते हैं आशा भोंसले शमशाद बेगम को। फिल्म का नाम है किस्मत। गीतकार SH बिहारी, संगीतकार OP नैयर।

किस्मत फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज़ें थीं आशा भोसले शमशाद बेगम की। आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी के साथ लता मंगेशकर की आवाज़, फ़िल्म का नाम है फ़कीरा।

0: मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था फकीरा।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू।
0: आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर, सुरेश वाडकर और किशोर कुमार को। फिल्म का नाम है बेमिसाल। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार आर डी बर्मन।

आइए अब सुनते हैं अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडकर को। फिल्म का नाम है आजा मेरी जान, गीतकार फैज अनवर, संगीतकार अमर उत्पल।

0: अभी आप सुन रहे थे सुरेश वाडकर और अनुराधा पौडवाल को। फिल्म का नाम था आजा मेरी जान। मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
0: आइए सुनते हैं लता मंगेशकर के साथ सुरेश वाडकर की आवाज। फिल्म का नाम है दो दिलों की दास्तान। गीत लिखा है अनजान ने और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: choro.
1: इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार। कार्यक्रम के अंत में ये सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़। फिल्म का नाम है कर्तव्य। गीतकार कफिल अजहर, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था कर्तव्य। इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है, आइए सुनते हैं श्री राम चरितमानस गान, एपिसोड नंबर 370, कलाकार उत्तरा केलकर और सुरेश वाडकर, संगीत सतीश भाटिया का।

अयोध्या वासियों को राजा श्री राम ने जो उपदेश दिए उन्हें भक्तजन राम गीता की संज्ञा देते हैं। हनुमान तथा अपने तीनों भाइयों को संत असंत के लक्षण बताकर श्री राम ने नगर निवासियों को नीतिपरक उपदेश दिए। बड़े भाग मानुष तन पावा। सभी ग्रंथों में कहा गया है कि मानव तन देवताओं के लिए भी दुर्लभ होता है। ये साधना का माध्यम और मोक्ष का द्वार होता है। जिसने अपने परलोक की चिंता नहीं की उसे अंततोगत्वा पछताना पड़ता है। वो काल कर्म और ईश्वर को व्यर्थ ही दोष देता है। हे नगरवासियों, ये शरीर विषयों का भोग प्राप्त करने के लिए नहीं मिला है। विषय वासना में इस तन का उपयोग करने वाले मूर्खतावश अमृत को विष में बदल देते हैं। माया के वशीभूत प्राणी काल कर्म स्वभाव तथा गुण अवगुणों से घिरा अनंत काल तक भटकता रहता है।

श्री रामचरित मानस गाना भी आपने सुना। इसने आज आपने सुना एपिसोड नंबर 370। आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है। आइए सुनते हैं दैनिक कार्यक्रम नमस्कार चूरू।

श्रोताओं, आज के इस अंक में हम चर्चा करेंगे खुद को या खुद से प्रश्नोत्तरी करना आवश्यक। बिल्कुल सही बात है, कभी कभार जब हम अकेले बैठे रहते हैं दिन में, पूरे दिन में कुछ ऐसे काम करते हैं कि उनसे हमें कभी कभार तो फ़ायदा होता है और कभी कभी नुकसान भी हम झेल जाते हैं। ऐसे में विचार करने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है, अपनी अंतरात्मा से बात करने की आवश्यकता है। स्वयं से बात करने का वह तरीका है जिससे आप खुद से या अपनी अंतरात्मा से बात करते हैं। हो सकता है कि आपको इसका एहसास ना हो, लेकिन आप निश्चित रूप से ऐसा कर सकते हैं, कर रहे होते हैं। ये आंतरिक आवाज़ सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक सक्रिय रहती है और हम सबकी मदद भी कर सकती है। खुद से बातचीत करना महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका हमारे अपने आप में महसूस करने के तरीके, आपके कार्यों, यहाँ तक कि इर्द गिर्द से निपटने के तरीकों पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। यह हमें सहारा दे सकता है और प्रेरित भी कर सकता है। और कभी कभार जब हम खुद से बात कर रहे होते हैं तो हमारे मन में कई नकारात्मक विचार भी आते हैं, और जब हमारे अंदर नकारात्मक विचार आते हैं तो ये हमारे आत्मविश्वास को भी कमज़ोर करते हैं। इसके लिए हमें अपने आप से बात करने के साथ साथ हमारे अंदर जो नकारात्मक विचार आते हैं उनको रोकना और उन्हें पहचानना, और पहचानने के बाद समस्या से निपटने का पहला कदम है खुद से पूछें कि क्या हम किसी तरह और इससे आगे जा सकते हैं। इसके अलावा खुद से पूछें क्या ये सच है। अक्सर ये सच नहीं होता है। खुद से पूछें कि क्या किसी स्थिति को देखने का कोई और तरीका या स्पष्टीकरण हो सकता है। याद रखें, जिन चीज़ों के बारे में आप चिंता करते हैं उनमें से कई तो होती ही नहीं है। इसके साथ साथ कुछ बातें और हैं, जैसे अपने विचारों को लिखकर या जोर से बोलकर देखें, इससे नकारात्मक विचारों का प्रभाव बहुत कम हो सकता है या बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मीडिया या सोशल मीडिया के माध्यम से आप जो लगातार संदेश ग्रहण कर रहे हैं उनके प्रति सचेत रहें। लगातार नकारात्मक जानकारी देखना, पढ़ना या सुनना हमारा तनाव बढ़ा सकता है। सीधी सी बात है कि हम नकारात्मक सोचेंगे तो हमारे मन में नकारात्मक विचार अपने आप आएंगे और हमारे आसपास जो भी काम होंगे वो नकारात्मक ही होंगे। और इसके बदले में अगर हम अच्छे विचार अपने अंदर रखें, सकारात्मक सोचें, तो वैसी ही हमारी सोच बन सकती है। उदाहरण के लिए, यदि आप सोचते हैं कि मैं इस स्थिति का सामना नहीं कर पाऊंगा, तो आप उस विचार को बदल कर सोच सकते हैं, अन्य सभी परिस्थितियों को देखते हुए मैं काफ़ी अच्छी तरह से सामना कर सकता हूँ या कर रहा हूँ, यह स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन ये बीत जाएगी, ये समय बीत जाएगा। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। हम जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। खुद से बातें करना, खुद से सवाल जवाब करना, अपने कार्यों के प्रति सचेत रहना हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: राजस्थान पब्लिक स्कूल बिसाव,
2: नए सत्र में पहले 100 प्रवेश पर फीस में 25% की छूट।
1: कृषि, विज्ञान, कॉमर्स व कला सभी विषय उपलब्ध।
2: बेटियों के लिए विशेष छात्रवृत्ति।
1: अनुभवी स्टाफ, सुरक्षित वाहन सुविधा और शानदार परिणाम।
2: हजारों छात्र आज सरकारी सेवाओं में हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में।
1: राजस्थान पब्लिक स्कूल बिसाव, 9413366097।
3: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार चूरू, और हम चर्चा कर रहे थे खुद से बात करना, प्रश्नोत्तरी करना। और ये ज़रूरी भी हो जाता है क्योंकि हम जैसा सोचेंगे वैसा ही बन जाएंगे। अगर हम नकारात्मक सोचेंगे तो वैसी हमारी मानसिकता बन जाएगी, इसके साथ साथ अच्छा सोचेंगे, सकारात्मक सोचेंगे तो वैसा हम बन सकते हैं। श्रोताओं, सकारात्मक आत्मचर्चा आपको अपने बारे में बेहतर महसूस करने में मदद करती है, अपनी

आत्मचर्चा को, अच्छी चर्चा को बेहतर बनाने के लिए कुछ बातें हम आपके साथ करना चाहेंगे। जैसे अपने बारे में सकारात्मक बातें सोचने का अभ्यास करें। सरल शब्दों में कहें तो गिलास को खाली, आधा खाली देखने के बजाय आधा भरा हुआ देखने का अभ्यास करें। अपनी आंतरिक बातचीत के हिस्से के रूप में अपनी खूबियों को पहचानें और अपनी उपलब्धियों के लिए मिली प्रशंसा को स्वीकार करें। सकारात्मक तरीके से देखें, सोचें और कार्य करें। अपने आसपास सकारात्मक और आशावादी लोगों को रखें, उनसे बातचीत करें, संवाद करें। इसके साथ साथ नकारात्मक बातों को तटस्थ या सकारात्मक आत्म बातचीत के में इसमें बदलने का प्रयास करें। इसके बाद अगर आपको अपने बारे में कुछ बातें, नकारात्मक बातें बहुत परेशान करती हैं, तो अपने डॉक्टर से इस बारे में बात करें। वे आपको इसके लिए कुछ सुझाव देंगे, तो उस स्थिति से आप निकल सकते हैं। कहने का सीधा सा तात्पर्य है कि अपने आप से अपनी अंतरात्मा से बात करें और कुछ अच्छा सोचने का प्रयास करें। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा।

हल्की धूप से होने वाली एलर्जी बिना इलाज के भी ठीक हो सकती है, लेकिन गंभीर सकते का इलाज कुछ दवाई लेने से, डॉक्टर के पास जाने से, मिलने से ठीक हो सकती है। यदि आपको गंभीर धूप से एलर्जी है तो आपको बचाव के कुछ उपाय करने होंगे, जैसे ऐसे कपड़े पहने जो आपको धूप से बचाएं, कुछ ऐसा खान पान लें जो हल्का हो, सुपाच्य हो। और धूप से बचने के लिए ज़रूरी है कि कुछ काम ऐसे हमें सुबह शाम कर लेने चाहिए जिनमें धूप हमें ना लगे और कम से कम लगे। तो कुछ बातें हैं और भी हम करेंगे, सुनते हैं गीत।

श्रोताओं, कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जो हम करें तो धूप से बच सकते हैं। जैसे दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे के बीच धूप से निकलने में बचें। इस दौरान सूर्य की किरणें सबसे तेज़ होती हैं। बाहरी गतिविधियों को अन्य समयों के लिए टालने का प्रयास करें। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो धूप में रहने का समय सीमित करें, जहाँ तक संभव हो छाया में रहें। इसके अलावा कई लोगों को मौसम के अनुसार धूप से एलर्जी होती है। ये लक्षण तब दिखाई देते हैं जब दिन के घंटे बढ़ जाते हैं, यानी कहने का सीधा सा अर्थ है कि दिन बहुत बड़ा हो जाता है और लोग अधिक धूप के संपर्क में आते हैं। ऐसे में बाहर बिताए जाने वाले समय को धीरे धीरे बढ़ाएं ताकि आपको धूप में रहने का कुछ एहसास हो, ताकि आपकी त्वचा को बड़ी धूप के अनुकूल

रहने का समय मिल सके। लंबी आस्तीन वाली कमीज और अपने सर पर टोपी रखें तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये चीज़ें हमारे धूप से हमें बचाने में मदद करती हैं। साथ साथ पतले या ढीले बुनाए वाले कपड़ों से बचें और कुछ ऐसे पेय पदार्थ लें जिससे आपको धूप से काफ़ी हद तक बचाव हो सके।

और श्रोताओं, त्वचा के साथ साथ अपनी आँखों को भी धूप से बचाना ज़रूरी है, और इसके लिए आप सीधी सी बात है कि धूप का चश्मा पहन सकते हैं, जिससे हमारी रोशनी ठीक रहती है, आँखें सही रहती हैं।

0: दैनिक कार्यक्रम नमस्कार चूरू अभी आपने सुना, यह आकाशवाणी का चूरू केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित पहले समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले दो दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने AFC अंडर 17 महिला एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा।
2: राज्य के राजनीतिक इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे शुरू होने वाला है और इसमें लाखों पार्टी समर्थकों, राजनीतिक नेताओं और देश भर से आए गण्यमान्य व्यक्तियों के शामिल होने का उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों का मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल RN रवि मुख्यमंत्री और नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाएंगे। नवनिर्वाचित संसदीय दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में आयोग राज्य में संस्थानगत भ्रष्टाचार की जांच करेगा। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार देश की सीमाओं को सुरक्षित करेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी कमी को दूर करेगी। कोलकाता में कल नव निर्वाचित भाजपा विधायकों को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत संगठन के विस्तार या विचारधारा की पुष्टि के लिए नहीं है, बल्कि देश सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है।
3: घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। हमने बंगाल के आर्ष दृष्टाओं ने जो सुनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सुनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि लंबे समय से ठप पड़ी विकास योजनाओं को भाजपा सरकार फिर से शुरू करके पश्चिम बंगाल की जनता की सभी आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेगी।
3: आधुनिक खेती बंगाल तक पहुंची ही नहीं है, इंडस्ट्रीज बंगाल से भाग गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का विजन ही नहीं है और महिला सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा पाताल तक नीचे पहुंच गई। ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर लिए हैं और मुझे विश्वास है कि भाजपा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार बनकर दिन दूनी रात चौगुनी बंगाल को प्रगति की दिशा में ले जाएगी।
1: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। IUML ने टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों का खंडन किया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रोफेसर खादर मोहिदीन के नेतृत्व वाली इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कहा है कि उनकी पार्टी ने तमिलगा वेत्री कड़गम को समर्थन पत्र नहीं दिया है। AMM के पार्टी के नेता TTV दिनाकरन ने राज्यपाल से संपर्क किया और मुन्ना रुकई से निर्वाचित एकमात्र विधायक S. कामराज का समर्थन पत्र प्रस्तुत किया। इसमें AIADMK के महासचिव एडप्पडी पलनीसामी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई थी। उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। UDF की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्यम वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे सेना के उप प्रमुख और केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य कर चुके हैं। सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें भारतीय नौसेना में लगभग 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रही हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में LVMH मोइट हेनेसी लुई विटो ACE के अंतर्राष्ट्रीय संबंध निदेशक विसेंट स्टॉक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य विषय निर्यात बढ़ाने के लिए भारत में विनिर्माण को मजबूत करना, स्थानीय प्रतिभाओं में निवेश करना, भविष्य के सहयोगों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना और संतुलित तथा पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार साझेदारी को आगे बढ़ाना था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के परिणामों की सराहना करते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी के लिए एक निर्णायक मोड़ बताया है। वित्त मंत्री कल नई दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के परिणाम दोनों देशों के संबंधों में परिवर्तनकारी चरण का संकेत देते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की

0: ईद के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। ये प्रस्ताव होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा से संबंधित था। एक रिपोर्ट।
1: ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। अमरीका, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर द्वारा समर्थित इस मसौदा प्रस्ताव का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन सुगम बनाना है। अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है अमरीकी रक्षा बलों ने यूएई के फुजरा बंदरगाह के पास एक ईरानी तेल टैंकर और एक अन्य जहाज को निशाना बनाया। पश्चिमी तेहरान के ऊपर ईरानी वायु रक्षा प्रणालियां भी सक्रिय थीं। वहीं अमरीकी सेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में उसकी नौसेना को ईरानी बलों द्वारा मिसाइल, ड्रोन और तेज नावों से हमलों का सामना करना पड़ रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है, जो मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिवसीय इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सोमनाथ अमृत पर्व के पावन अवसर पर कल से पाठात्मक अतिरुद्र का विधिवत प्रारंभ किया गया, जिसमें अगले 5 दिनों तक निरंतर रुद्र पाठ किया जाएगा। मंदिर में आज से 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का भी आयोजन होगा, जिसमें लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जाएगी। इस महायज्ञ का मूल उद्देश्य वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति की स्थापना और मानव कल्याण सुनिश्चित करना है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इसे ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म के अंतर्गत अगली कड़ी में हम भारत में रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में अग्रणी रहे डॉक्टर राममूर्ति श्रीधर से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
3: In 1991 to 1993, exactly 35 years back, which I conceived and designed and did it called Manavka Vikas or Human Evolution, which was 144 episodes broadcast from 200 radio stations. Today, following that model example, 550 radio stations are functioning in this country. Content writers, script writers, creative people, AI is going to help you.
0: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरला, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस बीच बिहार में बिजली गिरने और तूफान से संबंधित अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मृत्यु हो गई। खेलों में भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC Under-17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। वहीं IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। ये मैच जयपुर में शाम 7:30 से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद फरहत। सभी समाचार पत्रों ने आज पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के भाजपा के विधायक दल का नेता चुने जाने की खबर प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है, बंगाल में सत्ता के शुभेंदु अधिकारी, नए अध्याय की शुरुआत, भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में आज लेंगे शपथ। लोकसत्ता ने तमिलनाडु में सत्ता का

0: राम नहीं थमने पर खबर प्रकाशित की है। विजय के शपथ ग्रहण पर फिर लगा ग्रहण, राज्य में सरकार पर फिर सस्पेंस, सियासत बदली। कांग्रेस के शीर्ष कमान पर अब केरलम के अगले मुख्यमंत्री को चुनने की जिम्मेदारी। राज्य में सरकार गठन को लेकर तैयारियां तेज, पर्यवेक्षक ने खड़गे को सौंपी रिपोर्ट, दिल्ली में होगा फैसला। देशबंधु की सुर्खी है। गर्म होते हिमालय में ऊंचाई पर आवास बना रहे जानवर, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, जलवायु परिवर्तन की वजह से निचले इलाकों में रहने वाला हिमालयन बीजल पहली बार 3,500 मीटर की ऊंचाई पर नजर आया। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पन्ने पर AI समय शीर्षक से लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, चैटबॉट हैं नई पीढ़ी के असली दोस्त। बेशक AI चैटबॉट्स ने युवाओं की अभिव्यक्तियों का नया मंच दिया है, लेकिन इसके कुछ गंभीर खतरे सामने आने लगे हैं। जान जमा पूंजी छीन रहा गेमिंग ऐप का जुनून, ऑनलाइन गेमिंग में 2025 में लोगों ने 20,000 करोड़ रुपए गंवाए, हिंदुस्तान की खबर है। नवभारत टाइम्स सहित सभी समाचार पत्रों ने सोमनाथ मंदिर के पुनरुत्थान होने का समाचार भी प्रकाशित किया है। नमामि गंगे की डॉल्फिन एम्बुलेंस ने 4 महीने में 8 डॉल्फिन को बचाया, जनसत्ता ने अभियान शीर्षक से एक खबर प्रकाशित की है।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले 2 दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने AFC Under-17 महिला एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।

इस गजल के साथ ही आज का सुर संगम कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है, सुबह के 9 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश भर में इस साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत आज। प्रदेश में 479 बेंच 7.5 लाख से अधिक मामलों का निपटारा करेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भविष्य के युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि नई सोच और बेहतर तालमेल से जीते जाएंगे। ग्राम 2026 के तहत हैदराबाद में हुई इन्वेस्टर मीट में 200 करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू किए गए। और प्रदेश में सोमवार से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार। कई हिस्सों में आंधी बारिश का दौर फिर से शुरू होने की संभावना। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। सदस्य सचिव ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन उच्च न्यायालयों, जिला न्यायालयों, न्यायाधिकरणों, उपभोक्ता मंचों और स्थायी लोक अदालतों सहित कई स्तरों पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 2023 से 2025 के बीच 12 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया गया, जिनमें 26 करोड़ मामलों का निपटारा किया गया। प्रदेश में दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ जयपुर पीठ में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा ने किया। प्राधिकरण के सदस्य सचिव हरिओम शर्मा अत्री ने बताया कि लोक अदालत के लिए 479 बेंच का गठन किया गया है। इनमें 7,77,000 से अधिक मामलों को सूचीबद्ध किया गया है। लोक अदालत में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से मामलों का निस्तारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भविष्य के युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि नई सोच और बेहतर तालमेल से जीते जाएंगे। कल जयपुर में संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन में उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने नई सैन्य रणनीति के साथ भारत के सामूहिक संकल्प को प्रदर्शित किया। रक्षा मंत्री ने भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच कमांडरों से भविष्य के लिए तत्पर रहने का आह्वान किया। उन्होंने AI, स्वायत्त प्रणालियों, डेटा एनालिटिक्स और सुरक्षित संचार नेटवर्क को सशक्त बनाने की जरूरत पर जोर दिया। दो दिन की इस कॉन्फ्रेंस में नए क्षेत्रों में सैन्य

0: क्षमता पर मंथन किया गया। वहीं नई दिल्ली में तिरंगा पर्वतीय बचाव दल के 10 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने दल की उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश का सशक्तिकरण और सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समाज, पर्यावरण और नागरिकों की सुरक्षा से भी जुड़ी है।
1: तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के लोग वो हैं जिनकी उपस्थिति हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है। आपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया है। आपने हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले समुदायों को यह एहसास कराया है कि वे अकेले नहीं हैं। टीएमआर जैसे संस्थानों का कार्य केवल रेस्क्यू तक सीमित नहीं है। आप इनडायरेक्टली बॉर्डर स्टेबिलिटी, कम्युनिटी कॉन्फिडेंस और नेशनल रेजिलियंस को भी मजबूत कर रहे हैं।
0: केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि भारत वैश्विक सांस्कृतिक विमर्श में नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। श्री शेखावत कल जोधपुर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इटली के वेनिस में आयोजित ला बिएनेल में भारतीय कलाकारों की भागीदारी सराहनीय है। उन्होंने कहा कि ये दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित और पुरानी अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रदर्शनियों में से एक है। इसमें भारतीय कलाकारों की भागीदारी लोकल से ग्लोबल बनने की दिशा में अहम है।
2: भारत के पवेलियन और भारत के कलाकारों की कला ने पूरे विश्व भर के कला साधकों का, कला प्रेमियों का ध्यान आकर्षित किया। न केवल ध्यान आकर्षित किया, अब तो भारत का पवेलियन वहाँ आज इटली में और देश भर के आर्ट लवर्स के बीच में चर्चा का केंद्र बना। भारत की सहभागिता के चलते हुए भारत के आर्ट लवर्स उनकी गहराई, उनके काम की क्षमता, दक्षता, प्रवीणता, इस सब के प्रति विश्व भर के आर्ट लवर्स का ध्यान आकर्षित होगा।
0: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आज प्रयोगशाला सहायक और कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है। 804 पदों के लिए ली जा रही ये परीक्षा आज और कल दो दिन दो दो पारियों में होगी। बोर्ड की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार इस बार अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र के अंदर जाने के लिए दो स्तरीय सुरक्षा जांच से गुजरना होगा। बायोमेट्रिक जांच के साथ ही फेस रिकॉग्निशन तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाएगा। पारदर्शी और सुचारू परीक्षा संचालन के लिए सभी केंद्रों पर वीडियोग्राफी की भी व्यवस्था की गई है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। ग्राम 2026 के तहत कल हैदराबाद में हुई इन्वेस्टर मीट में 200 करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू किए गए। ये समझौते राज्य में विभिन्न स्थानों पर फूड पार्क, सीड प्रोसेसिंग और फूड प्रोसेसिंग के विकास के लिए किए गए इस बिजनेस मीट में निवेशकों, उद्योग जगत और एग्री टैंक विशेषज्ञों के साथ संवाद किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मीट को संबोधित करते हुए कहा कि हैदराबाद का लैब टू लैंड मॉडल राजस्थान के लिए प्रेरणादायी है और राज्य सरकार इसे अधिक मजबूती के साथ लागू करना चाहती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कोटा में गेहूं खरीद के लिए 25% अधिक टोकन जारी करने और मंडियों में पड़े गेहूं के उठाव के लिए पर्याप्त संख्या में रैक लगाने के निर्देश दिए। श्री बिरला कल कोटा बूंदी क्षेत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि FCI सहित सभी खरीद एजेंसियां गेहूं लेकर खरीद केंद्र में आए किसानों की तुलाई का काम सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि खरीद का वर्तमान लक्ष्य पूरा होने के बाद भी अतिरिक्त गेहूं खरीद के लिए बारदाना और भंडारण की उचित व्यवस्था रखी जाए। उन्होंने सभी खरीद एजेंसियों को किसानों को समय पर भुगतान करने के भी निर्देश दिए। बैठक में भारतीय खाद्य निगम, राजफेड, तिलम संघ और NCCF के प्रतिनिधि मौजूद रहे। कोटा मेडिकल कॉलेज में सिजेरियन डिलीवरी के बाद दो प्रसूताओं की मौत और अन्य महिलाओं की तबीयत बिगड़ने के मामले में राज्य सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। कल चिकित्सा आयुक्त BL गोयल के दौरे और प्रारंभिक जांच के बाद लापरवाही बरतने के आरोप में देर रात एक चिकित्सक सहित तीन कर्मियों को निलंबित कर दिया गया। UTB में कार्यरत महिला चिकित्सक डॉक्टर श्रद्धा उपाध्याय को सेवा से हटा दिया गया है, जबकि एक अन्य चिकित्सक सहित दो नर्सिंग कर्मियों को निलंबित किया गया है। वहीं वार्ड प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने अस्पताल का दौरा कर दवाओं और ऑपरेशन प्रक्रिया के रिकॉर्ड की जाँच की है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने आश्वासन दिया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। कोटपूतली बहरोड जिले के

0: विराटनगर में करीब 100 से अधिक लोग फूड प्वाइजनिंग का शिकार हो गए। उपखंड अधिकारी कपिल कुमार उपाध्याय ने बताया कि ढाणी गैसकांड में एक शादी समारोह में भाग लेने के बाद बड़ी संख्या में लोगों को उल्टी और पेट दर्द की शिकायत होने पर उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। उन्होंने बताया कि अधिकतर मरीजों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। वहीं खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मिठाइयों और खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे हैं।
1: ढाणी गैसकांड गांव से यहाँ पर फूड पॉइजनिंग की सूचना मिली। लगभग 45 ग्रामीण और 34 बच्चे यहाँ वोमिटिंग की और पेट दर्द की शिकायत के साथ यहाँ आए थे। इनमें सभी 3 बच्चे अपने एडमिट है, बाकी स्वस्थ होकर लौट रहे हैं और बाकी ग्रामीण जनों का इलाज चल रहा है। ऐसे ही लगभग 14 बच्चे और 16 ग्रामीण के सापुरा भी दिखाने गए थे वहाँ पर, उनके इसी शिकायत के आधार पे तो CBO साहब को मैंने वहाँ भेजा था। अभी 3 बच्चे वहाँ हैं, बच्चे स्वस्थ हैं और सबका इलाज करवाया जा रहा है।
0: राज्य के अधिकतर स्थानों पर कल दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार कई शहरों में अधिकतम तापमान में करीब 6 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आई। हालांकि पश्चिमी राजस्थान में प्रचंड गर्मी का असर बना हुआ है। फलौदी, बाड़मेर और जैसलमेर में पारा 44 डिग्री सेल्सियस के पार मापा गया। वहीं 17 शहरों में दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। प्रदेश में अगले 2-3 दिनों में तापमान में फिर बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं 11 मई से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार हैं। इसके असर से कई हिस्सों में आंधी बारिश का दौर फिर से शुरू होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में इस साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत आज। प्रदेश में 479 बेंच 7.5 लाख से अधिक मामलों का निपटारा करेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भविष्य के युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि नई सोच और बेहतर तालमेल से जीते जाएंगे। ग्राम 2026 के तहत हैदराबाद में हुई इन्वेस्टर मीट में 200 करोड़ रुपए से अधिक के MOU किए गए। और प्रदेश में सोमवार से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार। कई हिस्सों में आंधी बारिश का दौर फिर से शुरू होने की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है देशगान।

0: देशगान अभी आपने सुना। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम साहित्य सुगंध। इसमें आज आप सुनेंगे हिंदी वार्ता। वार्ता का विषय परिवार समाज की आवश्यकता। वाचन स्वर सुरेश कुमार शर्मा का।
1: भारतीय समाज में परिवार एक महत्वपूर्ण इकाई है। द फैमिली इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ लव केयर कंपेशन एंड काइंडनेस, अर्थात प्रेम सहानुभूति और दया का केंद्र ही परिवार है। संस्कृत में कहे तो परितः वार्यति दोषान इति परिवार है, जो चारों ओर से हमारे दोषों को दूर करे वही परिवार है। जो सुख और दुख में हमेशा हमारे साथ रहता है वह परिवार है। लेकिन आज भारत में परिवार शब्द सामने आते ही सर्वसाधारण के मस्तिष्क में जो चित्र बनता है वह है परिवार नियोजन विभाग द्वारा प्रकाशित एक चित्र, जिसमें पति पत्नी, उनके एक पुत्र और एक पुत्री दिखाई देते हैं। किंतु कुछ वर्षों पहले भारत में संयुक्त परिवारों की परंपरा थी। अब भी कई परिवार ऐसे हैं जिनमें परिवार हम दो हमारे दो तक सीमित नहीं रहता। उसमें दादा दादी, नाना नानी, ताऊ ताई, चाचा चाची, बुआ फूफा, बहन बहनोई आदि कई रिश्तेदार भी शामिल रहते हैं। परिवार में अनेक कार्य रहते हैं, धनोपार्जन, गृह व्यवस्था, बालकों की शिक्षा दीक्षा, समाज में व्यवहार आदि। परिवार का प्रत्येक सदस्य अपनी क्षमता और योग्यता के अनुरूप कोई न कोई कार्य स्वयं संभाल लेता है। सास का कार्यभार बड़ी बहू बिना कहे संभाल लेती है। जेठानी के कार्य में देवरानी पूर्ण सहयोग करती है। जेठ जेठानी की संतानों को देवर देवरानियों की ममता भरपूर मिलती है। दादी व नानी की कहानियों के माध्यम से बच्चों को संस्कार मिलते हैं। यही मनोवृत्ति घर में पुरुषों की भी होती है। व्यक्ति ताऊ चाचा बड़ा भाई आदि के कार्यों में हाथ बटाकर आत्मसंतुष्टि का अनुभव करता है। जिसमें कृषि कार्य की योग्यता होती है वह खेतों में कठोर परिश्रम करता है। जिसकी बुद्धि व्यापार व्यवसाय आदि में चलती है वह उसके द्वारा धन का उपार्जन करता है। अनेकानेक रिश्तों से सुसज्जित एक मुखिया के आदेशों और सलाह पर चलने वाले संयुक्त परिवारों की संरचना हर प्रकार से अत्युत्तम है। कोई नहीं चाहता कि एक भरे पूरे खुशहाल परिवार से दूर होकर एकाकी परिवार बसाया जाए, किंतु वर्तमान परिदृश्य में उच्च शिक्षा की प्राप्ति के पश्चात नौकरी हेतु अन्य स्थान पर पलायन करने से एकाकी परिवार की स्थापना हो ही जाती है। व्यवसाय, बाजार, भूमंडलीकरण तथा शहरी सभ्यता की चकाचौंध व सुविधाजनक जिंदगी जीने की लालसा के कारण संयुक्त परिवार बिखरने लगे। अब संयुक्त परिवार से निकलकर एकल परिवार में रहने की बहुत सी मजबूरियों के साथ परेशानी यह आती है कि सुख का एहसास तो होता है परंतु मात्र आभासीय सुख का। सब रीति रिवाजों का पालन करने के पश्चात भी संयुक्त परिवार जैसा सुख नहीं मिल पाता। तमाम विलासिता के साधनों के बावजूद पाश्चात्य शैली में जीने वाला परिवार एकाकीपन और घरेलू हिंसा के साथ साथ मर्यादाहीन आचरण का शिकार होता जाता है। जो आनंद, जो शांति संयुक्त परिवार में रहकर मिलती है वह एकल परिवार में नहीं मिल सकती। किसी के पास इतना समय नहीं कि वह अपना सुख दुख किसी के साथ बांट सके। माना कि पैसा सुख सुविधाएं जुटाने का माध्यम है, पर कई बार यह रिश्ते बिखरने की वजह भी बन जाता है। कभी कभी पैसे कमाने की दौड़ में जिंदगी इतनी आगे बढ़ जाती है कि रिश्ते पीछे छूट जाते हैं। एक जमाना था जब संयुक्त परिवार ही सब कुछ माना जाता था। एक ही छत के नीचे 40-50 सदस्यों वाला परिवार रहता था। दिन भर भले ही सब अपने अपने कामों में जुटे रहे लेकिन रात का खाना एक साथ ही होता था। लेकिन धीरे धीरे पश्चिमी सभ्यता व आजीविका की होड़ ने रंग दिखाना शुरू किया और संयुक्त परिवार टूटने लगे। आज हमारे पास डिग्रियां हैं, धन है, धरोहर है, पर रिश्ते समाप्त होने के कगार पर हैं। जो व्यक्ति 30-40 वर्ष की आयु में अपने बच्चों की खातिर रिश्तों से दूर भागता है वह 60 वर्ष की आयु के बाद अपने बच्चों से उपेक्षित होकर फिर से रिश्तों को तलाश करता है, लेकिन तब तक समय गुजर चुका होता है। अतः रिश्तों व परिवार की अहमियत समझनी चाहिए। आज समाज में जिन विकृतियों का प्रसार हो रहा है उसका कारण है इस परिवार नामक संस्था का कमजोर होना, परिवार व्यक्ति को जैसा आर्थिक और सामाजिक संबल प्रदान करता है वैसा कोई बीमा कंपनी या अन्य संस्थाएं नहीं कर सकती। यही कारण है कि सुविधाएं बढ़ रही है मगर प्रसन्नता व्यक्ति से दूर होती जा रही है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, अच्छा परिवार ही उसकी खुशी का आधार हो सकता है। परिवार के केंद्र में मैं नहीं हम, केवल मेरा नहीं हम सबका, यह संस्कार आत्मीयता का संचार करता है, आपसी प्रेम बढ़ाता है। कहा भी है, अयम निजे परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुदेव कुटुंबकम। अर्थात जब हृदय संकुचित होता है तो विचारधाराएं भी संकीर्ण होने लगती है। व्यक्ति को अपने पराये का भेद महसूस होने लगता है कि यह मेरा है यह तेरा है ऐसे। लेकिन जब हमारा हृदय उदार हो जाता है तो यह संपूर्ण पृथ्वी ही हमारे लिए एक परिवार जैसी हो जाती है। परिवार मनुष्य को संकुचित स्वार्थ मंडल से ऊपर उठाता है और उसका आत्मविस्तार करता है। सर्वत्र सामंजस्य, सहयोग और समन्वय दिखाई देता है। इस प्रकार नैतिक मूल्यों का विकास परिवार में ही होता है। मूल्यविहीन समाज पशुवत है, लेकिन इस परिवार भावना के क्षीण होने से आज जीवन के हर क्षेत्र में अमानवीय ईर्ष्याएं, संघर्ष और समस्याएं उत्पन्न हुई है। लोगों में संस्कारहीनता पनप रही है, बात बात पर लोग धैर्य खो बैठते हैं। परिवार व्यवस्था कमजोर हो जाने से बच्चों को न चाचा का ज्ञान, न चाची का, न ताऊ का ज्ञान, न ताई का। जब नई पीढ़ी इन रिश्तों को समझेगी नहीं तो उनका सम्मान करना कैसे सीखेगी और आपसी प्रेम भाव कैसे बढ़ेगा? जब प्रेम और एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव नहीं होगा तो राष्ट्रीय भावना कैसे बलवती होगी? सामाजिक मर्यादाएं जब तार तार होने लगती है तब राष्ट्रीय मूल्यों का भी ह्रास होने लगता है। एक कुटुंब के लोग विभिन्न विचारों के हो सकते हैं किंतु उस कुटुंब की एकता, अखंडता और विकास हेतु आवश्यक है कि उसे एकजुट रखने वाले तत्व कभी कमजोर न पड़े। अर्थात एक दूसरे के प्रति प्रेम, दया और समर्पण के साथ एकत्व या एकरूपता के भाव का होना नितांत आवश्यक है। जिस प्रकार एक कुटुंब में संस्कारवान लोग एकत्व का भाव लेकर बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, उसी प्रकार किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए उन्नत कुटुंब व्यवस्था, संस्कारवान कर्मठ तथा राष्ट्रीय मूल्यों से ओतप्रोत नागरिक नितांत आवश्यक है। राष्ट्र की मजबूती तथा विकास के लिए आदर्श कुटुंब व्यवस्था व सामाजिक मर्यादाओं की अहम भूमिका होती है। इसीलिए परिवार व्यवस्था को बचाना प्रकारांतर से राष्ट्र को बचाना है। कहा भी है, कुटुंब रक्षणम ही राष्ट्र रक्षणम। यदि हम भारतीय जीवन दृष्टि का गहराई से अवलोकन करें तो कुछ गुण हैं जिनसे परिवारों का विघटन रोका जा सकता है। वे हैं सहनशीलता। आजकल परिवारों में छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो जाते हैं जिनका कारण है सहन शक्ति का अभाव। अतः परिवार के सदस्य छोटी छोटी बातों पर गुस्सा न करके सहनशील बने। दूसरा है स्नेहशीलता। प्रायः देखा जाता है

0: कि परिवार के सदस्य एक जगह होते हुए भी अपने अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। सोशल मीडिया पर उनके चाहे हजारों की संख्या में फ्रेंड्स हो, सबको ऑनलाइन लाइक भी करते हों, लेकिन वास्तविकता यह है कि वे अपने परिवार वालों को भी पर्याप्त समय तथा उचित स्नेह नहीं दे पाते। परिवार को पर्याप्त समय तथा स्नेह देना चाहिए। तीसरा है आपसी सहयोग की भावना तथा चतुर्थ है पारस्परिक विश्वास। प्रायः दूसरों के बहकावे में आने तथा अनावश्यक संदेह के कारण रिश्तों में दरारें पड़ जाती है, जो अनुचित है। अतः परिवार के सभी सदस्यों में पारस्परिक विश्वास होना जरूरी है। परिवार के सभी सदस्य महत्वपूर्ण होते हैं, सभी को उचित सम्मान मिलना चाहिए। परिवार में नारी ममता, समता और क्षमता की त्रिवेणी है। ममता से वह नई पीढ़ी का पोषण करती है, समता से परिवार का संचालन करती है और वहीं क्षमता से विपरीत परिस्थितियों में घर को बचाती है। अतः नारी के आंतरिक गुण महनीयता, कोमलता, दया, ममता आदि का सम्मान हो। आज परिवार के युवा उपेक्षित हैं, माता पिता की असीमित महत्वाकांक्षाएं उनका दम घोट रही हैं। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों को यह समझना चाहिए कि युवा पीढ़ी आने वाले समय की संपदा है। इनके सपनों को अपने विचारों का गुलाम न बनाकर इनकी मौलिक सोच को प्रोत्साहन देना चाहिए। और बुजुर्ग हमारी विरासत है, उनका सम्मान अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बनाए रखेगा। अपने पास यदि ज्ञान और ऊर्जा है तो उनके पास अनुभव है, उनके अनुभव का हमें लाभ लेना चाहिए। उनका भी दायित्व है कि वे परंपराओं का सामयिक परिवेश में अवलोकन कर मृत व अंध रूढ़ियों का स्वयं विरोध करें। शास्त्रों में कहा गया है कि वही परिवार श्रेष्ठ होता है जिसमें सानंदम सदनम सुताश्च सुधीय कांतान दूरभाषिणी सन्मित्रम सुधनम स्वयोषिति रति चाज्ञा परा सेवका आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम मिष्टान पानम गृहे साधो संगम उपासते ही सततम धन्यो गृहस्थाश्रमः। अर्थात जहां घर का वातावरण आनंदमयी हो, संतान बुद्धिमान हो, पत्नी कलाकारिणी न हो, अच्छे हितैषी मित्र हो, अपनी पत्नी में ही प्रीति रखने वाले चरित्रवान युवक हो, प्रेम पूर्वक आज्ञा पालन करने वाले सेवक हो, अतिथि देवो भव की भावना से अतिथि का सत्कार हो, प्रतिदिन ईश्वर की पूजा हो, भगवत प्रसाद रूप रुचिकर पवित्र व सात्विक व्यंजनों से सभी का भरण पोषण होता हो, ऐसा परिवार धन्य है। परिवार हर प्रकार से लाभदायी होता है। चींटियां भी समूह में रहती है क्योंकि सहती कार्य शादी का। संगठन में रहकर कठिन से कठिन कार्य को सिद्ध किया जा सकता है। लोकोक्ति भी है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, संगे शक्ति कलौ युगे। संगठन में शक्ति होती है, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ऐसे में एक कथा है कि एक ब्राह्मण था, उसके चार पुत्र थे। चारों बात बात पर झगड़ा करते थे तथा अलग होना चाहते थे। तो ब्राह्मण ने एक उपाय सोचा, चारों को बुलाया और एक लकड़ियों की गठरी लाकर रख दी। एक एक को उस गठरी को तोड़ने को कहा, लेकिन कोई नहीं तोड़ सका। उसने गठरी खोल दी और लकड़ियों को अलग अलग करके तोड़ने को कहा, तो सबने आसानी से एक एक करके लकड़ियां तोड़ दी। तो उस ब्राह्मण ने अपने पुत्रों से यही कहा कि यदि तुम चारों एक साथ एक परिवार में रहोगे तो कोई भी तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकता, कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और यदि अलग अलग रहोगे तो इन लकड़ियों की तरह एक एक को कोई भी तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। अतः विघटित न होकर परिवार के साथ रहने में ही जीवन का सार है।
1: परिवार समाज की आवश्यकता। अभी आप सुन रहे थे ये हिंदी वार्ता, वार्ताकार थे सुरेश कुमार शर्मा। कार्यक्रम था साहित्य सुगंध, आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है।

हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, इसका समर्थन करते हुए दृढ़ स्वरों में गांधी जी ने कहा था, हिंदुस्तान को अगर सचमुच एक राष्ट्र बनाना है तो चाहे कोई माने या न माने, राष्ट्रभाषा हिंदी ही बन सकती है, क्योंकि जो स्थान हिंदी को प्राप्त है वह किसी दूसरी भाषा को कभी नहीं मिल सकता।

शोर से शारीरिक तनाव में वृद्धि होती है। ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम में योगदान करें। गांधी जी ने कहा था, भारतवर्ष में 7 लाख देहात हैं। सारा कार्य देहातों पर निर्भर है, इसलिए जिसे वे लोग समझ सकें ऐसी भाषा का प्रयोग करने की आवश्यकता है। ऐसी भाषा हिंदी है। अशुद्ध जल को उबालने से उसको प्रदूषित करने वाले कीटाणु नष्ट हो जाते हैं।

कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम आप ही के द्वारा भेजे गए कमेंट्स शामिल करते हैं और आपसे निवेदन हर बार करते हैं कि इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश ना लिखें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि हम आपकी फरमाइश शामिल नहीं कर पाएंगे। आपके कमेंट्स के साथ कुछ फिल्मी गीत हम अपनी ओर से आपको सुनवाते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कमेंट जो हमें मिला है। आप हैं राजा नंदवाणी चूरू से, लिखते हैं नमस्कार के साथ। कहते हैं जीवन में हम अपनों के लिए हमेशा अच्छा करने की कोशिश करते हैं, फिर भी कभी कभी अगर गलती से कुछ गलत हो जाए तो वो हमारे द्वारा की गई सभी अच्छाइयों को छोड़कर वो सिर्फ की गई उस गलती को याद रखता है। 100 अच्छाइयों पर एक गलती हमेशा गलती नहीं गुनाह बन जाती है। बड़ी अच्छी बात आपने लिखी है।

अगला कमेंट हमारे पास आया है, आप हैं दयानंद कॉलेज भवानीपेठ सोलापुर महाराष्ट्र से। विष्णु मिस्किन, रितिका वाणी, आरव चंद्रकला, गणेश काशीनाथ, संगीता आरोही, प्रियांशी, सोनी और आपका पूरा परिवार। आप लिखते हैं, सड़क पर होने वाली दुर्घटना सिर्फ किस्मत का खेल नहीं होती, उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी छोटी छोटी लापरवाहियाँ छिपी रहती हैं। असल जिम्मेदार सिर्फ तेज़ रफ्तार गाड़ी नहीं, बल्कि वह सोच है जो कहती है हमारे साथ कुछ नहीं होगा। मोबाइल देखते हुए गाड़ी चलाना, हेलमेट या सीट बेल्ट को नज़रअंदाज करना, जल्दी पहुंचने की होड़, ट्रैफिक नियमों को मजाक समझना, यही वो गलतियां जो किसी का पूरा घर उजाड़ देती हैं। दुर्घटना होने के बाद लोग कहते हैं बस एक पल की गलती थी, लेकिन ये सच है कि वही एक पल किसी की पूरी ज़िंदगी बदल देता है। सड़क पर समझदारी सिर्फ खुद को बचाने के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी ज़रूरी है जो घर पर आपके सुरक्षित लौटने का इंतज़ार करते हैं। याद रखिए, गाड़ी की रफ्तार कुछ मिनट बचा सकती है, लेकिन सावधानी पूरी

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: अगला कमेंट हमें मिला है गांव नाईवाला जिला हनुमानगढ़ से वेद मिड्ढा और अलका मिड्ढा का। आप लिखते हैं, नमस्कार के साथ कहते हैं, इस संसार में कोई भी तृप्त नहीं है। जब तक कोई चीज़ नहीं मिलती बहुत अच्छी लगती है, मिलते ही अर्थहीन हो जाती है। अभाव में आकर्षण है। परमात्मा के मार्ग पर वही निकलता है जिसे यह स्पष्ट हो जाता है कि अपने से बाहर जाकर कोई भी कभी सुखी नहीं हो सकता। सदा अपने स्वभाव में रहें। जितने आप अपने से दूर हो जाते हैं उतने ही दुखी हो जाते हैं। सुख चाहिए तो सुख दीजिए, किसी के भी दुख का कारण ना बने।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे? सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: इस समय आप सुन रहे हैं फेसबुक कमेंट्स पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम दिल से दिल तक। अगला कमेंट हमें मिला है, आप हैं संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति, ओजस्वी और आपका पूरा यादव परिवार। आप लिखते हैं, लक्ष्य जीवन को दिशा और सार्थकता प्रदान करता है। यह वह ध्येय है जो हमें कड़ी मेहनत, अटूट अनुशासन और निरंतर प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। बिना लक्ष्य के जीवन बिना पतवार की नाव के समान है, इसलिए अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य का होना अति आवश्यक है। यह कमेंट हमें मिला है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा का। लिखते हैं, जितना आवश्यकता हो उतना ही विनम्र रहें, अनावश्यक विनम्रता दूसरों के अहंकार को बढ़ावा देती है। आपने बड़ी अच्छी बात लिखी है। ये कमेंट हमें मिला है चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा का। लिखते हैं, नमस्कार के साथ ये कहते हैं कि कुदरत की बनाई हर चीज़ बदलती है, वक्त, मौसम, इंसान, ख्याल, दृष्टिकोण सब बदलता है। बदलाव जीवन का नियम है, हर हाल में बदलते रहना चाहिए। जीवन को निरंतर बेहतर से बेहतर करने के उपाय करना इंसान के लिए हितकर है। मृत व्यक्ति कभी नहीं बदलता, इसलिए उठिए, हर पल अपने आप को बदलें, अपने विचारों को, कृत्यों को बदलने का प्रयत्न करते रहिए, जीवन खुद ही बदलने लगेगा।

0: इस समय आप सुन रहे हैं फेसबुक कमेंट्स पर आधारित कार्यक्रम दिल से दिल तक। अगला कमेंट हमें मिला है गांव कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से विक्रम कड़वासरा सचिन सतीश योगेश योद्धव और हनुमान सारण। लिखते हैं, संबंध तो सुदामा और श्री कृष्ण जैसा होना चाहिए, एक ने कुछ मांगा नहीं और दूसरे ने सब कुछ देकर जताया नहीं। ये कमेंट हमें मिला है सईराम नगर पितिसा से हरि सिंह नायक चिकी पूजा सोनू मोनू पंकज लक्षिता और आपका पूरा नायक परिवार। लिखते हैं, संसार एक सपना है, अज्ञानी सोचता है कि कोई नहीं अपना है, ज्ञानी सोचता है सभी अपना है, क्योंकि एक आत्मा से हम सभी बने हैं, सभी के अंदर एक आत्मा है और हम तुम ही हो या हम ही हैं, सब हम सब कुछ हम सब एक हैं, अनेक दिखाई देते हैं। जिसको भी यह ज्ञान है, कोई कुछ भी करे, है तो आत्मा ही, इसलिए ज्ञानी प्रसन्न रहता है सभी को देखकर।
1: सावन से बदली

जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह शाम। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, क्योंकि हारने वाला व्यक्ति उससे सबक लेता है और हार के कारणों का पता लगाता है एवं उस कमी को दूर करने का प्रयास करता है। ये संदेश लिखा है पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से। सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र जी। ये कमेंट हमें मिला है रवि कुमार राहुल का, कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से। लिखते हैं संसार परिवर्तन संसार का नियम है। कहने को तो ये बेहद छोटी है लेकिन इसमें एक गहरी सच्चाई छुपी हुई है। लोग ये बात सुन तो लेते हैं लेकिन मानने को तैयार नहीं होते। समय के साथ चीज़ें बदल जाती हैं, अच्छे दिन आते हैं और चले भी जाते हैं। वैसे ही बुरे वक्त भी हमेशा के लिए नहीं होते। अगर हम इन बातों को समझ लें कि हर चीज़ बदलने वाली है तो हम दुख के समय टूटते नहीं और सुख के समय घमंड नहीं करते। परिवर्तन को जीवन का हिस्सा मानना हमें संतुलित बनाए रखता है और लाइफ के इस बैलेंस में ही सच छुपा हुआ है।

अगला कमेंट हमें मिला है, आप हैं सादुल शहर जिला श्री गंगानगर से राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़ का। नमस्कार के साथ लिखते हैं, जीवन में सफलता केवल इच्छा से नहीं बल्कि सही सोच, सही संगति और सही दिशा में किए गए कर्मों से मिलती है। जब तक मन भटकाव, आलस्य और अहंकार में उलझा रहेगा तब तक लक्ष्य केवल सपना ही बना रहेगा। समय की कदर करनी चाहिए और अपने कर्मों को शुद्ध करना होगा और अपने लक्ष्य के प्रति पूरी ईमानदारी से समर्पित होना होगा। अपने जीवन को एक उद्देश्य के साथ आगे बढ़ने का यही सच्चा मार्ग है, यही सफलता की कुंजी है।

ये एक अगला कमेंट हमें मिला है, तो लिखते हैं नमस्कार, तो आपको भी बहुत बहुत नमस्कार लिखते हैं। आकाशवाणी से बढ़कर हमें तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं लगता, क्योंकि काम के साथ रेडियो पर मनोरंजन और जानकारियां और समाचार सुनने को मिलते हैं। आप हैं नौहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से, नरेंद्र सुथार, मनोज, हिमांशु और आपका पूरा सुथार परिवार। ये कमेंट हमारे पास आया है वारिस अली खान, संजय नगर एसबाग लखनऊ से। लिखते हैं, अपने माँ बाप का हाथ मजबूती से पकड़े रहिए, आपको फिर कभी किसी के पैर पकड़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

इस कार्यक्रम के लिए ये अंतिम कमेंट्स हमारे पास आया है पलारी छत्तीसगढ़ से दिनेश कुमार देवांगन का। लिखते हैं, लोग मंदिर में भगवान ढूंढते हैं और असली भगवान को अनदेखा कर देते हैं, जिसे हम माँ कहते हैं। बड़ी अच्छी बात आपने लिखी है।

0: ये था आप ही के कमेंट्स पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम दिल से दिल तक। इस कार्यक्रम से हमें दे अनुमति, फिर मिलेंगे, नमस्कार। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं, सुबह के 10 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम विविध भारती के कार्यक्रम।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गीतों भरी कहानी सपने में ठिठका इंतजार। इसकी लेखिका हैं ममता सिंह और वही आपको ये कहानी सुना रही हैं।
2: उसने आंगन में रखे गमलों को बाहर दरवाजे के सामने रखा, एक निगाह कमरे में डाली, मेन स्विच बंद किया, दरवाजा खींचा, वो बंद हो गया। चाबी पैंट की जेब में डालकर बरामदे तक आ गई थी वो। उसके गुलाबी गाल और नीली आंखों में ज्वार सा नजर आ रहा था। लग रहा था कि आंखें जैसे अब छलकी कि तब छलकी, आंखों में नदी बह रही थी। मैं कार से उतरकर उसकी ओर दौड़ी, उसे हुलसकर गले लगाने की कोशिश की, लेकिन उसके ठंडे रिस्पॉन्स से मैं वहीं रुक गई। बेटा, सारी किताबें एक साथ रख ली है ना? अकेले क्यों परेशान हुई? मैं तो आ रही थी ना, मैं रखवा देती। मैंने उसका सूटकेस अपने हाथ में लेते हुए कहा। उसने सूटकेस की ओर देखते हुए हाँ में सिर हिला दिया, कुछ बोली नहीं। मेरा मन कर रहा था उसे अपनी तरफ खींचकर खूब कस के गले लगा लूं, उसका सारा दर्द अपने आंचल में छुपा लूं, लेकिन उसके पथराए व्यवहार से मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। डर लग रहा था कहीं इस बार भी मैं इसे खो न दूं। पता नहीं ये कैसी पीढ़ी है, इन्हें ज्यादा प्यार दिखाओ तो ये बिदक जाते हैं, पर इसके नजरिए से सोचती हूं तो इसका बर्ताव ठीक लगता है। इतनी छोटी सी उम्र में इसने कितनी बड़ी दुनिया देख ली। दुखों के न जाने कितने रंग इसकी नाजुक हथेली में लगे। ऊपर वाला भी कभी कभी किसी के साथ बड़ी नाइंसाफी करता है। अनुष्का की आंखें मुझसे मिली और फिर सड़क की ओर देखने लगी। उसकी आंखों में बहुत सारे प्रश्न तैर रहे थे। अनुष्का ने अपनी आंखें मेरी आंखों पर चिपका दी। हाँ, कहने के साथ साथ वो सारे प्रश्न मेरे कानों में गूंजने लगे जो मुझसे पूछे गए थे। इस मशीनी युग में रिश्ते से ज्यादा कागज की अहमियत है। मम्मी, मेरी ज्यादातर किताबें वहीं पड़ी हैं, मैं एक बार फिर आऊंगी ले जाने के लिए। अनुष्का की आवाज बहुत मध्यम थी। बिल्कुल बेटा, तुम जब चाहोगे आ जाना, मैं तुम्हें लेकर आऊंगी। कहते कहते मेरे गले में जैसे कुछ अटक गया था, आवाज भर्रा गई थी। मैं डर गई थी कि कहीं इसी घर में अकेले रहने का ये फैसला न कर ले। इस ख्याल से ही मेरा दिल बैठ गया। 3 बरस मैंने अनुष्का के बिना कैसे बिताया ये मेरा दिल ही जानता है। उस पल दोनों के बीच एक पुल बन गया, बीते हुए दर्द और आने वाली उम्मीद के बीच।

अनुष्का पूरे रास्ते कार की खिड़की से बाहर देखती रही। कई बार उसने टिश्यू पेपर से आंखों को दबाया, शायद भर आए पानी को सुखा रही थी। उसकी आंखें गोलाई में ऐसे घूम रही थीं जैसे सड़क के किनारे दुकानों पर लिखी हर इबारत को वो पढ़ रही हो, जबकि वो तो सिर्फ अपने आप से गुफ्तगू कर रही थी। मैं उसकी ओर देखकर कुछ कहना चाहती थी, पर जैसे जबड़ा लॉक हो जाता। डर लग रहा था कहीं उसे कोई बात बुरी न लग जाए और वो मेरे साथ चलने से इनकार कर दे। इन 3 बरस में बचपन के सुनहरे रंग से अलग किशोरावस्था का चंपई रंग इसके गालों पर निखर आया है। हालात ने इसे जल्दी से सयानी बना दिया है। पार्किंग एरिया में गाड़ी रुकी और वक्त के उसे एक पल से मैं बाहर आ गई। देखो बेटा अनुष्का, ये देखो, ये तुम्हारा कमरा है। अनुष्का ने जब दहलीज पार की तो एक अजीब सी गंध ने उसे घेर लिया। घर सजा धजा, दीवारों पर वही तस्वीरें टंगी थीं, रस्किन बॉन्ड, रुडयार्ड की जंगल बुक और भी उसकी पसंद की तमाम किताबें कमरे में जस की तस सजी थीं। उसकी आंखों के सामने पुराने घर की टूटी अलमारी, माँ के कपड़ों से भरी संदूक और रसोई में रखी चूल्हे की आंच पर खाना पकाती माँ का चेहरा घूम गया। लाचार, बेबस, जीर्ण माँ से वो असंख्य सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन वो कोई सवाल वो पूछ नहीं सकी और माँ विदा हो गईं। वो इस दुनिया से चली गईं। कई बार अनुष्का ने पूछना चाहा, हर बार वो अपनी बीमारी का बहाना बनाकर टाल देती। वैसे भी कैंसर जैसी भयानक बीमारी से जूझते इंसान के प्रति दया भाव ज्यादा होता है, प्रेम कम। अनुष्का कभी अपने इस कमरे को देख रही थी जो उससे कहीं छूट गया था, कभी वो उस घर को याद कर रही थी जिसे अभी अभी छोड़कर आई थी। दरवाजे पर खड़ी उसकी आंखों में समंदर सा ज्वार था, आंखों में जंगल था जो उसके मन की वीरानी को बयां कर रही थी। चौखट के उस पार वही घर था, दीवारें, खिड़कियां, आंगन, सब कुछ वैसा ही, लेकिन उसका मन मानो हजार टुकड़ों में बटा पड़ा था। उसने गहरी सांस ली। क्या मैं सचमुच लौट आई हूं? लेकिन किस रूप में? कहीं फिर यहां से कहीं और तो नहीं जाना पड़ेगा मुझे? कब मेरी किसको जरूरत पड़ जाए और मैं उसके काम आ जाऊं? आखिर उस घर में अपनी माँ की जरूरत बनकर ही तो मैं गई थी ना। माँ के लिए मैं सिर्फ जरूरत थी। उसकी आंखों में स्मृतियों का सागर उमड़ आया। ये वही घर था जिसे छोड़कर अनुष्का भटकती रही कानूनी लड़ाइयों और अनचाहे सवालों के बीच। अब फिर उसी चौखट पर आ खड़ी थी। उसका मन भारी हो रहा था।

0: यही लौटकर माँ ने मुझे अपनाने का दावा किया था, वही माँ जब चाहा छोड़ दिया, जब चाहा अपना लिया। किसी ने मेरे भीतर की ज्वाला को जानने की कोशिश ही नहीं की कि मेरे जज्बात का फैसला हर बार कानून करेगा। मैं कहाँ रहूंगी, कैसे रहूंगी, कितने दिन रहूंगी, इसका निर्णय कानून ने किया। आखिर मुझे क्यों, माँ के अधूरेपन का बोझ मुझे क्यों ढोना पड़ा? आखिर मैंने क्या गुनाह किया था, क्या बात थी आखिर? मैंने उसके कंधे को सहलाया, उसने अपनी पलकें उठाई, मेरी ओर देखा, उसकी आंखों में अपनापन पाकर मुझे राहत मिली, सुकून मिला। अनुष्का की पनीली आंखों में टूटी हुई स्मृतियों का गुबार था जिसे मैं लगातार देख रही थी। फिर अचानक मैंने उसे खूब कस के सीने से लगा लिया और उसके भीतर का झरना फूटकर देर तक बहता रहा और मेरे भीतर की ममता देर तक उसे भिगोती रही। मैं उसे बहुत देर तक सीने से लगाए बैठी रही। फिर धीरे धीरे उसने दरवाजे के भीतर कदम रखा, हर कोना मानो उसकी चुप्पी सुन रहा था। एक मेज पर रखी पुरानी चादर, दीवार पर धूल जमी तस्वीरें और बंद खिड़की से आती ठंडी हवा, सब कुछ अपना सा लगा। वो सीधी खिड़की तक गई, उसने खिड़की खोली, धूप का एक सुनहरा टुकड़ा कमरे में भराया। उसने सूटकेस का जिप खोला, उसमें से कुछ वो तलाशने लगी। कुछ किताबें उसी घर में छूट गई हैं, सोचते हुए उसने गहरी सांस ली और फिर धीरे धीरे अपने सामान सूटकेस से बाहर निकालने लगी वो। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा और मैं रसोई में चली गई। अनुष्का के लिए फ्रैंकी और ब्रेड टोस्ट लेकर लौटी तो देखा वो अपनी पुरानी ड्राइंग बुक पलट रही थी। वाटर कलर का डब्बा और ब्रश मेज पर रखा हुआ था। कितनी जुनूनी है ये लड़की, सचमुच अजीब है। सेकंड क्लास में पढ़ती थी तभी कितनी सुंदर पेंटिंग करने लगी थी। संस्कृति मंत्रालय के कला विभाग में एक पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। इतनी छोटी सी उम्र में इसने फर्स्ट प्राइज ले लिया था। जिंदगी का वो सबसे खुशगवार लम्हा था जब गोद में बैठी अनुष्का ने मुस्कुराते हुए अपने नरम हाथों का घेरा मेरे गले में डाल दिया था। उसे जब पहली बार घर लेकर आए थे तब घर पहुंचकर एक छोटी सी पार्टी दी थी हमने, और बस उसकी सारी थकान, कानूनी झंझट, समाज के ताने सब गायब हो गए थे। कितना सुनहरा समय था वो, आंखों के सामने जैसे अभी ठहर गया है।
1: तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली

उस रोज अनुष्का ने मुझे पहली बार माँ कहा था, तब जैसे घर में फूलों की बरसात हुई हो। वो पैदाइशी ही उम्र से दो कदम आगे थी। अनुष्का की ड्राइंग बुक मैंने अपने हाथ में ले ली और पलटने लगी। एक पन्ने पर मेरी निगाह अटक गई। आंखों के सामने कागज का वो पन्ना याद आ गया जिस पर मैंने हस्ताक्षर किया था। सर्दी की सियाह रात थी। मैं और नीरव किसी शादी में जा रहे थे। हम जंगल से गुजर रहे थे। यूं कि जंगली जानवरों के डर से हम जंगल को जल्द ही पार कर लेना चाह रहे थे। नीरव गाड़ी बहुत फास्ट चला रहे थे। ठंडी और कुदरती हवा खाने की गरज से मैंने खिड़की का शीशा नीचे किया हुआ था। एसी बंद था। गहन निर्जन सन्नाटे में झींगुरों की तेज आवाज के बीच अचानक झाड़ियों से आती रोने की पतली सी आवाज में गाड़ी में ब्रेक लगा दिया और हम बड़े निर्भीक हो गए थे। उस समय रात के इस बीहर सन्नाटे में कराह भरी महीन महीन रोने की आवाज समझने में खासी परेशानी हो रही थी कि किसी इंसानी बच्चे की कराह है या कोई जंगली जानवर का बच्चा है या कोई छोटा मेमना जो बिल्कुल नवजात शिशु जैसा है। हम सड़क से थोड़ी दूर पेड़ों के झुरमुटों के बीच पहुंच गए थे। सामने कुछ सूखी डालियां पड़ी थीं, जिन्हें हटाया तो कंबल और सफेद कपड़ा जैसे कुछ दिखाई दिया। हम और नजदीक गए, उस आकृति के और करीब गए, और करीब गए। अरे, ये तो किसी बच्चे की रोने की आवाज लग रही है। नीरव, ऐसा लग रहा कोई बच्चा है। ये कपड़े में लिपटा कोई बच्चा लग रहा है, नवजात शिशु। ओह, हमने फौरन गाड़ी से टॉर्च निकाला और ओस में नहाए पेड़ों पर हम रोशनी फेंकने लगे इधर उधर। तभी टॉर्च जब उस झाड़ी पर पड़ी जहां कंबल और सफेद कपड़ा जैसा कुछ दिखाई दिया, उस पेड़ के नीचे नजदीक गए तो देखा कपड़े में लिपटी नवजात बच्ची कांप रही थी। उसका रोना अनवरत जारी था। मेरा तो कलेजा जैसे मुंह को आ गया था। सवालों का समुद्र जैसे मेरे भीतर समाकर पूरे जंगल को पानी पानी कर देगा। हमने उस नवजात शिशु को उठाया और इधर उधर देखा। फिर मैं सोचने लगी, आखिर समाज ने ऐसा कौन सा वितान रचा है जिसके चलते ये नवजात शिशु अभिशप्त कर दी गई है। ऐसा कौन सा प्रश्न रहा होगा जिसके तहत इसकी माँ ने यहां उठाकर इस प्यारी बच्ची को फेंक दिया। उस माँ का कलेजा कांपा नहीं होगा। हम संभल संभल के और डरते हुए उस बच्ची के नजदीक पहुंचे। हाथों में ग्लव्स पहने नीरो ने उसे झुककर उठाया और मेरी गोद में डाल दिया। उस बच्ची का स्पर्श पाते ही मैंने अपने पेट में 9 महीने का उभार सा महसूस किया। मेरी छाती में जैसे दूध उतर आया था। मैं ममता से भर गई थी। ऐसा लगा मैं माँ बन गई हूँ। सुनो, इस बच्ची को ना ऊपर वाले ने हमारी गोद भरने के लिए इन झाड़ियों में भेज दिया है। किस्मत की किताब का एक नया पन्ना लिखा जाने वाला था। कहते हुए मैंने अपना सिर नीरव के कंधे पर टिका दिया था। मेरी गोद की गर्माहट पाकर वो बच्ची थोड़ी देर के लिए जैसे चुप हो गई थी। फिर थोड़ी ही देर में उसके रोने का सुर और ज्यादा ऊंचा हो गया था। उसकी धड़कनों की रफ्तार बहुत तेज थी। समझ में नहीं आ रहा था उस नन्ही जान को पानी पिलाना ठीक होगा या नहीं। कितने दिन की बच्ची है ये भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा था।

उस फूल से नरम नाजुक बच्ची की जान बचाने के लिए हमने फौरन एम्बुलेंस को फोन किया। एम्बुलेंस के सायरन से जंगल का वीराना शोर से भर गया। कुछ ही देर में वो मासूम अस्पताल की रोशनी में थी। फाइल पर लिख गया, अननोन गर्ल, उम्र एक दिन। उसकी नाम की जगह खालीपन था, पहचान की जगह एक सवाल, माँ की गोद नहीं, कागज के पन्नों में कैद जिंदगी की शुरुआत। झाड़ियों में मिली नवजात बच्ची सुबह अखबार की सुर्खी बन गई थी। चाय का प्याला हाथ पे लिए मैं तो जैसे बर्फ बन गई। अब क्या होगा? उस बच्ची का कोई ना कोई उम्मीदवार जरूर आधमकेगा, फिर मेरी सुनी गोद का क्या होगा? नीरो, ऊपर वाले ने मेरी सुनी गोद भर दी थी, झाड़ी में पड़ी वो बच्ची ऊपर वाले ने मेरे लिए ही तो भेजी थी ना। नीरो, ये बच्ची तो अपने लिए जंगल में कोई छोड़ गया था। चलो चलो जल्दी चलते हैं अस्पताल, वरना कोई भी उस बच्ची को अपना उम्मीदवार बताकर उठा ले जाएगा। चलो चलो जल्दी चलते हैं। देखा है ना, यहाँ तो हर चीज का व्यापार होता है। वाक्य पूरा होते तक मेरी आवाज कांप गई थी, दिल कलप गया था, जैसे उस नन्ही जान से मेरा बरसों का नाता हो। क्या वो खिलौना है जो अस्पताल से कोई उठा ले जाएगा? अरे वैसे हमने अडॉप्शन के लिए आवेदन तो पहले ही कर रखा है, ये कागजी कार्रवाई होगी और वो बच्ची हमें मिल जाएगी। नीरो ने मुझे दिलासा दी थी। अस्पताल की खिड़की से अंदर झांकते ही मेरे कदम जैसे रुक गए थे। नन्ही सी देह, नींद में सिकुड़ा हुआ चेहरा, वो जैसे कोई अधूरी कविता लग रही थी। मेरा आंचल एक बार फिर ममता से भर गया। ऐसा लग रहा था एक बार फिर मेरी छाती में दूध उतर आया हो। नीरो, यही हमारी बेटी है, यही है हमारी बेटी। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन आंखों में अविश्वास के बादल थे। नीरो ने धीरे से मेरा हाथ थामा, पर उनके भीतर भी वही प्रश्न उमड़ा, क्या सचमुच बच्ची हमें मिलेगी? कहीं कानूनी झंझट में उलझकर इसकी उंगली हमसे छूट न जाए। सपना जैसे पास खड़ा था, लेकिन छूते ही ओझल हो जाने का डर मेरे साथ था। बच्ची को घर लाना इतना आसान नहीं था। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, अदालत,

कागजात, पूछताछ, हर जगह शक की नजरें थीं। तो क्या आप बाज हैं? क्यों चाहते हैं बच्चा? क्या गारंटी है कि आप उसका भविष्य बिगाड़ेंगे नहीं? आप सही तरीके से इस बच्चे को माता पिता का प्रेम दे पाएंगे? ये हम कैसे यकीन करें? ये सवाल मुझे भीतर तक छलनी कर देता था। कई रातें मैंने रोते रोते गुजारी, पर हर सुबह वही दृढ़ वाक्य दोहराती, नीरव, उस बच्ची ने कांटों सी जिंदगी पाई है, हमें उसके लिए कांटों का ये रास्ता भी पार करना होगा। आप सीधे गोद नहीं ले सकते बच्ची को, आपको सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्सेज अथॉरिटी की प्रक्रिया से गुजरना होगा। आप इंतजार कीजिए, थोड़ा सब्र रखिए, डॉक्टर ने सख्त स्वर में समझाया था। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, दस्तावेज, पूरी जांच, ये सब होने के बाद ही आपको बच्ची मिल सकती है। मेरी आंखें फाइल से हटकर बच्ची पर टिक गई थी। कागजों से बड़ी हैं उसकी सांसें, सोचते हुए मेरा मन थोड़ा उदास हुआ था। घर लौटते ही मैंने वो फॉर्म भरा, जिसे पूरा करने के बाद वो दुधमुही मासूम मुझे मिल जाएगी, जिसकी अधमुदी आंखें अपनी माँ को देखने को आतुर होंगी। आधार कार्ड की कॉपी, आयकर रिटर्न, बैंक स्टेटमेंट, परीक्षा के प्रश्न पत्र की तरह न जाने कितने तरह के प्रश्न थे उसमें, जिनके उत्तर देकर मुझे और नीरो को भरने पड़े वो फॉर्म। प्रत्येक कॉलम भरते हुए मुझे लगता जैसे कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो गई हो और मैं दीवार पार कर रही हूँ। हर दस्तावेज पर कलम चलाते हुए आंखों के सामने उस प्यारी बच्ची का चेहरा आ जाता, उसकी निरीह आंखें, नन्ही नरम हथेलियां, उसकी निर्बल सांसें, उसकी अकेली पहचान। कल तक जो मेरे लिए कोई नहीं थी, आज वो मेरे दिल की धड़कन बन गई, मेरी सांस, मेरी दुनिया है वो बच्ची, मेरे जिगर का टुकड़ा बन गई थी। क्या माँ बनने के लिए इतना सारा हिसाब किताब करना जरूरी है? माँ बनने के लिए इन सारे हिसाब का जवाब देना जरूरी है? मैं खुद से ही सवाल कर रही थी।

कानून का इंतजार करना होगा। 60 दिन तक हम देखेंगे कि असली माँ बाप सामने आते हैं या नहीं। वकील मिस्टर सेठी ने यही तो कहा था। बाद में ये 4 से 6 महीने मेरे और नीरव के लिए सदी से भी लंबे थे। हर दिन एक ही चिंता होती, कहीं ये बच्ची किसी और को सौंप न दी जाए। कानून को हमें अपनी ममता क्यों साबित करनी पड़ रही है।

कभी अस्पताल के बाहर खड़े होकर हम सोचते, अपनी उस अबोध बच्ची तक पहुंचने के लिए हमें और कितनी दीवारें पार करनी होंगी। कानूनी कागजात के साथ साथ हमारी और भी तरह से जांच हुई। एक दिन एक सोशल वर्कर घर आई। उन्होंने एक एक करके सब देखा, रसोई, कमरा और वो झूला जिसे मैंने पहले ही सजा रखा था। एक जासूस की तरह उन्होंने मेरे घर का मुआयना किया। अगर बच्ची अपनी असली माँ बाप के बारे में पूछेगी तो आप क्या बताएंगे? उनके ये सवाल मुझे बहुत परेशान कर रहे थे, बेहद चुभने वाले थे ये सवाल। हम उन्हें सच बताएंगे, लेकिन ये भी कि माँ बाप वही होते हैं जो बच्चे को अपनाते हैं, जो बच्चे का पालन पोषण करते हैं। वो माँ बाप नहीं होते हैं जो पैदा करके झाड़ी में फेंक देते हैं, नीरो ने दृढ़ स्वर में कहा था। फिर पुलिस हमारे घर आई, पड़ोसियों से सवाल जवाब किए, फिर शुरू हुआ हमारे कोर्ट के चक्कर काटना। क्या आप जानते हैं, दत्तक संतान के अधिकार असली संतान के समान ही होते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस सब बातों के लिए? जज ने अपनी फ्रेंच कट दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए सख्ती से पूछा था। जज साहब, यही हमारी सबसे बड़ी चाहत है। मुझे बच्ची चाहिए, बच्ची को माँ का गोद चाहिए। मेरी सुनी गोद ऊपर वाले ने भर दी है, आप ये बच्ची मुझसे मत छीनिए, लरजते स्वर में मैंने कहा था। फिर अदालत के आदेश पर अखबार में नोटिस निकाला गया, यदि किसी को इस बच्ची पर दावा करना हो तो 30 दिनों के भीतर अदालत में उपस्थित हों। महीने भर डर के साए में जीती रही मैं, कहीं कोई उस बच्ची का उम्मीदवार न प्रकट हो जाए। पर ऊपर वाले ने सुन ली, कानून की कलम हमारे हिस्से में आई। और जब कानून की कलम हमारे हिस्से में आई तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेरी आंखों से आंसू का झरना फूट पड़ा था। मैं खुश थी, लेकिन मेरी आंखों की नदी रुकी नहीं रही थी। हमारी सारी भाग दौड़, सारी थकान, सारी बेचैनी उस क्षण पिघल कर एक आनंद की बूंद बन गई थी, जब रुई के गुलाबी फाहे सी नरम नरम वो बच्ची मेरे गोद में आई थी। नीरो भी पिता बनकर निहाल हो गया था। घर का दरवाजा खुला, सर्दियों से सूना आंगन जैसे जीवन से भर गया हो। छोटे छोटे कपड़े टंगे, दूध की खुशबू, खिलौनों की खनक, सब में एक नई रोशनी थी। घर का हर कोना जैसे नन्ही सांसों की आहट से भर गया। झूले में ऊपर की ओर टंगी चक्री गोल गोल घूमने लगी और बच्ची की आंखें भी गोलाई में गोल गोल घूमने लगी। मैं उसे देख देख कर मुस्कुराती रही। नीरो, देखो ना कितनी प्यारी लग रही है ये। पहली बार हंसी है ये। मुझे अपने गाल पर नमकीन पानी का ठंडक महसूस हुआ था। मेरे होठों पर जैसे किसी ने गुलाब की पंखड़ी धर दी हो। नीरो चुपचाप खड़ा देखता रहा। उसकी आंखों में नमी और चेहरे पर सुकून था, खुशी थी। उसने बच्ची की हथेली पर अपनी उंगली रखी और उस नन्ही पकड़ में उसे अपना भविष्य, अपनी विरासत, अपना पूरा वजूद महसूस हुआ। उस मासूम की एक मुस्कान, एक किलकारी जैसे उनके जीवन का सबसे मधुर संगीत बन गई थी। अगली सुबह की पहली रोशनी खिड़की से छन कर कमरे में आई। नन्ही बच्ची ने आंखें खोली और अचानक मासूम सी हंसी बिखेर दी। उसके रोने और उसकी किलकारी से पूरा घर जैसे जगमगा उठा। उस बच्ची की आवाज ही मेरी सुबह की घंटी है, मेरी पूजा की आरती है। मैंने जैसे ही अपनी उंगली उसकी ओर बढ़ाई, नन्ही बच्ची ने कसकर पकड़ ली। उस पकड़ में बड़ी ताकत थी। शाम को आंगन में झूला डाला गया। रात को बच्ची सोती
तो मैं धीरे धीरे लोरी गाती, नीरो पास बैठकर मुझे और उस बच्ची को देखता रहता।

कितना अजीब है, कल तक ये चेहरा अजनबी था, ये बच्ची मेरे लिए अजनबी थी, आज इसकी सांसें हमारी रूह में बस गई। इसकी किलकारियों ने घर की हर दीवार पर नई धड़कन लिख दी थी। रात को जब बच्ची रोती, मैं नींद से उठकर दूध की बोतल तैयार करती। थकी होती पर उसे लगता जैसे उसकी थकान ही बच्ची की मुस्कान में घुलकर गायब हो जाती है। नीरो दफ्तर से लौटकर सीधे बच्ची की उंगली पकड़ लेता, दिन भर का तनाव उसी पल मिट जाता। रीना, हमने उसे अपनाया नहीं है, इसने हमें अपनाया है, हमारी जिंदगी को इसने अपनाया है, इसने खुशी दी है हमें, नीरो ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा था। मैंने बच्ची को सीने से लगाते हुए आंखें बंद कर ली। मेरे भीतर का अटूट मातृत्व समुद्र में तब्दील हो गया था। तब महसूस हुआ कि मां बनना कितना कठिन होता है, लेकिन मातृत्व का सुख पाना भी किसी नियामत से कम नहीं। वो बरसात की भोर थी, आंगन की मिट्टी में ताजी महक फैली हुई थी, पेड़ों की पत्तियों से टपकते मोती जैसे कण हवा में चमक रहे थे। मैंने खिड़की खोली तो भीतर तक ठंडी बयार आ गई। झूले पर बैठी नन्ही काया ताली बजा बजा कर बारिश की बूंदों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, जैसे बादलों से बातें कर रही हो। उसी क्षण

0: उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने एक कमजोर थकी हुई स्त्री खड़ी थी, उसके चेहरे पर पीड़ा थी। मैं इसकी जन्म देने वाली माँ हूँ, मेरी प्रश्नवाचक निगाहों को भांपते हुए उसने धीमे स्वर में कहा, जैसे धरती हमारे पैरों तले खिसक गई हो। इतनी मुश्किलों के बाद तो हमारी मुराद पूरी हुई, फिर यह अचानक ये मुसीबत कहाँ से आ गई? मेरे होठ बुदबुदाए, लेकिन स्त्री ने अनुष्का को देखकर अपने कांपते हाथ जोड़े। मैं इसे अपने पास नहीं रख सकी, हालात ने मुझे बेबस कर दिया, अब मेरे पास समय नहीं बचा है। मैं चाहती हूँ कुछ समय के लिए मैं इसे अपने घर ले जाऊं। वैसे तो तुम्हारी गोद ही इसकी सच्ची दुनिया है। उसने अपने आंचल से अपनी आंखें पोंछी, फिर उसने अनुष्का की मासूम हथेली छू ली और बच्ची के शरीर में एक निशान भी बताए। बच्ची ने बिना सोचे उसकी उंगली पकड़ ली और अगले ही पल खिलखिला उठी। उसकी मुस्कुराहट की खनक ने मेरे भीतर से वीरान सन्नाटा भर दिया। अनुष्का के बगैर जीने की कल्पना मात्र से मैं सिहर गई। मैंने उसे अपनी बाहों में कसकर भर लिया। कभी कभी अजनबी चेहरा ही रूह का सबसे बड़ा टुकड़ा बन जाता है। जिंदगी ने हमें ऐसे दोराहे पर ला खड़ा किया जहां से रास्ता नहीं नजर आ रहा था। वो औरत जिसने मां बनने का दावा किया है, वो कैंसर की मरीज है, वो भी सेकेंड स्टेज में। उसने वो सारे कागजात सामने रखे हैं जिससे उसे अनुष्का को सौंप दिया जाना चाहिए, लेकिन दिमाग और दिल की लड़ाई में दिल को ही हथियार डालना पड़ता है। फिर से अदालत की सीलन भरी दीवारें, बोझिल हवा और कोनों में से सकते सन्नाटे, जज का फैसला। जन्म देने वाली माँ को कैंसर है, उसकी स्थिति गंभीर है, इसलिए बच्ची का अधिकार उसी के पास रहेगा। हालांकि इस सब प्रक्रिया में कई बरस बीत गए, अनुष्का की जन्मदात्री माँ भी और ज्यादा कृशकाय हो चुकी थी। इस दौरान उससे कई मर्तबा मुलाकात हुई। उसकी तकलीफ देह हालात के बारे में जानकर अनुष्का को उन्हें उनकी बची खुची जिंदगी के लिए सौंप देना ही इंसानियत थी। उसकी आंखें बुझती लौ जैसी थी। वो मेरे जीवन की सबसे बोझिल रात थी। रात हौले हौले जा रही थी, लेकिन सुबह की कोई आमद नहीं नजर आ रही थी। उसमें भीगी पेड़ों की शाखें उदास हो गई थीं। अनुष्का का घर में आने का समय पता ही न चला, लेकिन उसे कुछ समय के लिए ही सही, उसके जाने का लम्हा सदी बन गया था। अनुष्का बहुत बोलती थी, बहुत प्यारा बोलती थी, लेकिन उस रात जब उसे इस घर से उस घर यानी उसकी माँ के पास ले जाया जा रहा था, तब वो जैसे बेजान गुड़िया में तब्दील हो गई थी। उसे तब तक पता चल चुका था कि जहां जा रही है वही उसकी असली माँ है, मेरी तो वो दत्तक पुत्री है। मेरे भीतर तूफान कुलाचे मार रहा था, नीरो निर्विकार भाव से इस नियत को स्वीकार कर रहा था। मेरे कानों में सिर्फ अनुष्का की किलकारियों की गूंज रह गई। वो लम्हे जब पहली बार उसने माँ पुकारा था, वो रातें जब बुखार में हमने जाकर उसके माथे पर ठंडी पट्टियां रखी थी, वो मासूम मुस्कान जो उनके जीवन का एकमात्र संगीत थी, सब कुछ ऐसे पल भर में स्मृतियों की तिजोरी में रख उठे थे। अनुष्का ने मासूम निगाहों से मेरी ओर देखा। हम सब ने अपने सुविधानुसार अनुष्का का घर तय कर दिया, लेकिन अनुष्का के नजरिए से किसी ने नहीं सोचा। वो अपनी माँ के घर जब पहुंची तो उसके रोने का सिलसिला रुका ही नहीं।
1: फिर जब वो रुका तो उसकी सूनी आंखें मेरा आंचल तलाशती रही। मैं उससे जब मिलने जाती मेरा आंचल पकड़ लेती, मुझे आने ही नहीं देती थी। ऐसे कसकर लिपट जाती जैसे मैं ही उसके जन्म देने वाली माँ हूं। वक्त ने उसे जल्दी समझदार और बड़ा बना दिया था। उसकी सूनी आंखों में सपनों की जगह इंतजार ठिठक गया था। घर में रखे खिलौनों को हाथ न लगाती, खामोशी उसकी सदा बन गई थी। उसे जैसे हम दो परिवारों ने एक छोटी बच्ची से वस्तु बना दिया था। उसकी पीड़ा को महसूस कर मेरा दिल कचोटने लगता था।

किताबों के ऊंचे रैक से एक मोटी किताब गिरी और मैं जैसे यादों के ऊंचे पहाड़ से धम से नीचे आ गिरी। पर इस बार पहाड़ से नीचे आने पर अनुष्का जैसी प्यारी फूल मेरे सामने है। उसने दरवाजा पकड़ रखा था जैसे ये आखिरी सहारा हो। उसकी आंखें कह रही थीं, माँ तुमने मुझे झाड़ी से उठाया था, पर क्या सचमुच माँ की जगह भर सकोगी? अनुष्का, अनुष्का, उस दिन तुम झाड़ी में मिली थी, अकेली और डरी हुई। मैंने तब तुमसे एक वादा किया था, तुम्हें मैं कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, और मैं उस वादे को हमेशा निभाती रहूंगी। कहते हुए मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। अनुष्का के होंठ कांपे। याद आया कि उस दिन उसने पहली बार किसी अनजानी बाहों में अपने दर्द को ढक लिया था। उस औरत की छाती पर सिर रखकर रोई थी और फिर अब वही छाती फिर से उसके लिए स्तंभ थी। धीरे धीरे अनुष्का की उंगलियां चौखट से ढीली हो गईं। उस पल दोनों के बीच एक पुल बन गया, बीते हुए दर्द और आने वाली उम्मीद के बीच का पुल। घर के भीतर हल्की सी रोशनी बिखरी हुई थी। शाम की धूप खिड़की से छनकर कमरे में उतर रही थी, मानो वर्षों से बंद पड़े सन्नाटे को सहलाने आई हो। दीवारों पर समय की धूल थी, पर उस धूल में भी ममता की डोर थी। अनुष्का धीरे धीरे कमरे में चली आई। उसकी उंगलियां दीवार से छू गईं, जहां पहले माँ ने तस्वीर टांगी थी। तस्वीर अब वहां नहीं थी, सिर्फ कील बाकी थी। वो कील मानो उसकी अपनी जिंदगी का प्रतीक थी, अधूरा खाली इंतजार करता हुआ कील। उसकी आंखें भर आईं, पर ये आंसू मातृत्व की कमी के नहीं थे, बल्कि अपनी यात्रा की थकान के थे। उसने अपनी माँ की तस्वीर पर माला पहनाते हुए धीमे स्वर में कहा, माँ तुमने मुझे जन्म दिया और छोड़ दिया, फिर लौटकर मुझे पाया और खो दिया। लेकिन मैं अब तुम्हारी अधूरी छाया में नहीं रहना चाहती, मैं अपना जीवन खुद लिखूंगी। अनुष्का के शब्द हवा में गूंजे, मानो घर की दीवारें भी सुन रही हों। अनुष्का की पलकों पर आंसू की बूंद ठहर गई। उसने खिड़की खोली, सूरज की किरणें भीतर उमड़ आईं। कमरा अचानक उजाले से भर गया, जैसे अंधेरे की परतें टूटकर बिखर गई हों। उसने एक लंबी सांस ली और दरवाजे की तरफ पलटकर देखा। वही चौखट जो उसकी अनचाही शुरुआत की गवाह थी, अब उसी चौखट पर खड़े होकर उसने दृढ़ स्वर में कहा, मैं अब किसी की छोड़ी हुई बच्ची नहीं, मैं अब एक माँ की बेटी हूँ। यही घर अब मेरी पहचान बनेगा, अब मैं इस घर से कहीं और नहीं जाऊंगी। अनुष्का की आंखों में उदासी की धूसर बादल की बजाय पहली बार इंद्रधनुष चमका था, एक नई शुरुआत का। उस पल मानो वर्षों की वेदना धूप की तरह पिघल गई। बाहर आकाश में ढलता सूरज सुनहरी छटा बिखेर रहा था।

सपने में ठिठका इंतजार, ये गीतों भरी कहानी अभी आपने सुनी। लेखिका और स्वर ममता सिंह, संपादन काजल भगर्गी, प्रस्तुति जुबैर खान।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: मिलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
1: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना। विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
1: देना साथ मेरा ओ हम नवा।
0: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी।
1: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।

FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोता भी सुन रहे थे आकाशवाणी केंद्र मुंबई से रिले विविध भारती के कार्यक्रम। दिन के 11 बज चुके हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम विवरण।

कार्यक्रम विवरण में हमारे श्रोता सुनेंगे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण और उनके प्रसारण समय के बारे में। अब से कुछ ही देर बाद दिन में 11:05 पर आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुरबहार आपके लिए पेशे खिदमत होगा 12:00। लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर सुनिएगा विनोद कुमार एंड पार्टी की आवाज में 12:30 पर। आकाशवाणी केंद्र जयपुर से रिले किए जाएंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार 1:00 और महिलाएं सुन सकेंगी अपना कार्यक्रम महिला जगत 1:05 पर। मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार आप सुन सकते हैं आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से 2:00 और 2:15 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम तराने नए पुराने सुनिएगा 2:30 पर। हमारी आज की सायंकालीन सभा में 5:00 युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी। 6:00 सुनिएगा आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से रिले हिंदी में समाचार। अंग्रेजी में समाचार होंगे 6:05 पर। देशभक्ति फिल्म गीत FM चूरू से प्रसारित होंगे 6:10 पर। 6:20 पर सुनिएगा आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से रिले संस्कृत में समाचार। हिंदी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी केंद्र जयपुर से 6:30 पर। जिले की चिट्ठी का प्रसारण होगा 6:40 पर और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आप सुन सकते हैं 6:45 पर। किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम किसान वाणी, समय रहेगा 7:00 का। राजस्थानी लोक संगीत सुनेगा FM चूरू से 7:30 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता आप सुन सकते हैं 8:00। समाचार संध्या और न्यूज 8:09 का प्रसारण होगा आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से 8:45 पर और 9:00। एक बार फिर से सुनिएगा राजस्थानी लोक संगीत, समय रहेगा 9:15 का। कार्यक्रम संस्कृति भारती रिले किया जाएगा आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से 9:30 पर। आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से ही आप सुन सकते हैं संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम 10:00। 11:00 सुनिएगा आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से रिले हिंदी में समाचार, अंग्रेजी में समाचार होंगे 11:05 पर।

श्रोता अभी सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण में आपने जाना हमारे इस केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी और उनके प्रसारण समय के बारे में।

FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11:05 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

लीजिए श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अनुराधा पोडवाल और कुमार सानू की आवाजों के साथ। शब्द हैं रानी मलिक के और संगीत नदीम श्रवण का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे दिल है कि मानता नहीं फिल्म से नगमा। आइए सुनते हैं फिल्म याद रखेगी दुनिया से ये नगमा। आवाज़ है मोहम्मद अजीज और साधना सरगम की।

आइए श्रोताओं में एक बार फिर से सुनते हैं मोहम्मद अजीज की आवाज, साथ में है लता मंगेशकर, फिल्म का नाम कब तक चुप रहूंगी।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू। क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: FM चूरू से श्रोता इस वक्त सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत।
2: रोमियो जूलियट, लैला मजनू, शिरी और फरहा, इनका सच्चा इश्क जमाने को अब

यही है साहिबान कहानी प्यार की। किसी ने जान ली, किसी ने जान

बप्पी लहरी की आवाज के साथ ही चित्रपट संगीत का एक कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। FM 100.7 MHz पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुरबहार।

श्रोता भी सुन रहे थे सैयद साबरी और फरीद साबरी की आवाजें। इसी के साथ हमारा आज का गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुरबहार यहीं संपन्न होता है। FM 100.7 MHz पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर।

श्रोता भी सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर FM 110.7 MHz पर। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर का 1 बजने को है। श्रोता भी सुन सकेंगे आकाशवाणी केंद्र जयपुर से रिले हिंदी में प्रादेशिक समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में आज शपथ ली। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। मुख्यमंत्री के

0: साथ पांच अन्य विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल आरएन रवि ने सभी को शपथ दिलाई। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और 20 राज्यों के मुख्यमंत्री तथा उप मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने ब्रिगेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो भी किया। केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। श्री चौहान का कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तारीख से लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणी सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी काम करेंगे। वर्तमान में वे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे सेना के उप प्रमुख और केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणी पश्चिमी और उत्तरी मोर्चों पर प्रमुख परिचालन इकाइयों की कमान भी संभाल चुके हैं। राजधानी जयपुर में आज लोक अभियोजकों की राज्य स्तरीय कार्यशाला हो रही है। इसमें नए आपराधिक कानूनों, साइबर क्राइम तथा दिव्यांग कानूनों पर मंथन किया जा रहा है। बिड़ला सभागार में हो रहे इस कार्यक्रम में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा भी मौजूद रहे। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी इस कार्यशाला में शिरकत की। कार्यशाला में न्याय प्रक्रिया को तेज और प्रभावी बनाने तथा नए कानूनों के क्रियान्वयन पर जोर दिया जा रहा है। अजमेर की ऐतिहासिक पहचान से जुड़े तारागढ़ किले और इसके आसपास के पहाड़ी क्षेत्र का कायाकल्प किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कल इस बारे में जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की। गौरतलब है कि आजादी के बाद पहली बार इस किले और क्षेत्र के समग्र विकास तथा संरक्षण की व्यापक कार्य योजना तैयार की जा रही है। राज्य सरकार ने पिछले बजट में इसके लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आज प्रयोगशाला सहायक और कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है। 804 पदों के लिए ली जा रही ये परीक्षा आज एक और कल दो पारियों में होगी। बोर्ड की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार इस बार अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र के अंदर जाने के लिए 2 स्तरीय सुरक्षा जांच से गुजरना होगा। बायोमेट्रिक जांच के साथ ही फेस रिकॉग्निशन तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाएगा। पारदर्शी और सुचारू परीक्षा संचालन के लिए सभी केंद्रों पर वीडियोग्राफी की भी व्यवस्था की गई है। प्रदेश में महिला सुरक्षा संकल्प अभियान 14 और 15 मई को चलाया जाएगा। 2 दिन के इस अभियान के तहत महिला सुरक्षा कानून और आत्मरक्षा के तरीकों के साथ महिलाओं को जागरूक किया जाएगा। इसी कड़ी में झुंझुनू जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक फूलचंद मीणा ने बताया कि अभियान के तहत स्कूल, कॉलेज, बस स्टैंड, पार्क और भीड़भाड़ वाले इलाकों में महिलाओं से अभद्रता करने वाले लोगों के खिलाफ मौके पर ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभियान के तहत कालिका टीम और निर्भया स्क्वाड को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये टीमें सार्वजनिक स्थानों पर लगातार गश्त करेंगी। आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से अदम्य साहस और वीरता के पर्याय महाराणा प्रताप को नमन किया है। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा है कि महाराणा प्रताप ने मातृभूमि की रक्षा के लिए घास की रोटी खाना स्वीकार किया, लेकिन विदेशी दासता के आगे कभी सिर नहीं झुकाया। पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में हीट वेव का दौर बना हुआ है। जैसलमेर, बाड़मेर और फलौदी में कल तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। 44.8 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ फलौदी सबसे गर्म स्थान रहा। मौसम विभाग ने आज भी इन जिलों के लिए हीट वेव का अलर्ट बताया है। वहीं कई जिलों में भीषण गर्मी के बीच मौसम बदला। नागौर, अजमेर, टोंक, बूंदी और सवाईमाधोपुर में दोपहर बाद धूल भरी आंधी चली और हल्की बरसात हुई। पूर्वी राजस्थान में आज भरतपुर, धौलपुर, करौली और अलवर जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: FM 110.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर का 1:05 हो चुका है। अब महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम महिला जगत।

महिला श्रोताओं का पसंदीदा प्रोग्राम कार्यक्रम महिला जगत लेकर हम हाजिर हैं और आज के इस प्रोग्राम में मैं आपके साथ हूँ आपकी सखी संजू सोढ़ा। तो स्वीकार करें मेरा प्यार भरा नमस्कार।

श्रोताओं, हम सभी को पता है कि ये तकनीक का दौर है और इस तकनीक के दौर में हमें चलना भी चाहिए इस समय के अनुसार। जब ज़माना बदलता है तो हमें भी पता है कि हमें बदलना पड़ता है उसके साथ, और उसी के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो ही हमारे लिए बेहतर होता है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि अति हर चीज़ की बुरी होती है, फिर चाहे वो कोई भी चीज़ हो, हमारे खाने पीने की सामान हो या हमारी और कोई आदत हो, या बात करें कि डिजिटल दुनिया से जुड़ने की बात हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे टेक एडिक्शन की, यानी कि हमारी तकनीकी लत की बात। एक तकनीक को अगर हम एक अपने सदुपयोग के लिए यूज़ करें और उससे अच्छा लाभ हम ले सकें, सिर्फ उसी के तौर पर अगर हम उसको यूज़ करें तो वो हमारे लिए बेहतर हो सकती है, लेकिन उसी की अगर हमें लत लग जाए तो वो चीज़ बुरी है। वो कहीं ना कहीं हमारे शारीरिक स्वास्थ्य और हमारे मानसिक संतुलन को बाधित करती है। इसलिए ज़रूरी है कि इस तकनीकी लत से हमें बचना होगा, और इस समय में बचना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे समय की बर्बादी, हमारे मानसिक तनाव और हमारी प्रोडक्टिविटी में कमी का कारण बन रही है। इससे बचकर आज हम अपना कीमती समय बचा सकते हैं और हमारे जीवन में संतुलन भी बना सकते हैं। जी हाँ, कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हमें इतना ज़्यादा बाधित कर रही हैं कि ना तो हम अपने परिवार को समय दे पा रहे हैं, ना खुद को समय दे पा रहे हैं, और ना ही कोई कार्य जो है वो सही समय पर और अच्छे से कर पा रहे हैं। तकनीकी लत से बचने के बहुत से उपाय हो सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो हम यही तय कर लें कि हमें स्क्रीन टाइम जो है उसकी लिमिट हम तय कर लें। अपने स्मार्टफोन में बहुत से ऐसे ऐप्स होते हैं या अपना जो स्क्रीन टाइम का जो एक फीचर होता है उसको यूज़ करके हम एक समय निर्धारित कर लें कि हमें इतनी देर के लिए, एक बार में इतनी देर के लिए हम जो है स्क्रीन का यूज़ करेंगे। उसके बाद जो है अपने आप से नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपने इतनी देर स्क्रीन का यूज़ कर लिया है, अब आप इसको ऑफ़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम छोटी छोटी आदतें अपनाकर जो है अपनी तकनीकी लत को कम कर सकते हैं। साथ ही साथ नोटिफिकेशन आप बंद रखें, क्योंकि कई बार ऐसे गैर ज़रूरी ऐप्स होते हैं जिनके नोटिफिकेशन बार बार हमें आते रहते हैं और उनको हम देखने के लिए बार बार जो है अपना फ़ोन स्क्रॉल करते रहते हैं, और उसी में हमारी आदत बन जाती है कि उसी को देखते देखते हम दूसरे ऐप्स खोल लेते हैं, और उन दूसरे ऐप्स में फिर से हमारा टाइम कैसे निकल जाता है हमें पता ही नहीं चलता। इसलिए ज़रूरी है कि कुछ ज़रूरी जो नोटिफिकेशन हैं सिर्फ उन्हीं को ऑन रखें, हर ऐप्स के नोटिफिकेशन को आप ऑन ना रखें, उन्हें ऑफ़ रखें। साथ ही बात करते हैं हम टेक फ्री जोन की, यानी कि हमारे कुछ एरियाज़ घर में, कुछ हमारी जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ कि हम फ़ोन का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। जैसे कि हम बात करें हमारे बेडरूम की या डाइनिंग टेबल की, तो वहाँ को हम जो है नो फोन जोन घोषित कर सकते हैं। खासकर सोने से 1 घंटा पहले और खाने के समय तो हम बिल्कुल से ये तय कर लें, अपने घर के सभी मेम्बर्स के लिए हम तो ये तय कर लें कि हम जो है इस टाइम बिल्कुल से मोबाइल का यूज़ नहीं करेंगे। और जब भी आप सोने जाएं तो आप स्वयं के लिए भी ये निर्धारित कर लें, और अपने घर के जो बच्चे हैं या घर के जो अन्य सदस्य हैं उनके लिए भी आप निर्धारित कर लें कि जब भी हम खाना खाने बैठेंगे कोई भी अपने हाथ में मोबाइल नहीं रखेगा, कोई भी उस वक्त जो है किसी भी तरह की स्क्रीन का यूज़ नहीं करेगा। अगर इस तरह से हम छोटी छोटी सी पाबंदियाँ अपने आप पर लगा लेते हैं, अपने आप को हम रोक लेते हैं कुछ ऐसी बुराइयों से, तो हो सकता है हमारी आदत जो है वो सुधर जाए। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल हमने ऑफलाइन शौक छोड़ दिए हैं, जैसे कि हमारे किताबें पढ़ना या कहें कि पेंटिंग करना, बागवानी करना, बाहर टहलने जाना, ये सब हमने बिल्कुल से बंद कर दिया है। और हम सारे दिन जो है जब भी हमें फ्री टाइम मिलता है हम मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं, कोई ड्रामा देख रहे हैं, सीरियल्स देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, बिना बात के हम अपनी स्क्रीन को स्क्रॉल करते जा रहे हैं, कभी न्यूज़ देख ली, ये देख लिया। लेकिन इन सब चीज़ों से बाहर निकल के भी हमें सोचना चाहिए कि इनसे भी अलग जो है एक हमारी बाहरी दुनिया है जिससे कि हमें कांटेक्ट करना है। तो अगर आप अपने जो शौक़ हैं उनको ज़िंदा रखें और ये डिजिटल जो शौक़ हैं उनको बंद करके आप ऑफलाइन शौक़ जो है अपने अपनाइए। जैसे कि आपको पेंटिंग का शौक़ है, आप पेंटिंग कीजिए, आपको सिंगिंग का शौक़ है, आप सिंगिंग कीजिए, आपको किताबें पढ़ने का शौक़ है, आप किताबें पढ़िए या बागवानी करें, और शाम को नियम ही बना ले कि आपको जो है खाना खाने के बाद जो है घर से बाहर टहलने जाना है। आप अपने बच्चों को साथ ले जाकर जा सकते हैं, अपने पार्टनर को साथ ले जाकर आप जो है घूम सकते हैं। अगर आप इस तरह से शौक अपने जिंदा रखेंगे तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी जो है वो धीरे धीरे बदलने लगेगी। फ़ोन को दूर रखें, जब भी आप काम कर रहे हैं, या हमारे बच्चे जो हैं वो अक्सर हम देखते हैं कि उनके पास फ़ोन होता है, वो पढ़ाई कर रहे होते हैं, थोड़ी सी फ़ोन की रिंग बजी और उनका ध्यान बिल्कुल से उछड़ जाता है
कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहता कि वो क्या पढ़ रहे हैं, और फिर वो वापस एक चीज़ देखने के लिए आधा घंटा जो है अपना उस मोबाइल पर ख़राब कर देते हैं। इसी तरह से हम भी जब ज़रूरी काम कर रहे होते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो है अपना मोबाइल हमसे थोड़ा दूर रखना चाहिए, ताकि उस पर कोई नोटिफिकेशन आते हैं या कोई कॉल आ रही है, बहुत ज़रूरी कॉल है तो हम उसको पिक करें। अदरवाइज़ अगर हमारे काम ज़रूरी हैं तो पहले हम अपने कामों को निपटाना ही उचित समझें। साथ ही साथ ग्रे स्केल मोड जो होता है, एक मोड होता है जिसमें हम अपने फ़ोन को ब्लैक एंड वाइट मोड में रखते हैं, जिससे कि स्क्रीन जो है हमें कम आकर्षक लगती है। हम देखते हैं कि जब ऐप पे जो नई नई फीचर्स या नई नई जो फोटोज़ आती है तो हमें वो अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, और हम देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या है, इसमें ऐसा क्या है। तो अपने फ़ोन को जो है आप ब्लैक एंड वाइट मोड में रख कर देखिए, कुछ हद तक आपको लगेगा कि आपको जो है थोड़ी मोबाइल से बोरियत फील होने लगेगी, और जब ये बोरियत आपको फील होने लगेगी तो आपकी ज़िंदगी जो है उसमें जो है रंग खिलने ज़रूर स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए इन थोड़ी सी आदतों को अपनाकर हम जो है अपनी डिजिटल लत को जो है दूर कर सकते हैं। बातें हम और भी करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये गीत।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू।
1: राजस्थान पब्लिक स्कूल बिसाऊ,
2: नए सत्र में पहले 100 प्रवेश पर फीस में 25% की छूट।
1: कृषि विज्ञान कॉमर्स व कला सभी विषय उपलब्ध।
2: बेटियों के लिए विशेष छात्रवृत्ति।
1: अनुभवी साफ सुरक्षित वाहन सुविधा और शानदार परिणाम।
2: हजारों छात्र आज सरकारी सेवाओं में हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में।
1: राजस्थान पब्लिक स्कूल बिसाऊ 9413366097।

0: अपने घर। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: और हम बात कर रहे थे कि तकनीकी लत से हम कैसे अपना पीछा छुड़वा सकते हैं और उसको पीछा छुड़वाने से हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो बात करें हम हमारे सवेरे और रात की, यानी कि दिन की शुरुआत की और दिन को एकदम से रिलैक्स मोड में जाने की बात करें कि सुबह उठते ही और रात को फोन सोते समय हम ये नियम बना लें कि हम फ़ोन को छुएंगे नहीं। और कई बार हम देखते हैं कि जब हम सुबह जल्दी उठना होता है तो हमारा अलार्म फिक्स होता है, तो कोशिश ये करें कि आप अलार्म को अपनी अलार्म घड़ी में ही सेट करें, ना कि अपने मोबाइल में सेट करें। क्योंकि जब भी आप जो हैं अलार्म बंद करने के लिए अपने मोबाइल को हाथ में लेती हैं सुबह पहले, कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आपको ऐसा दिख जाता है, या फिर आंखें एकदम से जब आपकी खुलती हैं तो वो नीली रोशनी जब आपकी आंखों में पड़ती है तो वो आपके लिए सही नहीं है। इसलिए ध्यान रखें कि कोशिश ये करें कि अगर आपको अलार्म सेट करना है तो आप घड़ी में ही उसको सेट करके रखें। और रात को भी आप कोशिश ये करें कि जब भी आपको सोना हो उससे एक डेढ़ घंटे पहले आप फ़ोन को अलग रख दें, और उसके बाद जो है अच्छा संगीत सुने या अच्छी किताबें पढ़ें ताकि आपको अच्छी सी नींद आ सके। और हमें फ़ायदे क्या हो सकते हैं कि अगर हम इस तकनीकी लत को छोड़ देते हैं तो हमें किस तरह के फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकता है। तनाव है, चिंता है, डिप्रेशन में कमी आ सकती है और हमें एक सुकून और मानसिक शांति मिलती है। क्योंकि जब हम सारे दिन मोबाइल नहीं देखते हैं और हमारी आंखों को भी जो है वो नीली रोशनी जो है सारे दिन सहन नहीं करनी पड़ती, तो हमें एक मानसिक सुकून मिलता है, एक शांति मिलती है कि आज हमारा दिन जो है हमारे लिए निकला है और हमने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। साथ ही साथ हमारी कह सकते हैं कि बेहतर नींद में वृद्धि होती है। स्किन से निकलने वाली जो नीली रोशनी होती है वो कम होने से नींद की हमारी गुणवत्ता में सुधार होता है और हमारी अनिद्रा की समस्या जो है दूर हो जाती है। इसलिए अगर हम इस लत को छोड़ देते हैं तो हमें बहुत से फ़ायदे हो सकते हैं। साथ ही साथ बात करें हमारे पारिवारिक रिश्तों की, ये तो हमारे रिश्ते भी बहुत मजबूत हो सकते हैं। जब हम जो हैं फ़ोन की जगह परिवार और दोस्तों के साथ अपना समय बिताते हैं तो हमारे रिश्ते प्रगाढ़ हो जाते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि पति पत्नी एक ही कमरे में रहते हैं जहाँ दोनों अपने फ़ोन में व्यस्त रहते हैं और फ़ोन में वो इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनके पास भी कोई बैठा है। तो इसलिए ज़रूरी है कि अपने रिश्तों में आप सुधार लाएं। जब भी आप एक कमरे में होते हैं, अपने साथी के साथ होते हैं, तो कोशिश ये करें कि फ़ोन को अपने से दूर रखें और अपने घर परिवार की बातें करें, अपने भविष्य को लेकर जो है आप बातें करें, जिससे कि आपके रिश्ते जो है मधुर हो सकते हैं। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि घर में अगर आपके बच्चे हैं, घर में और भी बुज़ुर्ग सदस्य हैं, तो उनके पास बैठकर जो है आप उनसे बातें करें, उनके अनुभवों को सुनें, अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाएं, बच्चों की स्कूल की बातें जो है आप सुने, आपके बच्चे आपसे क्या चाहते हैं, क्या उनके सपने हैं, उन चीज़ों को लेकर अगर आप बात करते हैं तो आपके संबंधों में बहुत ज़्यादा सुधार होता है। तो ये बहुत से फ़ायदे हैं कि अगर हम फ़ोन से थोड़ी सी अपनी दूरी बना लेते हैं तो हम किस तरह से मानसिक तौर पर स्वस्थ रह सकते हैं और शारीरिक तौर पर भी स्वस्थ रह सकते हैं। क्योंकि कुछ नियम आप ऐसे भी अपना सकते हैं कि जैसे कि हम कह सकते हैं कि हमारे फोकस में भी बहुत ज़्यादा सुधार हो सकता है। लगातार जब हम देखते हैं कि कुछ नोटिफिकेशन चल रहे हैं, हमारा ध्यान उधर रहता है कि हमारे घड़ी फ़ोन में जो है थोड़ी सी ट्यूनिंग बजी है, ज़रूर कोई नोटिफिकेशन आया होगा, तो ये जो है हमारा मानसिक विचलन जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। हमें बार बार एक ही चीज़ पर हमारा फोकस रहता है कि हमारे फ़ोन में क्या आया होगा, क्या नोटिफिकेशन आया होगा, क्या मैसेज आया होगा। तो अगर आप फ़ोन से थोड़ी दूरी बना लेते हैं तो ये विचलन भी जो है आपका बहुत हद तक कम हो जाता है। बात करें साथ ही साथ कि आप डिजिटल ड्रग्स जो है कैसे कर सकते हैं, तो धीरे धीरे इसको कम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने आज ही अपना लिया कि हम जो है बिल्कुल आज से ही अपना फ़ोन जो है यूज़ नहीं करेंगे, हमने पूरे दिन फ़ोन बंद कर रख दिया, लेकिन अगले दिन ये संभव नहीं हो पाएगा। क्योंकि कोई भी लत लगनी बहुत आसान है कि हम उसको अपना बहुत जल्दी लेते हैं, बुराइयाँ बहुत जल्दी अपनाई जाती हैं और अच्छाइयाँ जो है बहुत धीरे धीरे अपनाई जाती हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप भी इस अच्छाई को अपनाएं तो इसके लिए भी आपको धीरे धीरे ही प्रिपेयर होना पड़ेगा कि धीरे धीरे आप जो है अपने फ़ोन से दूरी बना कर रखें। चाहे जैसे कि आज आपने एक घंटे के लिए फ़ोन को कम किया है, दूसरे दिन आप डेढ़ घंटा कीजिए, तीसरे दिन और एक दिन, तो हफ्ते में धीरे धीरे आप इस स्थिति पर आ जाएंगे कि हफ्ते में एक दिन आप बिल्कुल से ही कोशिश ये करें कि आप बिल्कुल भी फ़ोन का यूज़ ना करें। उस दिन आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ या अपने दोस्तों के साथ जो है बाहर घूमने जाएंगे और अपना समय जो है अच्छे से एक प्राकृतिक वातावरण में बिता कर आएंगे। अगर आप धीरे धीरे ऐसा करेंगे तो आपकी आदत जो है हो सकती है, और डिजिटल उपवास हम इसको कह सकते हैं।

कि हफ्ते में कुछ दिन, कुछ घंटे आप जो है बिल्कुल से, जैसे कि हम फास्टिंग करते हैं कि आज का हमने पूरा दिन फास्ट रखा है, हमने खाना नहीं खाया, सिर्फ हमने ड्रिंक्स यूज की हैं या हमने पानी यूज़ किया है, उसी तरह से आप डिजिटल उपवास भी रख सकते हैं। तो उसके अंदर आप जो है फ़ोन का यूज़ नहीं करेंगे। जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी आपको कॉल्स हो जाते हैं, कोई मेल्स हो जाते हैं, वो आप करिए, लेकिन कोशिश ये करें कि आप जो है उससे दूरी बनाए रखें, ताकि आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर बना रहे।

क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: हमें लिखनी है उन पर एक पूरी किताब, उनकी तारीफें चंद लफ्जों में हमसे बयां नहीं होगी। जी हाँ श्रोताओं, हम सबको पता है कि हमें अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद है। वो तारीफ भले ही हमारे काम की हो, हमारे चरित्र की हो, हमारे गुणों की हो या हमारी खूबसूरती हो, हर किसी को अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद होता है। और हम चाहते हैं कि जैसा हम काम करें उसके अकॉर्डिंग ही हमें तारीफ जो है वो भी सुनने को मिले। जी हाँ बिल्कुल सही कहा गया है कि दूसरों की तारीफ करना भी एक खूबसूरत कला है। ये एक शब्द नहीं बल्कि सामने वाले को सम्मानित करने और उससे जुड़े रहने का एक तरीका भी है। तारीफ करना भी एक कहें कि एक प्योरिटी होती है जो हमारे मन से जो शब्द निकलते हैं वो हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अगला जब उसे सुने तो उसे बनावटीपन सा लगे, उसे ऐसा लगे कि नहीं हमने उससे कुछ हमें उसकी नीड है या उससे हमें कुछ चाहिए तो हम उसकी तारीफ कर रहे हैं। हमारी तारीफ कभी भी झूठी नहीं होनी चाहिए। हम साफ नीयत से अगर हम तारीफ करते हैं तो अगले को भी सुनने में वो बहुत अच्छी लगती है। सच्ची तारीफ में ही असर होता है, इसलिए तारीफ जब भी करें आप दिल से करें। और अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि उनकी तारीफ, जहाँ आपने पहले उनकी तारीफ की, दूसरी बार जब वो आपको मिले फिर जब उन्हें वहाँ लगे कि कोई कमी रह गई तो आप उन्हें वो उनकी कमी भी बताएं। क्योंकि हर बार तारीफ करना ही ऐसा नहीं कि आप झूठी उनकी तारीफ करते रहें और जब उनको असलियत का पता चले तो उन्हें लगा कि जो उनके शुभेच्छक हैं यानी कि जो उनको दिल से चाहने वाले हैं जब वो ही उनकी झूठी तारीफ करेंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए साफ नीयत से तारीफ करना बहुत बड़ी बात है और विशिष्टता भी हमारी तारीफ में होनी चाहिए। सामान्य तरीके के बजाय अगर हम अलग तरीके से उनको तारीफ करते हैं, जैसे कि आपकी ड्रेस अच्छी लग रही है, ये तो हम सभी कहते हैं, लेकिन जब आप कहें कि नहीं ये रंग आप पर बहुत खिल रहा है तो ये कहना ज़्यादा बेहतर लगता है। इसलिए अपनी तारीफ में भी आप विशिष्टता को ध्यान में रखें। हम सबको पता है कि हम जिसे चाहते हैं उसे खुश करने के लिए हम उसकी खूबसूरती की तारीफ करते हैं और ये हमारे द्वारा की गई तारीफ हमारे रिश्तों को और ज़्यादा मजबूत बनाती है। प्यार भरे रिश्ते में एक दूसरे की तारीफ करना अक्सर चलता रहता है, लेकिन ये तारीफ अगर हम साफ नीयत से करें, विशिष्टता से करें तो और भी ज़्यादा जो है इसका मज़ा दुगना हो जाता है। साथ ही हम बात करें कि व्यक्ति की मेहनत और की सराहना जो है हमें ज़रूर करनी चाहिए। केवल खूबसूरती ही नहीं बल्कि व्यक्ति के काम, उसकी समझदारी, उसका आत्मविश्वास या उसके स्वभाव की तारीफ जो है हमें करनी चाहिए। जैसे कि आप हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं या आप में काम करने का ये तरीका जो है आपका हमें बहुत अच्छा लगता है, इस तरह की तारीफ जब हम अगले से करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जो खूबसूरत इंसान हो सिर्फ वो ही जो है तारीफ़ के लायक होते हैं। जो गुणी और समझदार लोग होते हैं वो भी तारीफ़ के बहुत ज़्यादा लायक होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक गुण को लेकर हम ये अपनी मंशा बना लें कि सिर्फ उन्हीं के लिए तारीफ़ की जाती है। हर व्यक्ति का हर गुण जो होता है, हर तरीके से जब वो काम करता है तो अलग अलग तरीके से, अलग अलग सोच से हम जो है उनकी तारीफ कर सकते हैं। और आपको परिणाम भी उसके बताने चाहिए। तारीफों के साथ आप बताएं कि उनकी किस बात से आप ज़्यादा प्रभावित हुए और कौन सी बात जो है आपको ज़्यादा अच्छी लगी, ताकि अगले को भी लगे कि वाकई में इन्होंने जो है हमें पूरा देखा है, इन्होंने जो हमारी बातें जो हैं वो पूरी सुनी है और इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव जो है अगले पे पड़ता है। इसलिए बताएं कि आप उनकी किस बात से ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। इसलिए अगर हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो अगले को भी लगेगा कि हमने उसकी झूठी तारीफ नहीं की है और तारीफ करने का आपका जो उनको जो एक वे होगा, जो आप तारीफ़ करने का आपका वे है, वो भी उनको बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। इसलिए ज़रूरी है कि तारीफ़ करना हमेशा आसान नहीं होता, खासकर तब जब आपको समझ ना आए। कई बार हमें ये भी लगता है कि हमने इनकी तारीफ़ की तो क्या पता इनको ऐसा लगे कि हमें इनसे कोई काम है इसलिए हम इनकी तारीफ़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें से बहुत से ऐसे भी होते हैं जिनको तारीफ करने में भी संकोच आता है। हमें लगता है कि नहीं हमने तारीफ की तो अगला इसका कोई भी मतलब जो है निकाल सकता है। ऐसा नहीं है, अगर आपको लगता है कि वाकई में आपको दिल से कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो आपको उसकी ज़रूर तारीफ़ करना चाहिए। और जहाँ कहीं आपको ऐसा संकोच फील हो जाए तो आजकल हम देखते हैं कि हमारे पास मैसेज करना जो है एक बहुत बड़ा उपाय है, आसान उपाय है, जिसके द्वारा हम जो है अगले के साथ जो है अपनी सोच को प्रेषित कर सकते हैं। तो आप उनको मैसेज करके भी उनकी तारीफ जो है कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि आपकी उनकी कौन सी बात जो है आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है। इसलिए तारीफ करने के इन तरीकों को आप भी अपनाएं और अपने जो खास हैं उनकी तारीफ जो है करना बिल्कुल ना भूलें।

और अब हम बात करते हैं आपसे अपनी स्किन केयर के बारे में, जिसमें आज हम बात करेंगे बीट रूट से आप जो है अपनी स्किन केयर कैसे कर सकती हैं। तो स्किन के लिए ये एक कूल केयर हो सकता है कि बीट रूट को घिसकर या छोटे स्लाइस काटकर मिक्सर में आप एक जूस तैयार कर लें, लेकिन ध्यान रहे कि उसमें किसी भी तरह का नमक या मसाला जो है आपको नहीं मिलाना है। जूस को पानी से डाइल्यूट भी कर सकती हैं। फिर आप जो होती हैं, जो हमारी आइस क्यूब ट्रे होती है उसमें आप जो है उस जूस को डालकर रख सकती हैं, और जब वो जम जाए तो आप हर रोज़ जो है या फिर हफ्ते में 2 या 3 बार जो है उन स्लाइस को लेकर आप अपने चेहरे पर उनकी मालिश कर रही है, और उसको थोड़ी सी देर मालिश होने के बाद जब स्लाइस पूरी ख़त्म हो जाती है तो उसको थोड़ी देर अपने चेहरे पर रहने दें, और फिर आप ठंडे पानी से उसको धो लीजिए। आपका चेहरा जो है चमक जाएगा और जो रिंकल्स की समस्या होती है, झाइयों की जो समस्या होती है, वो बहुत हद तक उससे कम हो जाती है। साथ ही साथ आप अगर चाहते हैं कि आपको किसी तरह की और स्किन प्रॉब्लम है तो उस बीटरूट जूस में आप जो है एलोवेरा भी थोड़ा सा मिला सकती हैं और उसको स्लाइस के तौर पर जमा सकती हैं और फिर उसका आप यूज़ कर सकती हैं। साथ ही साथ अगर हम फेस पैक की बात करें तो बीट रूट के स्लाइस जो सुखा कर उसका पीस कर आप पाउडर बना लें, और उस तैयार किए गए पाउडर में एक अलग तरह का पैक जो है आप बना सकती हैं। ऑयली स्किन के लिए, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप बीट रूट जो पाउडर है उसमें मुल्तानी मिट्टी साथ में मिला सकती हैं। मुल्तानी मिट्टी मिला लीजिए और फिर उसमें गुलाब जल डालकर आप उसका फेस पैक तैयार कीजिए, जो कि आपकी इस ऑयली स्किन के लिए बहुत बेहतर है। साथ ही अगर आपकी ड्राई स्किन है, आप चाहती है कि आपका चेहरा ग्लो करे, ड्राई ना रहे, तो उसके लिए आप बीट रूट पाउडर में थोड़ा सा 1 चम्मच दही मिला लीजिए, और फिर उसको आप एज ए फेस पैक लगाकर थोड़ी देर 15 से 20 मिनट उसको अपने चेहरे पर रखें, और फिर ठंडे पानी से आप धो लीजिए। उससे आपकी स्किन जो है वो ड्राई नहीं रहेगी। तो इस तरह से आप एक बीट रूट से अपनी अच्छे से स्किन केयर कर सकते हैं।

जी श्रोताओं, हमारी मुलाकातें भी होनी बहुत ज़रूरी है, तो अगली मुलाकात का वादा करते हुए आपसे आज के प्रोग्राम से इजाज़त लेती हूँ मैं संजू सूढ़ा। नमस्कार।

0: परेड ग्राउंड में राज्यपाल आर एन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री और राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया।
2: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा और अनुगत्य पोषण करिब। ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব।
1: शपथ ग्रहण की प्रक्रिया के अनुसार सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उसके बाद एक एक कर मंत्री के रूप में दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशित प्रामाणिक ने शपथ ली। आकाशवाणी समाचार कोलकाता से काशफिन नाहर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के शुरुआती दिनों के सबसे वरिष्ठ राज्य नेताओं में से एक 97 वर्षीय मक्खनलाल सरकार का आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री ने उन्हें गले लगाया और उनके पैर छुए। मक्खनलाल सरकार भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोगी थे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो किया। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने जमीनी स्तर पर अथक परिश्रम किया है और जनता की सेवा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने कहा कि जो लोग अब भी नतीजों पर चर्चा कर रहे हैं उन्हें विवेक से काम लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में शिक्षा और संस्कृति को जो भारी नुकसान हुआ है उसे संवारने की जिम्मेदारी भाजपा पर है। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
3: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
0: आज गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 25 वैशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक रिपोर्ट।

0: उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। श्री मोदी ने कहा कि गुरुदेव ने एक दार्शनिक, शिक्षाविद, कलाकार और भारत की सभ्यतागत आत्मा की शाश्वत आवाज के रूप में अपनी छाप छोड़ी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: संसद के सदस्यों, पूर्व सांसदों और लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में संविधान सदन के केंद्रीय हॉल में गुरुदेव के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा सचिवालय ने कहा कि गुरुदेव टैगोर की रचनाओं ने देशवासियों में देशभक्ति की भावना को प्रेरित किया। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं करने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बेबी ने कहा कि राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। चेन्नई में उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रहे हैं। एक अन्य घटनाक्रम में अम्मा मक्कल मुनेत्रा कड़गम प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से अपनी पार्टी के विधायक द्वारा टीवीके को सौंपी गई समर्थन पत्र पर कार्यवाही की मांग की है। वीसीके पार्टी आज शाम 4 बजे टीवीके के साथ औपचारिक बैठक के बाद समर्थन के बारे में घोषणा करेगी। केरल में भी नई सरकार के

0: गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा करेगी। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश तथा कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ. जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया।
1: भारत के त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ परंपरागत रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं और ये संबंध साझा इतिहास, उपनिवेश के खिलाफ हमारे संघर्ष और क्रिकेट के हमारे विशेष रिश्तों पर आधारित हैं। दोनों देशों के लोग पहनावे और खेलकूद से लेकर खानपान की आदतों और परंपराओं तक कई मामलों में एक दूसरे से समानता रखते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। यात्रा के दौरान पर्यटन, विदेश और कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के भवन का सौर ऊर्जा से संचालन, विभिन्न परियोजनाओं और आयुर्वेद केंद्र की स्थापना सहित कई समझौतों पर सहमति बनी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक मामलों, चेक बाउंस और बैंक वसूली विवादों सहित कई प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाती है।
2: आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में एक ही समय पे किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ कम किया जाए तथा जो मामले, जो विवाद न्यायालय में और प्री लिटिगेशन स्टेज पे लंबित हैं, उनको समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाए।
0: श्री पांडे ने बताया कि वर्ष 2023 से 2025 के बीच 12 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन कर 26 करोड़ मामलों का निपटारा किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं और जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 21,500 करोड़ रुपए और पीएम सुरक्षा योजना के अंतर्गत लगभग 3,660 करोड़ रुपए के दावों का निपटारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडेबेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र के रूप में बदल दिया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व के आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। हुरमुज जल डमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और चार अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। दूतावास हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। पाकिस्तान मानवाधिकार परिषद ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में हाल में की गई वृद्धि की कड़ी निंदा करते हुए इसे जनता पर सीधा हमला बताया है। मानवाधिकार संस्था ने सरकार से मूल्य वृद्धि तुरंत वापस लेने और जनता को राहत प्रदान करने का आग्रह किया। परिषद ने परिवहन किराए और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में मनमानी वृद्धि पर रोक लगाने की भी मांग की। हिंद महासागर संवाद 10 कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। दो दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। आकाशवाणी की स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पंजाब के जालंधर और पटियाला स्टेशन पर आज वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। एक रिपोर्ट।
4: पंजाब में आकाशवाणी ने हरित क्रांति के दौरान एक अहम भूमिका निभाई है और आज भी कृषि पर विशेष रूप से तैयार किए गए कार्यक्रम के जरिए किसानों को जानकारियां उपलब्ध करवा रहा है। आज के वॉकथॉन के दौरान आकाशवाणी के श्रोताओं, पूर्व कर्मचारियों और अन्य लोगों ने FM स्टूडियो में एंकर्स द्वारा बजाए जा रहे बेहतरीन गानों के बीच सीधे प्रसारण के जरिए अपने अनुभव साझा किए। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने आदर्शों पर खरा उतरते हुए यह राष्ट्रीय प्रसारक विभिन्न कार्यक्रमों और समाचार बुलेटिन के माध्यम से जानकारी, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करते हुए बीते 9 दशकों से देश की सेवा में तत्पर है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: आकाशवाणी शिलांग में भी मैराथन का आयोजन किया गया। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात 5वें नंबर पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। TVK को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में IPL क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: प्रस्तुत है कृषि FM 100.7 MHz पर। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम तराने नए पुराने। लीजिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं किशोर कुमार की आवाज के साथ। ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला

मुकद्दर का सिकंदर, इस फिल्म में श्रोता भी सुन रहे थे किशोर कुमार को। आइए सुनते हैं अनुराधा पोडवाल और मोहम्मद अजीज को।

बीवी हो तो ऐसी। श्रोता इस फिल्म में सुन रहे थे अनुराधा पोडवाल और मोहम्मद अजीज को। आइए एक बार फिर से सुनते हैं अनुराधा पोडवाल की आवाज, साथ में है कुमार सानू, फिल्म का नाम सड़क।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू। क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।
1: श्रोता इस वक्त FM चूरू से सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम तराने नए पुराने।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों के साथ ही आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम तराने नए पुराने यहीं संपन्न होता है। FM 100.7 MHz पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 3 बज चुके हैं। इसी के साथ हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा यहीं संपन्न होती है। सायंकालीन सभा में शाम 5 बजे आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

FM 100.7 MHz पर ये आकाशवाणी का चुरू केंद्र है। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। अब आज की हमारी सायंकालीन प्रसारण सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में आइए सुने हमारे युवा दोस्तों का अपना कार्यक्रम युववाणी।

जी दोस्तों, 100.7 FM पर वक्त हो चला है आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम युववाणी का। आज का युववाणी कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपका रेडियो दोस्त हरीश मोहन। युववाणी सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।

जी दोस्तों, इस प्यारे से गाने के साथ शुरू युवाणी कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आज है शनिवार और शनिवार के दिन जो है युवाणी में खास और स्पेशल सेगमेंट आप सभी श्रोता साथियों के लिए रहता है, वह रहता है युवा पसंद, जिसके अंदर आप अपनी पसंद के फरमाइशी गीत है वो हमें ईमेल के माध्यम से लिख भेजते हैं और वही जो गाने जो आपने पसंद किए हैं वो स्टूडियो के माध्यम से हम आप सभी को सुनवाते हैं। तो दोस्तों, अभी ये जो गाना आप अपने रेडियो सेट पर सुन रहे थे शान और कैलाश खेर की प्यारी सी आवाज़ में, ये गाना फिल्म फना से लिया गया है और इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है वर्षा सैनी ने, जो कि हमें लिखती हैं झुंझुनू से। और इसी गीत की फरमाइश हमें मिली है रजाक मोहम्मद की ओर से, समीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान और जिशान खान की ओर से। ये हमें लिखते हैं हनुमानगढ़ टाउन से, मोहल्ला रूपनगर। आप सभी श्रोता साथियों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप यूं ही अपना प्यार बनाए रखें 100.7 FM के लिए और भेजते रहिए अपने पसंद की फरमाइशी नगमे। और ये जो गाने हैं, जो फरमाइशी गीत है जो हम आपको सुना पाते हैं, ये आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस रहता है youthexpresschuru@gmail.com।

जी दोस्तों, ये प्यारा सा गाना आप अपने रेडियो सेट पर सुन पा रहे हैं अनुराधा पोडवाल और मंगल सिंह की प्यारी सी आवाज़ में। और इस गीत को जो है बाहर आने तक फिल्म से लिया गया है। इस गीत है इसकी फरमाइश हमें लिख भेजी है संदीप सिंह सोनगरा, प्राची सोनगरा, सोमल सोनगरा, कार्तिक सोनगरा ने। ये हमें लिखते हैं फंवारा चौक वार्ड नंबर 6 सिरसिला जिला चुरू राजस्थान से। इसी गीत के लिए हमें फरमाइश मिली है ददरेवा से भी। लिखने वाले हमारे श्रोता साथी हैं गंगा, शिंपा, उषा, अवनी और अक्षय। मेलू सर बिकान से हमें लिखते हैं अंबिका भाटी और लकी। इसी गीत की फरमाइश हमें रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर से भी मिली है। लिखने वाले हमारे

नियमित श्रोता साथी हैं लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। आप सभी श्रोता साथियों का कार्यक्रम में ईमेल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप यूं ही हमारे साथ बने रहिए ओनली ऑन 100।

जी दोस्तों, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी साहब की प्यारी सी आवाज़ों में अभी ये गीत आप अपने रेडियो सेट पर सुन पा रहे थे। इस गीत को कारवां फिल्म से लिया गया है। इस गीत की फरमाइश हमें भोपालगढ़ राजस्थान से मिली है। लिखने वाले हमारे श्रोता साथी हैं धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा और पूजा परिहार। इसी गीत की फरमाइश हमें वडिंग खेड़ा से भी मिली है। लिखने वाले श्रोता साथी हैं मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। जी दोस्तों, आप भी ऐसे ही प्यारे प्यारे गीत अगर सुनना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस रहता है youthexpresschuru@gmail.com।

0: राजस्थान पब्लिक स्कूल बिसाऊ।
1: नए सत्र में पहले 100 प्रवेश पर फीस में 25% की छूट।
0: कृषि विज्ञान कॉमर्स व कला सभी विषय उपलब्ध।
1: बेटियों के लिए विशेष छात्रवृत्ति।
0: अनुभवी साफ सुरक्षित वाहन सुविधा और शानदार परिणाम।
1: हजारों छात्र आज सरकारी सेवाओं में हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में।
0: राजस्थान पब्लिक स्कूल बिसाऊ 9413360 97।
2: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू।
3: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: जी दोस्तों, विज्ञापन से पहले आप मुकेश की प्यारी सी आवाज़ में फिल्म अनाड़ी का जो गीत है वो सुन पा

रहे थे। और ये जो गीत है ये हमें लिख भेजा है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से, लिखने वाले श्रोता साथी हैं महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। और इसी गीत की फरमाइश हमें मिली है जलालाबाद वेस्ट से भी, लिखने वाले श्रोता साथी हैं सुरेश गजनेजा, पूनम गजनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा। दोस्तों हमारे साथ बने रहिए ओनली ऑन 100.7 FM पर और आनंद लेते रहिए इन प्यारे प्यारे नगमों का।

भेजा है दादरी गेट भिवानी से लिखने वाले श्रोता साथी हैं कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा। छत्तीसगढ़ रायपुर से भी इसी गीत के लिए फरमाइश हमें मिली है। लिखने वाले श्रोता साथी हैं नरेंद्र कुमार जाटव, संदीप जाटव, टुकटुक जाटव। आप सभी श्रोता साथियों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपको लिए चलते हैं अगले फरमाइशी गीत की ओर।

जी दोस्तों, उस दौर का बहुत ही बेहतरीन गीत जो है वो अभी आप लोगों ने सुना, लता मंगेशकर और मोहम्मद साहब की प्यारी सी आवाज़ में। इस गीत को इज्जत फिल्म से लिया गया है और ये जो गीत है ये बहुत ही प्यारा गीत है और इसको हमें लिख भेजा है सादुल शहर जिला श्री गंगानगर से लिखने वाले हमारे श्रोता साथी हैं राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़। अपने ईमेल में राम कुमार रेवाड़ लिखते हैं कि आज महान गायक तलत महबूब साहब की पुण्यतिथि भी है। 9 मई 1998 को तलत महबूब साहब जो है वो दुनिया से विदा हो गए, लेकिन उनके गाए हुए जो गीत है वो हमारे लिए आज भी अमर हैं और बहुत ही बेहतरीन जो गायन है उनका था। तो ऐसे महान गायक को पूरा आकाशवाणी परिवार है वो सादर नमन करता है। और ये दोस्तों जी, ये जो गाना अभी आप लोगों ने सुना, इसी गाने की फरमाइश हमें जैन मंदिर वाली गली

कुरवाली से भी मिली है। लिखने वाले श्रोता साथी हैं राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन आसरा अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी। आप सभी श्रोता साथियों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही।

0: ही निवेश आपके ब्रांड की सही पहचान, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे
2: सो इजी।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: जी दोस्तों, विज्ञापन से पहले जो है हम गीत सुन पा रहे थे, वो हमने साजन फिल्म से सुना, SP बाला सुब्रमण्यम और अलका याग्निक की खूबसूरत आवाज़ में। जी दोस्तों, ये जो गीत है वो हमें लिख भेजा है रिंगिनी छत्तीसगढ़ से। लिखने वाले श्रोता साथी हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। इसी गीत की फरमाइश हमें मिली है सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र से भी। लिखने वाले श्रोता साथी हैं दीपक ढिंगरा, अनुश्री ढिंगरा, प्रमीला और देवश्री ढिंगरा। सहारनपुर से हमें लिखते हैं सुरेश डोम और आशु डोम। ये आप सभी श्रोता साथियों का कार्यक्रम में ईमेल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, आपकी जो ईमेल्स जो हैं, जो कि आप हमें लिखकर भेजते हैं, उन्हीं से जो है कार्यक्रम बेहतरीन बन पाता है। तो आपका ये प्यार और ये जो स्नेह है आकाशवाणी चूरू परिवार के लिए है, इसको हमेशा बनाए रखें और आप हमें नियमित रूप से ईमेल करते रहें। हमारा ईमेल एड्रेस रहता है youthexpresschuru@

जी दोस्तों, लम्हे फिल्म से ये गीत अभी आप अपने रेडियो सेट पर सुन पा रहे थे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की प्यारी सी आवाज़ इस गीत में थी और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से। लिखने वाले श्रोता साथी हैं हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा। इसी गीत की फरमाइश हमें उमर खेड से भी मिली है। लिखने वाले श्रोता साथी हैं फराह खान, आशिया खान और सरोज खान। जालंधर से हमें ईमेल मिला है संदीप जाटव, आशु और सुरेश जाटव की ओर से। वीरगाम राजकोट से हमें लिखते हैं रुचि गुप्ता, पिंकल और उमा गुप्ता। सहारनपुर से हमें ईमेल मिला है एस के डुकर और इनके पूरे परिवार की ओर से। सभी श्रोता साथियों का कार्यक्रम में गीत भेजने के लिए और अपनी पसंद के फरमाइशी गीत सुनने के लिए

जी दोस्तों, कार्यक्रम चल रहा है युवाणी और हमारा आज का खास और स्पेशल सेगमेंट आप सभी श्रोता साथियों के लिए है, वह है युवा पसंद, जिसके अंदर आपके भेजे हुए फरमाइशी गीत है वो हम आपको सुनवा पा रहे हैं। और अभी लता मंगेशकर की प्यारी सी आवाज़ में आपने जो गीत सुना वो फिल्म हिना से लिया गया है। इस गीत की फरमाइश जो है वो हमें कौशल्या जोशी की ओर से मिली है। ये हमें चंद्रनगर कॉलोनी से लिखते हैं। इसी गीत की फरमाइश में शामिल हैं प्रमिला जानी, सोनाली जोशी, ये हमें सहारनपुर से लिखते हैं। इसी गीत की फरमाइश जिला मुरादाबाद से भी मिली है, ग्राम दुलापुर उत्तर प्रदेश से। मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सुरेश, सोनू, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी और मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह की ओर से भी जो है इसी गीत की फरमाइश हमें मिली है। गांव कलाना, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान से हमें ईमेल मिला है विक्रम कड़वासरा, सचिन कड़वासरा, सतीश, योगेश और युधव कड़वासरा की ओर से। आप सभी श्रोता साथियों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

जी दोस्तों, रोटी फिल्म का ये जो गीत है किशोर कुमार की प्यारी सी आवाज़ में अभी आप सुन पा रहे थे। इस गीत की फरमाइश हमें मिली है हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से, और इस गीत को हमें लिख भेजा है सुल्तान सिंह तरार, कृष्ण मुकेश, रामचंद्र तरार, कपिल देव और हिमानी जाखड़ ने। संबलपुर कांकेर से हमें लिखते हैं फागूराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। गांव नथाना पंजाब से हमें इसी गीत के लिए ईमेल मिला है। लिखने वाले श्रोता साथी हैं हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता।

जी दोस्तों, जिगर वाला फिल्म से ये गीत अभी आप सुन पा रहे थे। आशा भोसले सबीर कुमार की प्यारी सी आवाज़ में इस गीत की फरमाइश हमें मिली है गांव फरासी जिला हिसार से। लिखने वाले श्रोता साथी हैं राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी। जिला पटियाला पंजाब से हमें ईमेल मिला है सोमदत्त, कैरव रानी, ज्योति, गुरमीत कौर और मनु का, और इन्होंने भी इसी गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से भी जो है इसी गीत की फरमाइश हमें मिली है। पद्मा टाकेश नेपानगर मध्य प्रदेश से हमें ईमेल मिला है सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल, नीति शाह, शुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी का। आप सभी श्रोता साथियों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हमारा ईमेल एड्रेस रहता है youthexpresschuru@gmail.com। और जितने भी नए श्रोता साथी हमसे जुड़े हैं उनके लिए भी बता दूं कि आप भी अगर अपनी पसंद का फरमाइशी गीत जो है अपने नाम और शहर के साथ सुनना चाहते हैं तो आपको हमें ईमेल करना होगा। हमारे स्टूडियो की ऑफिशियल ईमेल आईडी है youthexpresschuru@gmail.com। इस मेल आईडी पर जो है अगले आने वाले शनिवार से पहले पहले आप हमें ईमेल कर सकते हैं। वक्त रहेगा दोपहर 2 से शाम 4 बजे तक का। इसके अंदर अंतराल के अंदर ही जो है आप हमें ईमेल करें, उन्हीं ईमेल को हम जो है अगले शनिवार को शामिल कर पाएंगे। दोस्तों, प्रोग्राम से जाने की फिलहाल इजाजत दीजिए। आपके आरजे दोस्त हरीश मोहन को नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है, FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस समय शाम के 5:55 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण में आज की सायंकालीन सभा के शेष रहे कार्यक्रम और उनकी संक्षिप्त जानकारी।

श्रोता शाम 6 बजे सुनेंगे हिंदी में समाचार, अंग्रेजी में समाचार होंगे शाम 6:05 पर। 6:20 पर सुनिए संस्कृत में समाचार। ये समाचार बुलेटिन हम आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से रिले करेंगे।

शाम 6:30 का समय रहेगा हिंदी में प्रादेशिक समाचारों का। 6:40 पर आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी का प्रसारण और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार श्रोता सुनेंगे शाम 6:45 पर। ये समाचार प्रसारण आकाशवाणी केंद्र जयपुर अजमेर से रिले किए जाएंगे।

शाम 7 बजे सुनिए कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे चर्चाएं, लोकगीत एवं लोक भजन। राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम प्रसारित होगा शाम 7:30 पर।

ये समाचार अंक आप दिल्ली केंद्र से सुनेंगे। रात्रि 9:15 पर सुनिए राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम संस्कृति भारती का प्रसारण होगा रात्रि 9:30 पर। श्रोता सुनेंगे रात्रि 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। हिंदी में समाचार होंगे रात्रि 11 बजे। अंग्रेजी में समाचार श्रोता सुनेंगे रात्रि 11:05 पर। ये सभी कार्यक्रम हम आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से प्रसारित करेंगे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण में आज की सायंकालीन सभा के शेष रहे कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय के बारे में। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। श्रोताओं शाम के 6 बजने वाले हैं। अब आप दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी में और 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत कर दिया है। कोलकाता की ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशीत प्रामाणिक ने मंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
1: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
0: आज गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पोचिशे बोईशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। त्रिपुरा में भी गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती सांस्कृतिक उत्साह के साथ मनाई गई। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं कर पाने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एम ए बेबी ने कहा कि राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रही है। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तेलंगाना में लगभग 1,535 करोड़ रुपए की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री

0: कार्यक्रम के आखिर में आप सुन रहे थे क्रांति फिल्म का गीत, आवाज महेंद्र कपूर की थी। गीतकार संतोष आनंद, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारीलाल। श्रोताओं, देशभक्ति गीत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है, एफएम बैंड के 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:20 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से रिले संस्कृत में समाचार।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगालस्य प्रथमः भाजपा मुख्यमंत्री संजातः। तेन सह पञ्चान्यैः मन्त्रिभिः अपि पदगोपनीयतायाः शपथं गृहीतम्। तमिलनाडु राज्ये नूतन सर्वकार रचनायै टीवीके दलेन प्रमाणितं यत् तेषां पार्श्वे 20+ विधायकानां समर्थनं वर्तते। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरणेन अशेषे हि देशे विवादानां सौहार्दपूर्णरीत्या निस्तारणार्थं राष्ट्रीय लोक न्यायालयस्य आयोजनं विहितम्। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकरः द्विपक्षीय सहयोगं सुदृढीकर्तुं त्रिनिदाद एंड टोबेगो देशस्य प्रधानमंत्रिणा सह मेलनं साधितवान्। अपि च क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां अद्य जयपुर नगरे राजस्थान रॉयल्स दलं गुजरात टाइटन्स दलेन सह क्रीडिष्यति। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगालस्य नूतन मुख्यमंत्रित्वेन शपथं गृहीतवान्। इत्थं पश्चिम बंगाल राज्ये प्रथमं तावत् भाजपा दलस्य प्रशासनं संघटितं जातम्। अवधेयं यत् भाजपा दलं विधानसभा निर्वाचनेषु ऐतिहासिकं जयं समर्ज्य तृणमूल कांग्रेस दलस्य 15-वर्षात्मकस्य शासनस्य अन्तं कृतवत्। कोलकाता नगरस्य ब्रिगेड परेड ग्राउंड इति स्थले राज्यपालः आर एन रविः श्री शुभेंदु अधिकारिणं पदगोपनीयतायै प्रतिश्रावितवान्। तेन सह पञ्चान्यैः मन्त्रिभिः अपि पदगोपनीयतायाः शपथं गृहीतम्।
2: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
1: तमिलनाडु राज्ये नूतन सर्वकार रचनायै टीवीके दलेन प्रमाणितं यत् तेषां पार्श्वे 20+ विधायकानां समर्थनं वर्तते। 34-200 सदस्यानां विधानसभायां बहुमताय 18-100 विधायकाः आवश्यकाः आसन्। चेन्नई नगरे वार्ताहरैः सह भाषमाणः टीवीके दलस्य नेता अधव अर्जुनः अवदत् यत् वीसीके तथैव इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग इत्युभाभ्यां दलाभ्यां तस्मै पक्षाश्रयं विना समर्थनं प्रदत्तम्। अधुना निर्वाचने 88% आसनानि जित्वा टीवीके सर्वबृहत्तम दलत्वेन उद्भूतम्। यद्यपि दलनेता सी जी सेफ विजयः द्वयोः क्षेत्रयोः विजयी जातः, अतः तेन एकं स्थानं परित्यक्तं भविष्यति, येन दलस्य संख्या 70% भविष्यति। तथापि कांग्रेस दलस्य 5 सीपीआई, सीपीआईएम, वीसीके तथा आईयूएमएल इत्येतेषां प्रत्येकं 2 विधायकौ च मिलित्वा

0: सहायकदलानां कुलसंख्या त्रयोदश वर्तते, येन बहुमतस्य मार्गः प्रशस्तो जातः। राष्ट्रिय विधिक सेवा प्राधिकरणम् अद्य सम्पूर्ण देशे ऐषमः द्वितीय राष्ट्रिय लोक न्यायालयस्य आयोजनं विदधाति। प्राधिकरणस्य सदस्य सचिवः संजीव पाण्डेयः आकाशवाणीं विज्ञापयत् यत् लोक न्यायालये सहमतेः योग्येषु आपराधिक प्रकरणेषु वादश्रवणं विधीयते। अस्य आयोजनस्य उद्देश्यं न्यायालयेषु लंबित प्रकरणानां सहमत्यानुसारं निस्तारणम् इति वर्तते। श्रीपाण्डेयः अवोचत् यत् 23-2000 25-2000 यावत् द्वादश राष्ट्रिय लोक न्यायालयानां आयोजनं विधाय 26 कोटि प्रकरणानां समाधानम् अभवत्।
1: आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में एक ही समय पे किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ कम किया जाए तथा जो मामले जो विवाद न्यायालय में और प्री लिटिगेशन स्टेज पे लंबित हैं उनको समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाए।
0: संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। विदेशमन्त्री सुब्रह्मण्यम् जयशंकरः भारत त्रिनिदाद टोबेगो देशानां मिथः पारंपरिक सम्बन्धानां प्रशंसाम् अकरोत्। त्रिनिदाद टोबेगो इत्यस्य विदेश तथा कैरिकॉम प्रकरणानां मंत्रालयस्य समारोहे डॉक्टर जयशंकरेण द्वयोः देशयोः प्रगाढ़ सांस्कृतिक संबंधानां अथ ऐतिहासिकतायाः उल्लेखं कृतम्। भारतस्य त्रिनिदाद टोबेगो अमुना सह परंपरागत रूपेण मैत्रीपूर्णाः संबंधाः वर्तन्ते। उभयोः देशयोः जनाः वेशभूषां क्रीडां आहार व्यवहारं च समेत्य परंपराः यावत् नैकेषु विषयेषु साम्यं संदधते। डॉक्टर जयशंकरेण प्रधानमन्त्रिणा कमला प्रसाद विशेषवर्येण सह मेलनं विधाय द्विपक्षीय सहयोगं इतोपि सुदृढीकर्तुं चर्चा कृता। यात्रावधौ पर्यटनं विदेश कैरिकॉम मंत्रालय भवनस्य सौरोर्जा संचालनं विविध परियोजनाः अथ च आयुर्वेद केन्द्रस्य स्थापनां समेत्य नैकेषु विषयेषु सहमतिः जाता। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी श्वः कर्णाटकस्य बेंगलुरुनगरे आर्ट ऑफ लिविंग इत्येतस्य संस्थानस्य 45वीं वर्षपूर्तिम् उपलक्ष्य आयोजयिष्यमाणे समारोहे सहभागितां करिष्यति। श्रीमोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर इत्यत्र नवनिर्मितं ध्यानमन्दिरमपि उद्घाटयिष्यति। ततः परं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी हैदराबाद नगरे प्रायः 9,500 कोटितोप्यधिकरूप्यकाणां अनेकासां विकास परियोजनानां शिलान्यासं लोकार्पणं च करिष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तत्र हैदराबाद पणजी आर्थिक वीथिकायां राष्ट्रिय राजमार्गस्य चतुः भागपरस्य निर्माणस्य आधारशिलामपि स्थापयिष्यति। तत्रैव प्रधानमन्त्री वारंगल स्थले पीएम मित्रा पार्क इत्येतस्य उद्यानस्य उद्घाटनं करिष्यति। सममेव श्रीमोदी हैदराबाद अत्याधुनिकं कर्करोगपरं चिकित्सालयमपि लोकार्पयिष्यति। अद्य गुरुदेवस्य रवीन्द्रनाथ ठाकुरस्य 65वीं जयन्ती वर्तते। दिनमिदम् उपलक्ष्य शान्तिनिकेतनं विश्वभारती विश्वविद्यालयं अथ बांग्लादेशं समेत्य जगतः अनेकेषु स्थलेषु सांस्कृतिक कार्यक्रमाः समायोजिताः। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन वर्यः, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्री अमितशाहः अथ रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः पोचिशे बोईशाख इत्येतस्य अवसरे गुरुदेवाय श्रद्धांजलिं समर्पितवन्तः। भारतीय रिजर्व बैंक इत्यनेन नियामक निर्देशानां तथा च केवाईसी मानकानां उल्लंघनमुद्दिश्य हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस सहैव यस बैंक इत्यनयोः उपरि मौद्रिक दण्डः आरोपितः। पृथक् पृथक् वक्तव्येषु भारतीय रिजर्व बैंकेन सूचितं यत् तेन हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस इत्यस्योपरि एक

0: 5.80 लक्ष रूप्यकाणां दण्डः प्रस्थापितः। अपरत्र यस बैंक इत्यस्योपरि 31.80 लक्ष रूप्यकाणां दण्डः आरोपितः। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन आगामी 5 दिवसेषु केरलम राज्यस्य विविध जनपदेषु विद्युत्पातेन प्रचंड वायुना च सह अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं प्रकटितम्। विभागेन अद्य राज्यस्य 9 जनपदेषु पीतवर्णीया संचेतना अपि प्रसारिता। श्वः अपि संचेतना तावत् 7 जनपदेषु यथावस्थं कार्यान्विता भविष्यति। प्रतिकूल वातावरणस्य कारणात् मत्स्याजीविभ्यः अद्य केरल लक्षद्वीप तटेषु गमन परिहारार्थं परामर्शः प्रदत्तः। यद्यपि कर्नाटक तटेषु मत्स्यग्रहणार्थं तादृशः कश्चन प्रतिबन्धः एतावता नैव उपस्थापितः। आईपीएल क्रिकेट स्पर्धा मालिकायाम् अद्य राजस्थान रॉयल्स दलं गुजरात टाइटन्स दलेन सह क्रीडिष्यति। भारतीय समयानुसारेण इयं स्पर्धा तावत् सायं 7:30 वादने जयपुर नगरे आरप्स्यते। अवधेयं यत् अंकतालिकायां राजस्थान दलं चतुर्थे, गुजरात दलं च 5मे स्थाने स्तः। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: मुख्य समाचार प्रदेश भर में आज लगाई गई राष्ट्रीय लोक अदालतों में आपसी राजीनामे से बड़ी संख्या में मामलों का निस्तारण किया गया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने कहा आधुनिक तकनीक और प्रौद्योगिकी का उपयोग मानवीय मूल्यों और न्याय के अधीन होना चाहिए राज्य सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों में उपचार प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर तेज गर्मी का असर अगले कुछ दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से प्रदेश भर में आज राष्ट्रीय लोक अदालतें लगाई गईं जिनमें बड़ी संख्या में मामलों का आपसी सहमति से निस्तारण किया गया राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने उच्च न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का विधिवत शुभारंभ किया इस मौके पर मीडिया से बातचीत में श्री शर्मा ने बताया कि लोक अदालतों में आपसी समझौतों के माध्यम से मामलों का निस्तारण किया जाता है उन्होंने कहा कि इससे अदालतों का समय भी बचता है और पक्षकारों को त्वरित न्याय भी मिलता है
1: जो एक्चुअल केसेस में जिसमें कि लीगल पॉइंट्स होते हैं वो तो कोर्ट में रिजॉल्व होते ही होते हैं पर आउट ऑफ द कोर्ट जिनको कि आपसी समझाइश के तौर पे विवाद निस्तारण किया जा सकता है उनको हम इन लोक अदालत में लेके आते हैं जैसे कि हमारे पास MACT के केसेस होते हैं इंश्योरेंस के मैटर्स होते हैं फैमिली कोर्ट के डिस्प्यूट्स होते हैं इवन रेवेन्यू के केसेस भाई भाइयों के बीच में जो केसेस होते हैं कुछ ऐसे केसेस जैसे पेंशन के मैटर्स होते हैं इन सब के केसेस की रिजोल्यूशन लोक अदालत के माध्यम से की जाती है
0: राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की विशिष्ट सचिव रश्मि नवल ने आकाशवाणी को बताया कि इस लोक अदालत में 7.5 लाख से अधिक प्रकरण रेफर किए गए
2: माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में तो 3 का गठन किया गया राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बेंच में 3 बेंचेस का गठन किया गया और समस्त DLSAs राजस्थान में 476 बेंचेस का गठन किया गया मतलब कुल मिलाकर 482 बेंचेस का कॉन्स्टिट्यूशन किया गया इस संपूर्ण लोक अदालत के लिए पूरे राजस्थान में और लगभग 7 लाख से अधिक प्रकरणों को रेफर किया गया है पूरे राजस्थान में इस लोक अदालत के लिए
0: केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि नई न्याय संहिता का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को दंड देना नहीं बल्कि न्याय सुनिश्चित करना है उन्होंने आज जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में लोक अभियोजकों की राज्य स्तरीय कार्यशाला में शिरकत की पत्रकारों से बातचीत में श्री मेघवाल ने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोक अभियोजकों से नए कानून पर विस्तार से चर्चा की गई और नई प्रणाली को लागू करने में आ रही व्यवहारिक समस्याओं पर मंथन किया गया
3: न्यू क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो चेंजेज आया IPC की जगह भारतीय न्याय संहिता आई CRPC की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आई इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया उसके बाद टेक्नोलॉजिकल चेंज हुआ ई प्लेटफॉर्म बने साइबर क्राइम जो बढ़ रहा है उसको हम कैसे कंट्रोल करें उसमें PP और APP की क्या भूमिका हो इसलिए आपने देखा होगा निश्चित रूप से मैं मानता हूं इस वर्कशॉप से अमृत निकलेगा
0: कार्यशाला में राज्य के विधि मंत्री जोगाराम पटेल भी मौजूद रहे उन्होंने लोक अभियोजकों की समस्याओं को सुना और उनके प्रभावी समाधान पर चिंतन किया गया इस एक दिवसीय कार्यशाला में साइबर अपराध दिव्यांगजन मामलों और नई आपराधिक विधियों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर विशेष तकनीकी सत्र आयोजित किए गए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने कहा है कि आधुनिक तकनीक और प्रौद्योगिकी का उपयोग हमेशा मानवीय मूल्यों और न्याय के अधीन होना चाहिए वे आज जयपुर में विकसित भारत 2047 के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सामाजिक न्याय विषय पर 2 दिन के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे श्री मसीह ने कहा कि बदलते समय के साथ आधुनिक तकनीक का उपयोग भी जरूरी है लेकिन उसका विवेकपूर्ण प्रयोग करना चाहिए उन्होंने तकनीक के उपयोग में न्याय के हितों का उल्लंघन नहीं करने की बात कही डॉ. भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी और सुबोध लॉ कॉलेज की ओर से आयोजित इस सम्मेलन में देश भर के शिक्षाविदों न्यायविदों और शोधार्थियों ने भाग लिया कार्यक्रम के दौरान अनुसंधान कार्यों को लेकर एक एमओयू भी किया गया सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्रीलंका के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मोहन पीरिस ने न्याय व्यवस्था में तकनीक की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए हैं राज्यपाल आर एन रवि ने आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी शिरकत की उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता का ये ऐतिहासिक जनादेश विकास सुशासन राष्ट्रहित और जनविश्वास की सशक्त अभिव्यक्ति है ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur YouTube चैनल राजस्थान AIR News और Facebook AIR News राजस्थान पर भी सुन सकते हैं प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में अब उपचार प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाएगी चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने आज जयपुर में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में इस संबंध में निर्देश दिए उन्होंने कहा कि इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर और आईसीयू जैसे संवेदनशील स्थानों पर लापरवाही बरतने पर संस्थान प्रभारी और यूनिट हेड सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे श्रीमती राठौड़ ने बताया कि अस्पतालों में संक्रमण को रोकने के लिए नियमित रूप से स्टरिलाइजेशन किया जाएगा उन्होंने सीनियर डॉक्टरों को ड्यूटी के दौरान अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने और दवाओं के भंडारण के मानकों का पालन करने को कहा कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हाल ही में सिजेरियन ऑपरेशन के बाद प्रसूताओं की मौत और तबीयत बिगड़ने के प्रकरण में राज्य सरकार ने एक चिकित्सक सहित दो नर्सिंग कर्मियों को निलंबित कर दिया है साथ ही यूटीबी पर कार्यरत एक चिकित्सक को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है दो अन्य चिकित्सकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है उधर कांग्रेस पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज कोटा पहुंचकर अस्पताल का दौरा किया इस दल का नेतृत्व कर रहे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री परसादीलाल मीणा ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि ऑपरेशन थिएटर और लेबर रूम की स्थिति खराब होने के बावजूद भी वहां सर्जरी की गई जिसके कारण मरीजों में संक्रमण फैला श्री मीणा ने जिम्मेदार उच्च अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग की वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती आज प्रदेश भर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया के जरिए उन्हें नमन करते हुए कहा कि महाराणा प्रताप का त्याग और स्वाभिमान युगों तक प्रेरणा देता रहेगा भरतपुर में इस अवसर पर शौर्य यात्रा निकाली गई शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी

0: यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। बाद में आयोजित संगोष्ठी में वक्ताओं ने महाराणा प्रताप के अदम्य साहस और राष्ट्रभक्ति पर प्रकाश डाला। वहीं पाली जिले के जवाली में रैली निकाली गई और रक्तदान शिविर लगाया गया। और अब मौसम। प्रदेश के पश्चिमी जिले भीषण लू की चपेट में हैं, वहीं दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में आंधी बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई हैं। आज जैसलमेर, बाड़मेर और फलोदी में दिन का पारा 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा गया। कुछ अन्य पश्चिमी जिले भी प्रचंड गर्मी की चपेट में रहे। दिन के साथ साथ पश्चिमी जिलों में रात का पारा भी सामान्य से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। बीती रात फलोदी में न्यूनतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा जोधपुर में पारा 30 डिग्री सेल्सियस मापा गया। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आने वाले दिनों में तापमान के और बढ़ने के आसार हैं।
1: फिलहाल पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज हो रहे हैं। आगामी 2-3 दिनों में और 1-2 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी होने और पश्चिमी राजस्थान में अगले 4-5 दिन हीट वेव का दौर दर्ज होने की प्रबल संभावना है। वहीं पूर्वी राजस्थान के भी ज्यादातर इलाकों में अगले 2-4 दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इसके अलावा केवल उत्तर पूर्वी और उत्तरी राजस्थान में 11, 12 और 13 मई को मेघ गर्जन और कहीं कहीं आंधी चलने की संभावना है। इसके साथ में राज्य के अधिकांश भागों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है।
0: प्रदेश में जनगणना 2027 की तैयारियों के तहत कार्मिकों के प्रशिक्षण का दौर जारी है। इसी कड़ी में डूंगरपुर के जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान में प्रगणकों और पर्यवेक्षकों के तीसरे बैच का 3 दिन का प्रशिक्षण आज संपन्न हुआ। तहसीलदार उज्जवल जैन ने बताया कि ये डिजिटल जनगणना 2 चरणों में पूरी होगी। पहले चरण में 16 मई से 14 जून तक मकानों के सूचीकरण का काम किया जाएगा, जबकि मुख्य जनगणना अगले साल फरवरी में होगी। प्रशिक्षण में मोबाइल ऐप के उपयोग, लेआउट मैप बनाने और स्वगणना की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान प्रगणकों को फील्ड में मोबाइल के जरिए डेटा दर्ज करने का व्यवहारिक अभ्यास भी कराया गया। जयपुर पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल ने पुलिस अधिकारियों को अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और पीड़ितों को तुरंत न्याय दिलाने के निर्देश दिए हैं। वे आज जयपुर में शहर की कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण की समीक्षा कर रहे थे। श्री मित्तल ने विशेष रूप से महिला और बाल अपराधों सहित SC/ST से जुड़े मामलों में जल्द अनुसंधान और प्रभावी कार्रवाई पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस की प्राथमिकता अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास पैदा करना होना चाहिए। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आज भूगोल विषय की प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा 2026 शांतिपूर्वक संपन्न हुई। प्रदेश के 38 जिलों में आयोजित इस परीक्षा में कुल 76.43% अभ्यर्थी उपस्थित हुए। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार परीक्षा के लिए कुल 3,95,000 से ज्यादा अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इनमें से 3,02,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश भर में आज लगाई गई राष्ट्रीय लोक अदालतों में आपसी राजीनामे से बड़ी संख्या में मामलों का निस्तारण किया गया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने कहा, आधुनिक तकनीक और प्रौद्योगिकी का उपयोग मानवीय मूल्यों और न्याय के अधीन होना चाहिए। राज्य सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों में उपचार प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और प्रदेश के ज्यादातर स्थानों पर तेज गर्मी का असर, अगले कुछ दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप जितेंद्र सिंह पूनिया से अजमेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख नीलिमा दाधीच ने तैयार किया है। सृष्टि रचियता जगत पिता ब्रह्मा की पवित्र नगरी और अपनी जायकेदार कढ़ी कचौरी के नाश्ते के लिए प्रसिद्ध अजमेर जिले की चिट्ठी में हम आपको हालिया खबरों, ताजा घटनाक्रम और जिले की मुख्य गतिविधियों के बारे में बताएंगे। चिट्ठी की शुरुआत SI भर्ती परीक्षा 2021 की बात के साथ। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने ये भर्ती परीक्षा रद्द कर दी है। ये भर्ती परीक्षा इस साल दोबारा से सितंबर महीने में

0: संभावित है। आयोग के अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू ने बताया कि अब केवल वही 3,83,000 अभ्यर्थी दोबारा परीक्षा दे सकेंगे जो पहले दोनों पेपर में शामिल हुए थे। नए आवेदकों को इसमें अवसर नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को उनके द्वारा पूर्व में भरे गए आवेदन पत्रों में आवश्यक सुधार और अपडेट करने का मौका दिया जा रहा है। संशोधन की यह प्रक्रिया 16 मई से 30 मई तक चलेगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे ताज़ा जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट और रिक्रूटमेंट पोर्टल देखते रहें। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2026 का आयोजन किया जा रहा है। जिले में इस परीक्षा के लिए 32 केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर 8,900 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। बोर्ड ने पारदर्शी और सुचारू तरीके से परीक्षा करवाने के लिए सभी केंद्रों पर वीडियोग्राफी की व्यवस्था की है। जिले में 16वीं राष्ट्रीय डिजिटल जनगणना प्रक्रिया 2027 शुरू हो गई है। पहले चरण में मकानों का सूचीकरण किया जा रहा है। 1 मई से 15 मई तक नागरिक स्वगणना कर सकते हैं। वहीं 16 मई से 14 जून तक जनगणना कर्मी घर घर जाकर मकानों की गिनती करेंगे। जिले में जनगणना के लिए मास्टर ट्रेनर्स को CMMS पोर्टल और मोबाइल ऐप के इस्तेमाल संबंधी प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही जिला प्रशासन ने डिजिटल जनगणना के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम किए हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े पिछले महीने अजमेर प्रवास पर रहे। उन्होंने अजमेर के महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई वेबसाइट का लोकार्पण किया। ये वेबसाइट भारतीय ज्ञान परंपरा की आधुनिक दृष्टि विषय पर विकसित की गई है। लोकार्पण समारोह में राज्यपाल ने नई तैयार वेबसाइट की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस वेबसाइट के माध्यम से विश्वविद्यालय की सभी सेवाओं को अधिक सुगम, पारदर्शी और उपयोगकर्ता अनुकूल बनाया गया है, जिससे विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और अभिभावकों को सभी शैक्षणिक जानकारियां तथा पाठ्यक्रम संबंधी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होगी। विश्वविद्यालय के कुलगुरु सुरेश अग्रवाल ने बताया कि विश्वविद्यालय अब जीरो कार्बन कैंपस हो गया है। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के अंतर्गत विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पिछले दिनों एक समारोह में 37 दिव्यांगों को स्कूटी प्रदान की। ये कार्यक्रम अजमेर के वैशाली नगर बधिर विद्यालय में आयोजित किया गया। स्कूटी मिलने से इन दिव्यांगों को जीवन यापन, रोजगार और कामकाज में सहयोग मिलेगा। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्री देवनानी ने 118 जरूरतमंद व्यक्तियों को 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी दी। बीते महीने जिले को कई विकास कार्यों की भी सौगात मिली। चंद्रवरदाई नगर योजना में 7 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले JNIT नर्सिंग स्कूल का केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री भागीरथ चौधरी के मुख्य आतिथ्य में शिलान्यास किया गया। साथ ही मानसून के दौरान शहर में जल भराव की समस्या से आमजन को राहत पहुंचाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष और अजमेर विधायक श्री देवनानी के प्रयासों से केसरबाग पुलिया को चौड़ा और ऊंचा करने के काम के लिए राज्य स्तर पर स्वीकृति मिली। वहीं 3 करोड़ रुपए की लागत से पुलिस लाइन नाले का काम भी किया जाएगा। जिले की राजकीय विद्यालयों में बोर्ड परीक्षा 2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 6 बालकों और 16 बालिकाओं को जिला प्रशासन द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समारोह में सम्मानित किया गया। अजमेर जिले की चिट्ठी में बस इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। प्रदेश में आज राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई ची। मोटी तादाद में मामला राजीनामा निपटाई गया। सुप्रीम कोर्ट रा न्यायाधीश जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह कहो नवी तकनीक और प्रौद्योगिकी मानवीय मूल्यां और न्याय राधीन काम ली जावनी चाहिए। राज्य सरकार सगला सरकारी अस्पताल में इलाज रा प्रोटोकॉल री कड़ाई पालना करण रा हुकम दीना। और प्रदेश में आए घनखट होना तेज गर्मी रो असर आवता दिना पारो और चढ़वा रा आसार।

0: समाचारों सागे मैं सुदर्शन नाहर अरब समाचार विगतवार विधिक सेवा प्राधिकरण री ओरु आज देश भर माय साल री दूजी राष्ट्रीय लोक अदालत लगाईची प्राधिकरण रा सदस्य सचिव संजीव पांडे आकाशवाणी समाचार ने बतायो कि लोक अदालत माय राजीनामा लायक मामला नी सुनवाई करी जावे है वे कहो कि इन अदालतां रो टेम बचबा सागे पक्षकारा ने तुरंत न्याय मिले है
1: जो एक्चुअल केसेस में जिसमें की लीगल पॉइंट्स होते हैं वो तो कोर्ट में रिजॉल्व होते ही होते हैं पर आउट ऑफ द कोर्ट जिनको की आपसी समझाइश के तौर पे विवाद निस्तारण किया जा सकता है उनको हम इन लोक अदालत में लेके आते हैं जैसे कि हमारे पास MACT के केसेस होते हैं इंश्योरेंस के मैटर्स होते हैं फैमिली कोर्ट के डिस्प्यूट्स होते हैं इवन रेवेन्यू के केसेस भाई भाइयों के बीच में जो केसेस होते हैं कुछ ऐसे केसेस जैसे पेंशन के मैटर्स होते हैं इन सब के केसेस की रिजोल्यूशन लोक अदालत के माध्यम से की जाती है।
0: राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण के विशिष्ट सचिव रश्मि नवली आकाशवाणी ने बतायो कि आ लोक अदालत में 7.5 लाख बत्ता मामला सुनवाई सारू रेफर करी जा
2: माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में तो 3 का गठन किया गया राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बेंच में 3 बेंचेस का गठन किया गया और समस्त DLSAs राजस्थान में 476 बेंचेस का गठन किया गया मतलब कुल मिलाकर 482 बेंचेस का कॉन्स्टिट्यूशन किया गया इस संपूर्ण लोक अदालत के लिए पूरे राजस्थान में और लगभग 7 लाख से अधिक प्रकरणों को रेफर किया गया है पूरे राजस्थान में इस लोक अदालत के लिए।
0: केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कहो है कि नई न्याय संहिता रो मकसद सजा देवण री बजाय न्याय दिलावणो है वे आज जयपुर में राखी जी लोक अभियोजकां री राज्य स्तरीय कार्यशाला में बोल रहा है इन पाछे खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका मेघवाल कहो कि कार्यशाला में लोक अभियोजकां सागे नुआ कानूना रे बारा में विगतवार चर्चा करी जी अरवान लागूकरण में आ रही परेशानियां रे बारा में विचार करी जियो
3: न्यू क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो चेंजेज आया IPC की जगह भारतीय न्याय संहिता आई CRPC की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आई इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया उसके बाद टेक्नोलॉजिकल चेंज हुआ ई प्लेटफॉर्म बने साइबर क्राइम जो बढ़ रहा है उसको हम कैसे कंट्रोल करें उसमें PP और APP की क्या भूमिका हो इसलिए आपने देखा होगा निश्चित रूप से मैं मानता हूं इस वर्कशॉप से अमृत निकलेगा।
0: कार्यशाला में राज्य रा विधि मंत्री जोगाराम पटेल ही लोक अभियोजकां री समस्यावां सुनी अरमारा निपटारा रा बारा में विचार कीनो कार्यशाला में साइबर अपराध दिव्यांग जन नु जुड़िया मामला और नुआ आपराधिक कानूनां ने असरदार तरीकों लागू करण रे बारा में खास तकनीकी सत्र राखी चिया। सुप्रीम कोर्ट रा जज न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह नवी तकनीक और प्रौद्योगिकी ने मानवीय मूल्यां और न्याय रा अधीन काम लेवण माथे जोर दिनो है वे आज जयपुर में विकसित भारत 2047 के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सामाजिक न्याय मुद्दा माथे राखी चिया 2 दिन रा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन रा उद्घाटन सत्र में बोल रहा है। न्यायमूर्ति मसीह कहो कि बदलता जमाना सागे नवी तकनीक काम लेवणो जरूरी है पर तकनीक काम लेवण रे दौरान मानव मूल्यां ने नजरअंदाज नी करया जा सके है और न्याय रा हितां री अनदेखी नी वेवणी चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी और एक गैर सरकारी कॉलेज का नींव रख्या चया इन सम्मेलन में देश भर रा शिक्षाविद न्यायविद और शोध करण वाला भाग लिनो सम्मेलन में श्रीलंका रा पहली वाला मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मोहन पीरिस न्याय व्यवस्था में तकनीक रा काम ने घणो खास बतायो। भारतीय जनता पार्टी रा नेता शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल रा मुख्यमंत्री बन गया है। कोलकाता रा ब्रिगेड परेड मैदान में राखी जिया कार्यक्रम में राज्यपाल RN रवि शुभेंदु अधिकारी ने पद और गोपनीयता री शपथ दिलाई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ही शिरकत कीनी वे सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए कहो कि पश्चिम बंगाल री जनता रो ओ ऐतिहासिक जनादेश विकास सुशासन देश रा भला और जनता रा विश्वास री मजबूत अभिव्यक्ति है। ध्यानयोग है कि पश्चिम बंगाल में पहली दफा भारतीय जनता पार्टी रो राज आयो है। ऐसा समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहे हो। प्रदेश रा सगला सरकारी अस्पताल में अब इलाज जुड़िया सगला नियमारी करड़ा

0: पालना ते करी चावेला चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग रे प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ आज जयपुर माए आला अहलकारन साग मीटिंग करर ई बारा माए हुकम दीना व कहो क इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर और आईसीयू सरी खिठौना लापरवाही रे सूरत माए संस्थान रा प्रभारी और यूनिट हेड ने सीधा जिम्मेदार ठहराया जावेला श्रीमती राठौड़ अस्पताल माए संक्रमण रोकण सारू कीटाणु खत्म करण बाबत नियमित तौर काम करण माथे जोर दीनो कोटारा न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल माए ऑपरेशन रे जरिए जापो वेवण पछे नुवी मायड़ा री मौत वेवण और तबियत बिगड़बारा मामला माए राज्य सरकार एक डॉक्टर समेत दो नर्सिंग कर्मचारियों ने मुअत्तल कर दीना है ऐसा गई यूटीबी माथे लागियोड़ा एक डॉक्टर ने नौकरी निकाल दियो चियो है और दो डॉक्टरों ने कारण बताओ नोटिस देर जवाब तलब करी चियो है दूजिकानी चिकित्सा शिक्षा आयुक्त बाबूलाल गोयल काल कोटा चार वाकयारो विगतवार जायजो लीनो और जरूरी हुक्म दीना चिकित्सा शिक्षा विभाग रे प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ बतायो कि मामला री शुरुआती जांच माए चिकित्सा प्रोटोकॉल और प्रक्रिया माए गंभीर लापरवाही री ठा पण्या पाछे स्त्री और प्रसूति रोग विभाग रा यूनिट हेड डॉक्टर बी एल पाटीदार और यूनिट हेड डॉक्टर नेहा सिहरा ने कारण बताओ नोटिस दियो चियो है ई वाकया पाछे कांग्रेस पार्टी वारा नुमाइंदा रो एक दल कोटा भेजियो राज्य रा पहली वाला चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणारी अगुवाई माए ओ दल अस्पताल रो दौरो किन्नो ई पाछे वे अस्पताल प्रबंधन माथे घोर लापरवाही रो आरोप लगाता थका कहो के ऑपरेशन थिएटर और जापा विवरण रा कमरा री खराब हालत रे बावजूद वठे ऑपरेशन करी जिया जिन कारण मरीजा माए संक्रमण फैल गयो महाराणा प्रताप री जयंती रे मौके आज वान श्रद्धा भाव सागर याद करया जा रहा है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए नमन करता थका कहो के महाराणा प्रताप रो त्याग और खुद माथे अभिमान युगा युगा ताई सीख देवेला ये मौके भरतपुर माए शौर्य यात्रा निकाली ची ई पाछे राखी जी संगोष्ठी माए महाराणा प्रताप री जबरदस्त हिम्मत और देशभक्ति री गाथावा याद करी ची पाली जिला रा जवाली माई रैली निकाली ची और खूनदान शिविर लगाई चियो प्रदेश माए जनगणना 2027 री तैयारियां रा तेत कर्मचारियां ने सिखावण देवण रो दौर चाल रियो है डूंगरपुर माए प्रगणका और सुपरवाइजरा रा तीजा बैच रो तीन दिन रो सिखावण कार्यक्रम आज पूरो भियो सिखावण रे दौरान जनगणना सारू मोबाइल ऐप काम लेवण लेआउट नक्शो बनावण और स्व गणना रा काम रे बारा माए विगतवार जानकारी दीरी जी प्रगणका ने घर घर जार मोबाइल फोन रे जरिए डेटा दर्ज करण रो अभ्यास ही कराई चियो ई दफा डिजिटल जनगणना दो दौर माए करी जा रही है राज्य माए इरा पहला दौर माए 16 मई 14 जून ताई मकाना री लिस्ट बनाई जावेला जबकि मुख्य जनगणना फरवरी 2027 माए करी जावेला अरब मौसम प्रदेश रा अतुणी हल्का माए लू बाज रही है जबकि लंकाऊ उगनी हल्का माए आंधी बारिश रो दौर चाल रियो है जैसलमेर बाड़मेर और फलौदी माए ऊंचो ऊंचो तापमान 44 डिग्री सेल्सियस ने पार कर गयो कुछ और जिला माए जबरदस्त तावड़ो पड़ रियो है वठे दिन सागे रात्रि भगती पारो सामान्य ऊंचो दर्ज करियो चार रियो है बीती रात फलौदी माए 31.4 और जोधपुर माए 30 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज करी चियो मौसम केंद्र जयपुर रा निदेशक राधे श्याम शर्मा बतायो कि आवता दिना पारो और चढ़वारा आसार है
1: फिलहाल पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज हो रहे हैं आगामी 2-3 दिनों में और 1-2 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी होने और पश्चिमी राजस्थान में अगले 4-5 दिन हीट वेव का दौर दर्ज होने की प्रबल संभावना है वहीं पूर्वी राजस्थान के भी ज्यादातर इलाकों में अगले 2-4 दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना है इसके अलावा केवल उत्तर पूर्वी और उत्तरी राजस्थान में 11, 12 और 13 मई को मेघ गर्जन और कहीं कहीं आंधी चलने की संभावना है इसके साथ में राज्य के अधिकांश भागों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना बनी
0: जयपुर रा पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल पुलिस रा अहलकारा ने अपराधियां रा खिलाफ कड़ी कार्रवाई करण और पीड़ित जनता ने तुरंत न्याय दिलावण रा जतन करण रा हुक्म दीना है

वे आज जयपुर में शहरी कानून व्यवस्था बनाई रखण और अपराधा माथे काबू करण रे बारा में राखी जी मीटिंग में बोल रहा है। पुलिस कमिश्नर खास तौर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाला अपराधा और अनुसूचित जाति जनजातियों जुड़िया मामला में तुरंत जांच कर और असरदार कार्रवाई करण माथे जोर दिनो। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड री ओरों आज भूगोल विषय री प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा

0: में 76.43% उम्मीदवार शामिल फिया। आईपीएल क्रिकेट होड़ रहते आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटन्स पीछे मैच फैला वो मुकाबलो जयपुर रा सवाई मानसिंह स्टेडियम में अब थोड़ी देर पछे 7:30 शुरू फैला। आखिर में खास समाचार एक कर फेरू सुन ले रहो। प्रदेश में आज राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई ची मोटी तादाद में मामला राजीनामा निपटाई चिया। सुप्रीम कोर्ट रा न्यायाधीश जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह कहो नवी तकनीक और प्रौद्योगिकी मानवीय मूल्यां और न्याय रा अधीन काम ली जावनी चाहिए। राज्य सरकार सगला सरकारी अस्पताल में इलाज रा प्रोटोकॉल रिकरडायू पालना करण रा हुक्म दीना। और प्रदेश में घनखर ठोणा तेज गर्मी रो असर। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो थियो। नमस्कार,
1: ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस समय शाम के ठीक 7 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल की बुवाई से लेकर फसल कटाई तक पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान किया जाता है। स्थानीय आपदा या फसल कटाई के बाद नुकसान की स्थिति में बीमित किसानों द्वारा 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप, संबंधित बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। ऐसी फसलें जिन्हें फसल कटाई के उपरांत खेत में सुखाने के लिए बंडल बनाकर रखने की आवश्यकता होती है एवं उस स्थिति में यदि प्राकृतिक आपदा से कोई नुकसान होता है तो फसल कटाई से 14 दिन की अवधि तक बीमा कवर उपलब्ध रहता है और होने वाले नुकसान का आकलन व्यक्तिगत भूखंड खेत के आधार पर किया जाता है। क्लेम राशि का भुगतान राज्य सरकार एवं बीमा कंपनी की संयुक्त समिति द्वारा आकलन के पश्चात निर्धारित करके किसानों को सीधे बैंक खाते में किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एक कदम आत्मनिर्भरता की।
1: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब?
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ,
2: परम तो सभी डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
4: कार्यक्रम किसान वाणी सुनन आरा सारा किसान भाई और किसान भेणा ने भाई मोहन का निशू
5: और गंगा का निशू
4: मोकड़ा मोकड़ा
5: राम राम
4: राम राम
5: राम राम। मोहन भाई, आप गया पांच चौपाल और थे देखो आज बड़ा राजी हो और किसाना भी एक बोली सारी बानगी भी ले रहा हो।
4: बिल्कुल, देखो चौपाल में हाँ, जद भी बैठा जद आप भात भात की बात करा, अरे खेती बाड़ी में जो नवाचार हो रही है बी पर बात करा, पशुपालन की बात करा।
5: बिल्कुल,
4: और देखो करनी भी चाहिए क्योंकि जब आप किसान भाई बेड़ा बैठा और कई किसान भाई अपन सुन लाग रहे बोलाई तो सब किसान भाइयों को

0: अलग अनुभव हो, काम करने को तरीको अलग अलग हो, तो एक दूसरे साझा करे। तो भी को देखो दूसरा किसान भाई है जगह, नया किसान भाई है जगह, नया खेती बाड़ी में अभी जुड़िया है, बाने ही चीज को फायदो मिले।
1: बिल्कुल, यह तो थी बहुत ठावड़ी बात बताई। हर आदमी को काम करने को आपको तरीको है, और कई बार क्या है कि किसी काम में देखो एक आदमी को तरीको है वो बहुत बढ़िया हुआ है, मिन दूसरे में प्रयोग करना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: तो एक किसान ने देख के दूसरों किसान भैया ने नवाचार करे, विशेषकर नवाचार की बात करा, क्योंकि नवाचार को मतलब जो पहली कौन करेड़ो, और वो तो आपा सीखांगा, सीखता सीखता शुरुआत में बहुत सारी गलतियां भी होंगी, बहुत सारा नुकसान भी उसके है और भी उसके, पर आपा अगले साल भी सुधार करांगा, कहीं पिछली बार यहाँ करो अगली बार यहाँ करांगा, और यहाँ करता करता किसान सीखे। तो
0: बिल्कुल
1: एक किसान तो देखो कि गलतियां कर करके सीखे, पर दूसरों उन्हें देख देख के भी सीख के कहनी एनी, या जो नवाचार शुरू करे हो तो ए
0: बिल्कुल
1: तरीकों करे हो, आपने ए तरीकों कौन करनू, यो जो आखिरी में करे हो बिया करनू है, तो
0: बिल्कुल।
1: वो
0: अभी में
1: गलतियां कौन
0: देखो
1: करेगा।
0: कई
1: बिल्कुल
0: गलतियां, अभी में भी सुधारो, कोई भी नई
1: बिल्कुल
0: चीज हो, पहली पहुंच जज्बा उतरे तो भी कमाइन बहुत सारी गलतियां हो, और
1: बिल्कुल
0: धीरे धीरे भी हम सुधार होता होता होता वह बढ़िया एक पद्धति बन जावे।
1: बिल्कुल
0: तो खेती बाड़ी की आप बात करें तो आ दिनांक मैंने खेती बाड़ी पिछले दिनांक मैंने खूब यूरिया रसायन को प्रयोग करो, धीरे धीरे भी चीज ने भी छोड़ता जा रहा, और जगह खेत अभी भी छोटा हो गया,
1: बिल्कुल
0: और खेती बाड़ी को तरीको है पहले से वो भी अब बदल गयो, बहुत सारा ऐसा उपकरण आ गया, यंत्र आ गया कि जगह काम में अपन 15-15, 20-20 दिन लाग जाता, 30-30 दिन लाग जाता, अब काम एक दिन का मैंने 5-6 घंटा का मैंने हो जाए, तो ये
1: बिल्कुल
0: बदलाव आए। तो एक साग अपन खेती में नवाचार है वो भी लेके आना पड़ेगा भाई, पुराना
1: बिल्कुल
0: डर सा अब चाल कौन पाओ अपा, क्योंकि
1: बिल्कुल।
0: अब दुनिया तेज चल लगी, हर चीज
1: अरे
0: स्पीड से हो रही हो काम।
1: बिल्कुल, और जमीन आपने तेजियां करोगे छोटी होगी भी, के साथ आपने एरिया की जो विशेष कर बात करा तो सिंचाई को साधन भी बहुत कम है आपने,
0: बिल्कुल
1: यो ले दे के जमीन को पानी है, यो एक मां नमक की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो समस्या है का आपने अठे की माटी जकी है, बबाड़ू माटी है और भी को कण बहुत मोटो है, तो यो पानी यदि भी ज्यादा लगा दियोगे तो वो नमक जो है वो खेत ने खराब कर देगो। तो ऐ
0: बिल्कुल
1: के खातर आपने यो ही पानी काम में लेना है, या ही जमीन रखनी है और उनका वहां उपज लेनी है जमीन खराब करे बिना, तो
0: बिल्कुल।
1: बी के खातर नवाचार बहुत जरूरी है।
0: तो ईशा नवाचार से जुड़ा के कम जमीन का मायने आप ज्यादा उत्पादन
1: बिल्कुल,
0: लेवा,
1: और कम पानी में
0: कम पानी का मायने उत्पादन लेवा, बिना मौसम की जगह फसल अभी भी
1: वह
0: ले
1: भी लेवा
0: सका,
1: बिल्कुल
0: ताकि अपना उत्पादन बढ़े। भी पहली तो आपा अनुभव सीखा करता खेती बाड़ी, अपना बड़का है पुरखा है जगह करता आता,
1: साला सालों सीखा
0: सालों
1: भाई।
0: करता आता,
1: हाँ
0: पर अब सरकारी पर विशेष ध्यान दिए, बहुत सारा कृषि विश्वविद्यालय खोले है, बहुत सारा महकमा खोल दिया, विभाग खोल दिया पूरा कृषि के लिए,
1: भाई
0: जगह
1: पढ़
0: सिर्फ कृषि पर ही ध्यान रखा है
1: बिल्कुल पढ़ायो जाए,
0: अब।
1: यो सारो सारो
0: हाँ
1: ट्रेनिंग दी जाए
0: बिल्कुल, तो
1: और फिर
0: बच्चा
1: करे जा
0: बढ़ो पढ़ के
1: किसान।
0: आवे, खेती बाड़ी की पूरी नॉलेज लेके आवे कि आपा कम जमीन में क्या ज्यादा उत्पादन लेवा, के पोषक तत्व की कमी रह जाओ, जब आप पूर्ति किया कर सका, क्या पानी ने सही कर सका, क्या जमीन ने सही कर सका, और उत्पादन है जगह नई किस्म उन्नत तरीके की किस्म लेके आवा जिससे बढ़िया उत्पादन हो, गुणवत्ता युक्त हो, तो ये सारी चीज नवाचार से हो।
1: बिल्कुल, तेज यहाँ बात करी पानी की, कम पानी में कम जमीन तो होगी। तो आजकल देखो के ए टाइम आपा सब्जी लिया और आपने लू चाले, तापमान खूब हुआ 50-50 तक चले हो जाए, तो इसी स्थिति में देखो के पानी चाहे रोज की दे दो उठ जागो, तो ए के खातर बहुत जरूरी है कि आपा एक जो को नई तकनीक की बात करा या नवाचार की बात करा, मल्चिंग खेती है भाई। मल्चिंग को मतलब है कि जमीन ने ढक दे आपा कोई चीजों, तो ताकि भी की नमी नहीं उड़े, बरकरार रहे फसल जकी है बा, क्योंकि कम पानी है अपने कन, तो फसल जकी है बा ओ जा, तो बी के खातरे सीट आवे बिया तो उनको ऊपर बिछाने के लिए जमीन पर ये प्लास्टिक की सीट आवे है
0: मल्चिंग बेसिट आओ।
1: मल्चिंग सीट, और कई बात के आवे है, मोटी भी आवे पतली भी आवे, वो किसान के जे हिसाब हूं भाई कौन सी फसल बानी है, कितने के टाइम के लिए अपन रखनी है भाई हिसाब वो खरीद ले आपकी सहूलियत के हिसाब, बस सारी बात क्या हमें बाजार में, बस सीट जो की है बा जमीन में अपन ने ए तरीकों बिछानी हुआ है कि जठा अपन बीज गेरा ने बठे भी में छेद कर ला,
0: अच्छा
1: बाकी बा पूरी की पूरी जमीन ढकी रहे, तो जठे पौधो है वो बाहर निकले होगो बिना नीचों जमीन को जो खाद को है पानी को है और को वो पोषण मिलता रहे ऊपर सूर्य के पत्तियां वो सूर्य को बोले बोकरे प्रकाश और वह उनको भोजन बनते रहे। यू फायदो यो वह के एक तो कम पानी के माफ खेती हो जाएगी, दूसरी जका खरपतवार जो को है भी कोई इलाज हो गयो, क्योंकि जब तक सूर्य को प्रकाश नहीं मिला बीज उगे को नहीं। तो

0: आपां जो को 20 बाय अभिन तो मिल रहा है क्योंकि आपां इतनी जगह छोड़ी है, बाकी जगह तो ढकदी सीट हूं, तो खरपतवार को नुगे, वो खरपतवार को नुगे तो आपने पानी को और खाद को जो को है खरपतवार जो पोषण ले ले भाई, वो बच्चे रहे वो अपनी फसल ने पूरा पोषण मिलेगा और फसल अच्छी होगी।
1: बिल्कुल, देखो कितनी इस तरीके से अगर आपने किसान भाई खेती बाड़ी कर रहे है तो बाकी लागत भी बचे,
0: बिल्कुल
1: और कम लागत का मायने उत्पादन ज्यादा हुआ, पानी की भी बचत हो रही है। और यही आप बात करा अगर अगर दूसरे नवाचार की तो पोली हाउस है, ग्रीन हाउस है,
0: बिल्कुल,
1: तो इसको वातावरण तैयार कर दी है कि अब जी हाँ गर्मी को मौसम चल रही है और सर्दियां की आप देखा कि जकी सब्जियां है वे आवे बाजार का मायने भाई रुति को फिर भी आने लग रही है, तो एक ग्रीन हाउस पोली हाउस इस तरीकों को वातावरण ने नियंत्रण कर लियो है कि फसल ना पाओ गाँव तो कितो तापमान चाहिए,
0: बारह मासी एक जिस तापमान रखे वो
1: अभी के सागे सागे वो फायदा हो कि जगह कीट रोग है बेबी कौन लागे भी कमाए, क्योंकि बे इस तरीके को पूरा माहौल तैयार कर दे हुए उपचारित करके बीज लेके आओ तो कीट रोग भी कौन लागे, और इस जगह फसल तैयार कर रहा है, जगह सब्जी तैयार कर रहा है, मुनाफा भी ज्यादा मिल रहा है।
0: बिल्कुल, क्योंकि ए टाइम जो सब्जी न होनी है बस सब्जी बाजार में उतारे,
1: बिल्कुल,
0: और अगेती जो एक महीने बाद में आओगी भाई एक महीने पहले बाजार में उतार दे तो भी को मुनाफोमान मिल है। और इनमें भी जहाँ पोलियो हाउस को और को आंखों में इनमें भी यो पानी की बचत भी हुआ है, बारह मासी कोई भी फसल आप बास कहा, और रोग की जहाँ थे बात करी क्योंकि रोग भी तापमान के कम बत्ती होना ज्यादा हुए हैं तो वह भी कोनी हुए और खरपतवार भी हम कोनी हुए क्योंकि बारी तो वो आवेगी उनकी कोई चीज तो खरपतवार भी कम हो तो लागत अपना आप किसान की कम होगी।
1: बिल्कुल, और जगह भी बीती ज्यादा कौन सी है,
0: हाँ बिल्कुल,
1: कम जगह का मायने वो काम भी कर सके तो किसान भाई लागत तो कम आएगी, उत्पादन बढ़ेगा और बाकी इनकम है जकी भी बढ़ेगी, तो ए इशा जगह नवाचार आपने किसान भाई जगह प्रगतिशील किसान है जगह बहुत सारा कर रहे भी है, तो बाकी देखो इनकम भी बहुत ज्यादा है। जब पहले के टाइम देखा करता के खेती बाड़ी आप करता तो खेत बोवा तो दियो, अब देखी जाएगी बढ़िया बिरखा होगी जमानो हो गयो तो बढ़िया हो गयो, नहीं तो वो गयो खराब हो गयो अनाज तो भी से नुकसान हो, तो अब वो किन्ने से आप 2 रुपया सैकड़ा पे की हिसाब पिसा लिया की लिया के बिना बात जमानो हो गया जो तो ठीक है नहीं गया कर जगह मायने,
0: बिल्कुल,
1: तो पहली खेती बाड़ी ई हिसाब से हो के बात तय कबड़िया जमानो
0: साल में एक बार होनी और
1: अब बात कौन रही, अब मुनाफा को काम है
0: और बारहमासी कर्ज
1: का, बारहमासी कर्ज का अब व्यापार की तरह है, किसान भाई जगह बहुत सारा है जगह लगातार खेती बाड़ी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया इनकम कमाने लग रहे हैं।
0: बिल्कुल, और परंपरागत खेती जहाँ आपने मान लो 10 बीघा जमीन है तो 9 बीघा में आपने परंपरागत कर लो, 1 बीघा में नवाचार कर लो,
1: बिल्कुल,
0: ये कोई भी करो सब्जियां की करो या कोई भी चीज की करो बागवानी की भी करो, ऐसा फल भी लगा लिया जाए इंज का आपने कभी देखा ही को ना करता और उ तो इन साबुन किसान नवाचार कर सके हैं। बी के सागे देखो कहते शुरुआत में बात करी के भाई आपने जमीन कम होगी और पानी भी कम होगी, तो पानी के बचत के लिए मान लो कि ये तो अपन बीघो 2 बीघो में सब्जियां की या कोई फल की और की खेती कर ली, अपन परंपरागत खेती करनी है धान की और की, तो बी के खातर भी देखो पानी सिंचाई जो है तो साल में 2 बार फसल आप लेस का अच्छी फसल लेस का, तो बी के खातर देखो के एक तो फुहारों सिंचाई हुआ है, अब वो पानी फुहारो पूरे दिन चलेगो और ऊपर पड़ेगो और जमीन भिगोएगो दुगुनो पानी लगेगा
1: पूरी जमीन पर ही लगेगा,
0: बिल्कुल, और एक ड्रिप सिंचाई हुआ है,
1: अच्छा
0: भाई छोटी छोटी नली सी पौधे की जड़ा तक सगड़े पूरे खेत में बिछा दी और बूंद बूंद बूंद बूंद भी मैं भी पौधे की जड़ के मां जितनु पौधे चाहिए बितनु आपा दे दे,
1: बिल्कुल,
0: और बारो चावा के रात दिन टपक बो करे तो भी ठीक है छोड़ दें, और आपा यहाँ चावा के नहीं नमी है 2-4 दिन कौन जरूरी बंद कर दिया तो बिन बंद भी एक ही जगह बंद कर दे और एक ही जगह चला दें, एक बार बिछाने के खातर पूरे में थोड़ा सा टाइम लगे फिर पूरी फसल के टाइम आपा ने कोई समस्या को नहीं
1: मायने दो आपने पौधो है भी की जड़ में पानी लगे
0: बिल्कुल और उतनु ही क्योंकि पौधे ने
1: तो,
0: बिल्कुल
1: तो इससे भी खरपतवार नियंत्रण
0: भी हो जाता
1: है और पानी की भी बचत हो रही है
0: और खरपतवार नहीं होगी ना खेत में तो जो को खाद को और को वो जो को पोषण है वो क्योंकि खरपतवार तो ज्यादा ले हुए उनकी वृद्धि बहुत जल्दी हुआ है तो वो अपनी फसल ने मिल जाएगा तो उत्पादन में भी फर्क पड़ेगा, और एक चीज जो की है बा रोग कहीं भाई आ चीजें कम होगा क्योंकि खेत में आप देखा कई साल यहाँ अगर मैं बहुत ज्यादा हुआ है तो उस साल देखा के कदे कातर हो गए और कदे क्यों हो गए लट होगी और होगी रोग बहुत ज्यादा में,
1: बिल्कुल,
0: तो कम पानी मिलेगा फसल ने इतनु ही चाहिए उतनु ही तो रोग भी कम होगा, खाद पर्याप्त है पानी कम है तो रोग भी

0: कम होगा और धीरे धीरे जो है चारों तरफ की नमी है बा बरकरार रहे तो फसल भी बढ़िया हुए।
1: बिल्कुल, नवाचार की आप बात कर रहे हैं तो आप इस तरीके से अगर आपने किसान भाई खेती बाड़ी का मायने देखो आगे बढ़ रहे हैं। बात करा मशरूम की खेती की,
0: बिल्कुल
1: इससे भी
0: है।
1: बहुत ज्यादा इनकम कमा रहे अपना किसान भाई। खेती बाड़ी को तो काम करे ही करे, एक सागर मशरूम की जगह खेती है वह भी कर सके, आ तो एक छोटा सा कमरे में भी तैयार हो जाए और इससे भी इनकम बहुत बढ़िया हो किसान भाई
0: बिल्कुल,
1: का,
0: क्योंकि बहुत महंगा है तो।
1: महंगो हुआ।
0: और बिया भी देखो कल आगे के अपन क्या करांगा, कोई वो तो तेजियां करो थोड़ी सी की वो है, और छान झोपड़ी जो भी बनास करने किसान छाया चाहिए भी, एने उगने के लिए अंधेरो चाहिए और थोड़ी हुमस चाहिए, तो उसो सो आपा कोई जरूरी को नहीं कर, क्यों छान झोपड़ी किसी भी बनास का। और भी के मायने आपा जिया कई बार तो कहवा के ऊपर ने टांग टांग के थेला सार
1: छोड़ दियो।
0: भी के मायने बीज बो दे में, और बेचारू मेरे निकलता रे माने कटिंग करके रे मशरूम ने काम में लियो जा, तो यो तो महंगो भी बहुत हो है और पूरी साल एन या भी कोनी कहे मौसम में कोनी हुए मौसम हुए पूरी साल अपन लेता रहे इसका।
1: बस अपन भी जो जी कमरे में आपा या जी होल में कर रहे हैं बैठा को थोड़ा तापमान रखना और नमी बना के रखनी हुए
0: नियंत्रित रखना होगा।
1: बिल्कुल, और जो थैला का मैंने आपा इन तैयार कर रहे हैं जो टांग रखा भी मैं खाद भूसो जो रखना और इनके
0: हाँ
1: साथ बीज करना है
0: बिल्कुल
1: इतना ही ध्यान रखना है। थोड़ी सी मेहनत लगे, इनकम ज्यादा आएगा महीने, तो खेती बाड़ी के साथ साथ अतिरिक्त अगर इनकम करना चाहो कोई किसान भाई तो यो काम है
0: घर ही
1: जो
0: करियो जा सके
1: बिल्कुल
0: तो
1: घर
0: जमीन
1: करियो
0: की
1: जा
0: जरूरत
1: सके,
0: है।
1: खेती
0: बिल्कुल
1: बाड़ी के साथ वो भी चाल बोकर।
0: बिल्कुल। और बिया भी है ना किसान ने देखो के पहले अपना बुढ़िया खेती कराया करता तो कोई व्यवसायिक रूप को नहीं माने के है के घरा खान भी मोटो धान से तो वो जन तो पशुआ भी हो जन तो चारो हो जन तो बांटो देन भी कोई गुआर चना कोर को जो भी फसल बा हो जनती इतनो ही चाहिए। तो अब देखो के आप बा परंपरागत खेती करके आपनों ठीक है के लिया या 6 महीना खेत में फसल कड़ी रही लिया यार एक बार इनकम होगी काम चालू बा चीज को नहीं, क्योंकि अपन टाबर पढ़ाना ही अपना खर्चा भी
1: बिल्कुल
0: बढ़ेगा टाबरा के हिसाब हूँ, तो आर्थिक युग है बिना पीसे के देखो क्यों को नहीं हो, तो किसान ने भी व्यवसायिक तो बननु पड़ेगा, चाहे
1: बिल्कुल।
0: खेती करो चाहे पशु पालो चाहे क्यों ही करो, उन्हें वो नजरियो जो कोई रखना पड़ेगा कि मैं मेरी खेती करूँ को उत्पादन बढ़े क्या और मैं उनको पूरा मूल्य क्या ले सकूँ।
1: सही
0: मशरूम
1: बात
0: है यहाँ जहाँ आप बात करी गए ईसा फल जगह अपने देखा ही कौन करता भाई अपन होने लग गया, और पोली हाउस हो चाहे वो ग्रीन शेड लगा लो चाहे क्यों लगा लो कोई भी है तरीके को के वातावरण जो को है वो पूरी साल एक जिसो राख का, तो आप कोई भी फसल सब्जी की या फल की लेस का अपने जो
1: बिल्कुल
0: बहुत महंगी चीजें आमे हैं बाजार के मायने आप उत्पादित कर सका।
1: बिल्कुल। आ नवाचार के साथ साथ देखो आपनी जगह सरकार है वह भी किसान भाइयों के लिए बहुत सारी योजना लेके आओ, तो आप वहां से भी आने जुड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, एक अलावा सिंचाई के लिए योजना है, किसान का खुद के लिए पेंशन मिले भी
0: योजना
1: तरीके की योजना है,
0: और उपकरण जो भी खेती में
1: उपकरण
0: चाहिए उन के
1: खरीदा भी
0: लिए।
1: के लिए जी यहाँ भी आप पोली हाउस ग्रीन हाउस की बात करी तो एक महीने भी सब्सिडी मिले,
0: बिल्कुल।
1: तो आ चीजा से भी जुड़नो चाहिए, वो भी आ किसान भाई ने लाभ
0: और भी
1: उठानो चाहिए।
0: मशीन खेत का मायने काम करने वाली है उनके लिए भी सब्सिडी मिले, वह भी किसान है कई बारियां वह के मैं क्या लाऊंगो कितनू महंगो पड़े मशीन आ रही नई नई फसल ने उठे काट दें उठे काट लें वो कर लें, सबके लिए जो को है वो अनुदान मिले है किसान ने,
1: बिल्कुल
0: और तक की ड्रोन की जो की है आ रही है वो भी उनके लिए भी व्यवस्था है, तो
1: बिल्कुल
0: यदि कोई किसान जागरूक है और योजनाओं को लाभ उठा सके है तो बहुत अच्छी
1: बिल्कुल,
0: बात
1: खेती
0: हुआ।
1: बाड़ी में बहुत बदलाव आ गयो है के
0: बिल्कुल
1: बहुत सारी योजना और तकनीक आ गई, एक साथ अगर किसान भाई आगे बढ़ाओगे तो निश्चित ही देखो लाभ कमाओगे, आय जरूर भी 2 गुनी 3 गुनी 5 गुनी तक जाएगी।
0: बिल्कुल
1: बाता चिता आप अपने किसान भाई से और खूब करांगा बतलाओ, पर भी से पहली करवाओ थोड़ा मनोरंजन और सुनाओ मीठे सोयो लोक रचना।
0: बिल्कुल।

0: हाँ तो देखो, अभी आपा मीठी सी लोक रचना सुनी सीमा मिश्रा और साथिया की आवाज में। और देखो, बाता ना भागा तेवड़ा, बात आप खेतीबाड़ी की करा, नवाचार की करा, बात करा आप पशुपालन की, क्योंकि किसान भाई का देखो पशुपालन भी बितो ही जरूरी रहे। और पशुओं के बिना देखो गाड़ी आगे घुड़े भी कौन।
1: बिल्कुल थे बोथावड़ी बात कही है कि पशु और खेती एक दूसरे से जुड़े रहे, क्योंकि पशु पालन से खेती में खाद मिलेगी और
0: बिल्कुल।
1: बाजार पर अपनी निर्भरता कम होगी। क्योंकि जहाँ थोड़ी देर पहले कह रहे अभी नवाचार, तो किसान के करे के लगभग रासायनिक खाद जो की है बनी बनाई बाजार में लावे खेत में घेरे, और भी एक तो जमीन खराब हो है, दूसरो अपन स्वास्थ्य भी खराब हो है,
0: बिल्कुल।
1: और तीसरो का लागत बढ़े किसान की। तो जी पशु रखांगा तो एक तो फायदा ये होगा कि यदि दूध वाला पशु रखे ही तो दूध व्यवसाय के रूप में अपने वो काम में देगा। दूसरी बात खाद की है, बा अच्छी खाद बना के आप अपने खेत में दे सकांगा तो अपनी लागत कम होगी
0: बिल्कुल।
1: और बाजार पर निर्भरता कम होगी। दूसरी बात रसायन मुक्ति होगी, आप अनाज को है जो भी अनाज बहांगा वो एकदम अच्छी गुणवत्ता होगा, आप नुकसान कौन करेगा।
0: बिल्कुल
1: तो बड़ा सारा फायदा भी चीज का एक सागो में, तो पशु तो अपन जरूर पालना
0: जरूर रखना
1: चाहिए, चाहे
0: पड़ा।
1: दूध वाला पालो
0: देखो,
1: चाहे भेड़ बकरी पालो।
0: खेती बाड़ी की बात करें तो बिना खाद के तो बढ़िया खाद के अपनी बढ़िया फसल पैदा हो कौन पावे।
1: बिल्कुल
0: और खाद के लिए तो देखो गोबर चाहिए चाहिए। और सगी बात करा कि आप खेती बाड़ी जित करा तो वो तो एक लंबो अवधि हो जाए, 3 महीना 4 महीना बाद में फसल तैयार हो, अभी के बाद में आप निकाल के लेके आओ, अभी के बाद में आप बेच के आवा। और इनकम है जो दैनिक के जीवन में रोज के
1: हाँ भाई,
0: अपने
1: रोज
0: खर्चों
1: की
0: पानी
1: जरूरत पड़े
0: चाहिए,
1: बिल्कुल
0: पैसा की जरूरत पड़े, भाई फसल तो आप 4 महीना बाद बेच के आवागा जब
1: बिल्कुल
0: आपने की आमदनी होगी। तो बी के लिए भी आप पशुपालन कर रहे हैं तो देखो बहुत सारी दूध बेचस का, दही, छाछ, डेयरी, बहुत सारी उत्पाद जगह तैयार हुए। इक अलावा भी दूध से बहुत सारी मिठाइयाँ बने, तो इक वो भी बहुत फायदा है
1: बिल्कुल
0: पशुपालन का मायने आपने।
1: बिल्कुल। हाँ दूध वाला पशु रखा तो दूध दूध के साथ डेयरी प्रोडक्ट जितना भी ही वह खाद खाद को भी व्यवसाय कर सका। क्योंकि जे आपा बड़ी सारी गाय भैंस बांध रखी तो आपने खेत में दे के खाद सग सगे आपा उन्हें बेच भी सका खाद ने। दूसरी बात दूध वाला अलावा आप यदि बात करा भेड़ बकरी, आपने वे एरिए की बात करा तो उरे छोटी झाड़ियां बहुत उमे और वे भेड़ बकरियां के लिए बहुत पोषण दे में, तो इसो या अपने उरे खाली जगह भी खूब है, रोई भी बहुत है, गोचर भूमि भी खूब है, चराने के लिए जगह भी मिल जाए। तो हर किसान चाहे खेती करो चाहे गाय भैंस पालो भी के सागे ज्यादा नहीं रखे तो दो चार भेड़ बकरी जरूर रखे। तेजिया थोड़ी देर पहले बात कर रहा कि भाई पूरी साल पीसे की जरूरत है, तो भेड़ बकरी की जब बात करा ना आप तो देखो के बकरी की बात करा चाल तो फिर तो फ्रिज है, दूध कठे काटे और कठे काम में लियो,
0: सही
1: चाह
0: है,
1: बनाई
0: जरूरत होगी
1: पी
0: टीम काट
1: ठीक
0: लियो।
1: है, और चल तो फिर तो एटीएम भी है। क्योंकि गाय भैंस तो इतना आप सोच बेचने की सोचा तो बेचता बेचता 6 महीना लग जाए,
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि इतना महंगा पशु है। भेड़ बकरी ही वह अपना यदि यहाँ चार सोचा कि ब्याज बचिया बेचना ही जरूरत है तो आज का आज भी बेच
0: हाँ,
1: सका।
0: अड़ी में पैसा की जरूरत हो
1: बिल्कुल
0: जब कभी भी बेच के भी
1: बिल्कुल
0: आमदनी हो जाए। और आपा देखो, आपने किसान भाइयों खूब चर्चा करी पशुपालन की, फसलां की, और भी आगे जब बैठांगा वो जो करांगा, पर
1: बिल्कुल।
0: आज को जो को समय वो अठे तक मोहन भाई ने
1: और गंगा ने सीख दराव करा
0: राम
1: राम राम।
0: राम।

अभी किसान भाई सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है FM 100.7 MHz पर। श्रोताओं, इस समय शाम के 7:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं चंपा मेथी और साथियों की आवाजों में गाई इस राजस्थानी लोक रचना के साथ।

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: राजस्थान पब्लिक स्कूल रिसाव,
2: नए सत्र में पहले 100 प्रवेश पर फीस में 25% की छूट।
1: कृषि, विज्ञान, कॉमर्स व कला सभी विषय उपलब्ध।
2: बेटियों के लिए विशेष छात्रवृत्ति,
1: अनुभवी साफ सुरक्षित वाहन सुविधा, शानदार परिणाम।
2: हजारों छात्र आज सरकारी सेवाओं में हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में।
1: राजस्थान पब्लिक स्कूल रिसाव 9413।

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: अंतरालों के बाद श्रोताओं का राजस्थानी लोक संगीत के कार्यक्रम में फिर से स्वागत है। अंतरालों से पहले आप सुन रहे थे सीमा मिश्रा को। आइए अब आपको सुनवाते हैं रेखा राव की आवाज में गाई ये राजस्थानी लोक रचना।

रागिनी और निर्मल मिश्रा को श्रोताओं अभी कार्यक्रम के आखिर में आपने सुना। इस राजस्थानी लोक रचना के साथ कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है, FM 100.7 MHz पर। इस समय रात्रि के ठीक 8 बज चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता।

श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना सोनू निगम और श्रेया घोषाल की युगल आवाजों में फिल्म क्रिस से। गीतकार थे नासिर फराज, संगीतकार राजेश रोशन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोता अभी सुन रहे थे उदित नारायण अलका याग्निक और साथियों को फिल्म मिशन कश्मीर में। गीत लिखा था समीर ने, संगीतकार शंकर एहसान लोय। इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू। क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: अंतरालों के बाद श्रोताओं का कार्यक्रम में फिर से स्वागत है। अंतरालों से पहले आप सुन रहे थे कविता कृष्णमूर्ति को फिल्म 1942 ए लव स्टोरी में। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोता अभी सुन रहे थे बादल फिल्म में सोनू निगम, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों को, गीतकार समीर, संगीतकार अनु मलिक। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चूरू केंद्र से फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। प्रस्तुत है कार्यक्रम का अगला गीत।

जब प्यार किसी से होता है। श्रोताओं, इस फिल्म का गीत अभी आपने लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाजों में सुना। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीतकार जतिन ललित। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

आ अपलोड चलें। फिल्म का गीत अभी श्रोताओं आपने सुना, आवाजें थी अलका याग्निक और उदित नारायण की। गीतकार समीर, संगीतकार नदीम श्रवण।

श्रद्धा सिन्हा की आवाज में। श्रोता सुन रहे हैं मैंने प्यार किया फिल्म का गीत। गीतकार असद भोपाली, संगीतकार राम लक्ष्मण।

श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में आपने मन फिल्म का गीत सुना, आवाजें उदित नारायण और अलका याग्निक की थी। गीतकार थे समीर, संगीतकार संजीव दर्शन। इस गीत के साथ कार्यक्रम गुलदस्ता अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है, FM बैंड के 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। अब आप दिल्ली केंद्र से सुनेंगे पहले समाचार संध्या और रात्रि 9:00 News@9 का प्रसारण।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने MIRV प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे, कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल RN रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रिमंडल मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रमाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित रहे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की तुरंत बाद ही शुभेंदु अधिकारी प्रशासनिक काम में जुट गए। ब्रिगेड में शपथ ग्रहण समारोह के बाद वो जोरासा को ठाकुरबाड़ी गए और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मैदान में PWD की टेंट में राज्य पुलिस और प्रशासन की शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। बाद में शाम को भवानीपुर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निवास पर जाकर राज्य के पहले BJP मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरी मंत्रिमंडल का गठन अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने अगले सोमवार 99 में प्रशासनिक कामकाज की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाया है। कलकत्ता से आकाशवाणी के लिए अभिरूप भट्टाचार्य।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने श्री अधिकारी को आगामी कार्यकाल की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि मंत्री के रूप में ये सभी पश्चिम बंगाल के विकास पथ को और मजबूत करेंगे। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कड़गम TVK के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक रिपोर्ट।
2: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में TVK 108 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में TVK नेता अधव अर्जुन ने बताया कि VCK और IUML दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। 2 विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को 1 सीट खाली करनी होगी, जिससे TVK की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि TVK पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, VCK और IUML से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। UDF की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता

के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडे बेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। इसकी कुल लागत 3,175 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व के आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रज जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान PMGSY के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में श्री चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को राज्य में 973 सड़कों के लिए वित्तीय आवंटन और स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। समारोह में श्री चौहान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 18,907 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA सरकार द्वारा 11 वर्ष पहले शुरू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी प्रमुख सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजनाओं से हुए लाभों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजनाएं देश के लोगों के लिए गरिमा, आश्वासन और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल MIRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। MIRV ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस मिसाइल का परीक्षण कई पेलोड के साथ किया गया, जिसका निशाना हिंद महासागर के भौगोलिक क्षेत्र में फैले विभिन्न लक्ष्यों पर था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्नि मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, सेना और उद्योग जगत की सराहना की है। प्रवर्तन निदेशालय ED ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धन शोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम PMLA 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनियों के खिलाफ दर्ज 3 मामलों के सिलसिले में मुंबई के 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। सीबीआई ने बताया है कि ये तलाशी अभियान कंपनियों के निदेशकों के आवासीय परिसरों के साथ साथ उन मध्यस्थ कंपनियों के कार्यालयों में भी चलाए जा रहे हैं जिनके खातों का इस्तेमाल बैंक निधि के गबन के लिए किया गया था। सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया है कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक ने सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं जहां 6 पंचायतों को चुना गया है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा का स्थान रहा जहां प्रत्येक को 5-5 पुरस्कार मिले हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA ने आज असम के बक्सा जिले से अमेरिका को 20 मीट्रिक टन शहद की पहली खेप का निर्यात किया। APEDA के प्रसंस्करण संयंत्र में परीक्षण और प्रयोगशाला उपकरण उपलब्ध कराने सहित बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग से ये निर्यात संभव हुआ। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया में चल रहे क्षेत्रीय संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से एक प्रस्तावित 14 सूत्रीय रूपरेखा पर ईरान की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि तेहरान की प्रतिक्रिया वार्ता के अगले चरण को निर्धारित कर सकती है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने हालिया अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों की आलोचना करते हुए अमेरिका पर तनाव बढ़ाकर कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर करने का आरोप लगाया। ये ताजा घटनाक्रम हॉर्मुज जलडमरू मध्य और उसके आसपास की घटनाओं के बाद सामने आए हैं जिनमें ईरानी और अमेरिका सेनाओं के बीच नौसैनिक मुठभेड़ की खबरें शामिल हैं। अमेरिका के अधिकारियों ने ईरान के ड्रोन कार्यक्रम से जुड़े नेटवर्क को निशाना बनाते हुए नए प्रतिबंधों की भी पुष्टि की है। हालांकि तनाव के बावजूद न तो अमेरिका और न ही ईरान ने औपचारिक रूप से युद्ध विराम के टूटने की घोषणा की है। इस बीच इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए अपने अभियान तेज कर दिए हैं। समाचार कक्ष विशेष शुक्ला।
1: चीन की शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डैम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेंगी जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। वहीं आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 17वें ओवर में 3 विकेट पर 186 रन बना लिए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान अंक तालिका में चौथे जबकि गुजरात 5वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। बिहार में आज तेज हवाएं चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिन के दौरान केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिणांतरिक कर्नाटक में कल तक बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच कोंकण और गोवा के कुछ स्थानों पर गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसी के, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने MIRV प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। कई विकास परियोजना

0: योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: अंतरालों के पश्चात कार्यक्रम में श्रोताओं का फिर से स्वागत है। श्रोता इस समय सुन रहे हैं आकाशवाणी के चूरू केंद्र से राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम। आज के लोक कलाकार हैं मुरली राजस्थानी और साथी।

श्रोता अभी सुन रहे थे राजस्थानी लोक संगीत के कार्यक्रम में लोक कलाकार मुरली राजस्थानी और साथियों को। अब ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं, FM 100.7 MHz पर। श्रोताओं, रात्रि के 9:30 होने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले कार्यक्रम संस्कृति भारती। कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। आज के इस अंक में हम चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो मंच के पर्दों से शुरू होती है, लोकगीत की गूंज से गुजरती है और बुद्ध की पावन स्मृति तक जाती है। आज की पत्रिका के पहले पड़ाव पर हम मिलेंगे एक ऐसे रचनाकार से जिनके कलम ने कभी भी समझौता नहीं किया, जिनके नाटकों को बंद कराने की मांगे उठी पर जिनकी आवाज कभी दबी नहीं, शब्दों का विद्रोही विजय तेंदुलकर। सन 1928 6 जनवरी महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ, विजय धोंडोपंत तेंदुलकर। पिता एक प्रकाशक थे तो घर में किताबों की सुगंध थी बचपन से। आर्थिक तंगी में बड़े हुए तेंदुलकर ने जल्द ही काम शुरू किया, पत्रकारिता, अनुवाद, सिनेमा लेखन का। लेकिन उनकी असली पहचान बनी नाटकों से। मराठी में लिखे, हिंदी में अनुदित हुए और पूरे भारत में खेले गए उनके नाटकों ने दर्शकों को बेचैन किया और यही उनका उद्देश्य भी था। उन्होंने कहा, मैं दर्शकों को सुकून देने के लिए नहीं लिखता, मैं उन्हें उनके अपने चेहरे से मिलवाने के लिए लिखता हूँ, चाहे वो चेहरा कितना भी भद्दा क्यों ना हो। शांतता कोर्ट चालू आहे, यानी खामोश अदालत जारी है। सन 1967 में लिखा ये नाटक भारतीय रंगमंच का एक मील का पत्थर है। एक मंडली है, एक स्त्री है बेनी, जो एक नकली अदालत में असली सच्चाइयों का सामना करती है। समाज, परंपरा और पुरुष की सत्ता के विरुद्ध ये नाटक आज भी उतना ही प्रासंगिक है। और फिर सखाराम बाइंडर, 1972 में लिखा गया ये नाटक एक मध्यवर्गीय पुरुष जो कि अपने घर में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करता है, उसकी कहानी है। ये नाटक इतना विस्फोटक था कि उसे बंद कराने की मांग उठी। अदालत ने प्रतिबंध नहीं लगाया और तेंदुलकर की जीत हुई, कलम की जीत हुई। फिर घासीराम कोतवाल, ये नाटक इतिहास, राजनीति और सत्ता के खेल का ऐसा चित्रण था कि महाराष्ट्र में इसे हटाने की मांग उठी। पेशवाई के दौर की पृष्ठभूमि में लिखा गया ये नाटक राजनीति की दुष्प्रवृत्तियों का एक आईना सा बन जाता है। 19 मई 2008 को विजय तेंदुलकर इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनके नाटक आज भी मंचित होते हैं, मुंबई में, दिल्ली में, पुणे में, कोलकाता में और न जाने कितनी जगहों पर। उनके पात्र आज भी जीवित हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण और अनगिनत सम्मान मिले, लेकिन उनकी असली पहचान वो बेचैनी है जो उनके नाटक देखने के बाद हमारे मन में घर कर जाती है। विजय तेंदुलकर ने ही एक बार कहा था, अगर मेरे नाटक से कोई परेशान नहीं हुआ तो शायद मैंने ठीक से वो नाटक लिखा ही नहीं।

0: आकाशवाणी के 90 वर्ष की ये यात्रा जिसमें अनगिनत आवाजें घुली हुई हैं, अनगिनत सुर समाए हुए हैं, इस ऐतिहासिक पड़ाव पर हम मिलते हैं उस आवाज से जिसने लोकगीत को गांव की मेड़ से उठाकर विश्व मंच तक पहुंचा दिया, परंपरा को नया जीवन दिया। इसके साथ साथ शास्त्रीय गायन में भी उन्होंने एक विशेष पहचान बनाई है और अभी कुछ ही समय पहले उन्होंने अपने संस्मरणों को एक पुस्तक के रूप में भी विमोचित किया है। सुनते हैं पद्मश्री मालिनी अवस्थी को।
1: मैं तो यही कह सकती हूँ कि हम लोग बड़े भाग्यवान रहे, हम आकाशवाणी के स्वर्ण युग की रश्मियां हैं। वाचन कैसा हो और कैसी भाषा हो तो आकाशवाणी ने सिखाया। अब आज जो बोलने की शैली है, क्षमा करेंगे मुझे कहने दीजिए, अनुमति प्रदान करें जो मैं बोलूं, शायद बहुत लोगों को अखरेगा। इस मामले में मैं थोड़ा परंपरावादी हूं कि ये तो सच है कि आपको नई जनरेशन से जुड़ने के लिए अपने को बदलना पड़ेगा, ये ठीक है। लेकिन नई जनरेशन के लिए जब आप बदलेंगे तो आप उनको सुनाना क्या चाहते हैं, उनकी चीजें अपनी चीजें? आप उनके लिए बदलिए लेकिन सुनाइए तो क्वालिटी की चीजें। मैंने तो उस दौर देखा है आकाशवाणी का, आकाशवाणी की जो उर्दू सर्विस होती थी उसकी जो तकरीरें थी, जो गुफ्तगू थी, उसको सुनने के लिए हम लोग लगाते थे। उर्दू सर्विस की बात करें, हम लोग वो तकरीरें सुनते थे जिसमें कि कोई एक

कहानी लेती थी और उस कहानी को बयान करती थी, उस कहानी की वही नायिका है। अब वो कहानी को पढ़ रही है, आप कहेंगे आजकल क्या कोई वन एक्ट प्ले करेगा, कि उस कहानी को पढ़ने का अंदाज ऐसा होता था कि उस कहानी को सुनकर आपको लगता था फिल्म देख रहे हैं पूरा। तलफ्फुज इतना अच्छा, अदायगी इतनी कमाल की कि आपको लगता था क्या बात है। तो हम लोग ने जो थिएट्रिक्स है, जो अपने गाने बजाने में भी, वो सब रेडियो से बहुत सीखा। तो मुझे लगता है कि चाहे वो भाषाई इल्म हो, लिटरेचर हो, पोइट्री हो, क्वालिटी म्यूजिक हो, क्योंकि आकाशवाणी से गानों का, जो फिल्म के गाने भी प्रसारित होते थे, उसका भी एक स्तर होता था। हमारे और भाई और हम लोग ये बात कर रहे थे कि हमारा म्यूजिक का जो सेंस बना वो अर्ली 70s को सुन करके बना, कि अर्ली 70s में जैसे फिल्म के गाने आ रहे थे, जैसा नॉन फिल्मी गाना बन रहा था उसने हमारा शेपअप कर दिया, क्योंकि रेडियो ही हमारा सबसे बड़ा साधन था। क्या बजता था, क्या मतलब क्वालिटी, तो यानी रेडियो में कोई फिल्म का गाना भी स्तरीय नहीं समझा जाता था। तो नहीं, बहुत छोटी कलाकार हूँ और मेरी कोई हैसियत नहीं, लेकिन मैं अपनी ओर से ये जरूर यहाँ अर्ज करूंगी कि आज जब बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं और रेडियो के बहुत सारे प्लेयर्स हैं, यानी प्राइवेट इतने FMs हैं, इतने लोग आज कर रहे हैं, प्लीज आप वो सब मत बनिए, आप रहिए। आपको मैं यही बात दूरदर्शन के लिए कहूंगी कि दूरदर्शन को बाकी चैनल्स जैसा बनने की जरूरत नहीं है। आप क्वालिटी और तकनीक में आज की भाषा और आज की तकनीक को एड्रेस कीजिए, लेकिन कंटेंट वही रखिए। कौन बनाएगा प्रेमचंद, कौन बनाएगा टैगोर की कहानियों पर नाटक, कौन शरद चंद्र पे बनाएगा? यदि हम भी वही सब करने लगे तो मुझे तो लगता है कि आज के लिए तो यही मैं चाहूंगी कि आकाशवाणी आप ऐसी बात कहें जो सुनाए। आज रेडियो सबके पास है, कंटेंट अच्छा लगेगा तो सुनेगा, क्योंकि भीड़ में आप हमेशा से अलग थे, तो आपकी हमेशा से जो एक पहचान रही आकाशवाणी की वो भारतीयता रही है, भारत की कहानियां सुनाने, तो वो पहचान बनी रहे, बरगद का पेड़ बन के खड़े रहिए जिसको आंधियां नहीं हिला पाती। दो बज के 30 मिनट पे वो समय एक होता था, वो आकाशवाणी गोरखपुर के लिए भी, लखनऊ के लिए भी, सारे आकाशवाणी केंद्रों के लिए अलग अलग कलाकार रोज गाते थे वहां भी यहाँ भी। वो हम लोग उसको सुनने के लिए, क्योंकि वहां पे खाटी कलाकार गाते थे, जो सुगम संगीत गा रहे थे उनके लिए भी अनिवार्य शर्त रख दी गई उस दौर में, भोजपुरी जरूर गाएंगे, क्योंकि ये जियो आया था सरकार की ओर से और मेरे ख्याल में सारे रीजनल सेंटर्स को गया होगा कि वो अपने आंचलिक भाषा को पुष्ट करें। तो वो गाना अलग होता है कि आप सीख कर कुछ गाएं, लेकिन 2:30 बजे से आता था जो वहां के पारंपरिक लोक कलाकार, उसको सुनने के लिए, क्योंकि उसमें कुमाऊनी भी बजता था, गढ़वाली बजता था, ब्रज का रसिया बजता था, अवधी भी सब गाते थे हम लोग, तो बड़ा कमाल का एक वो। अब शास्त्रीय संगीत का तो प्रतिदिन कार्यक्रम होते, आप देखिए कि एक कार्यक्रम जो आपका एक होता था स्वर सरिता सुबह 7:15 बजे, जिसमें एक राग लेते थे और उस राग से उसको फिल्म में कैसे, वो बड़ा पॉपुलर कार्यक्रम था, क्योंकि जिनको नहीं शास्त्रीय संगीत समझ में आता है वो उस फिल्म के गाने से ये समझ जाते थे, ओह अच्छा। मुझे लगता है आज फिर से उसी तरह से उस सहजता के साथ वो चीजों को लेकर के आने की जरूरत है, वो बड़ा कमाल का कार्यक्रम था। ऐसे मंगलवार को जो शास्त्रीय संगीत की सभा, मंगलवासी सारे क्लासिकल म्यूजिशियंस उनका वैसे तो कभी भी गाते थे, लेकिन मंगलवासी संगीत सभा में गाने का एक अलग गोल्ड स्टैंडर्ड होता था कि लोग कहते थे भाई मंगलवासी में हम गा रहे हैं, सुनिएगा जरूर। लोग कहते थे भैया, लोग सुनते थे, सुन करके वापस बताते थे कि आपने क्या गाया। और गजलों की जहां तक बात करी, जब आपको नियमित गाना है, आपको हर 3 महीने में आपको एक रिकॉर्डिंग मिलेगी जो कि आप 2-2 गजलें कम से कम गाएंगे, तो उसमें किसी से दूसरे से कलाम न मिले, फिर आप क्या करते हैं, आप मेहनत करते हैं, अच्छे शेर चुनते हैं, अच्छे शायरों को सुनते हैं, फिर आप सीखते हैं, धुन बनाते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है दूसरा क्या गा रहा है ये सुनने की भी बड़ी एक हम लोगों में तल्लीनता रहती थी कि अगले ने क्या गाया। और ये तो हुआ, मैंने आपको बताया साथी कलाकार हम लोग, साथ साथ रेडियो में, क्योंकि वो जमाने में पैरेलल म्यूजिक क्रिएट हो रहा था फिल्म के अलावा, उसे आकाशवाणी ने जब बजाना शुरू करा तो हम पहली बार, मेरा मतलब पैरेलल म्यूजिक से है, जो गैर फिल्मी गाने जो फोक भी नहीं थे, यानी सबसे पहले आप जब गजलें सुन रहे थे जगजीत सिंह साहब को सुन रहे थे वहाँ, जब आप वहाँ पहली बार पंकज उदास जी को सुन रहे थे, और जब आप बेगम साहिबा को सुन रहे थे, या भजनों में आप जब सुन रहे थे अच्छे अच्छे कलाकारों को, और सब बॉम्बे की रिकॉर्डिंग्स होती थी, तो आपको समझ में आता था कि हम यहाँ पे जो लोकल स्तर पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और ये जो एल्बम्स, क्योंकि सबके वो जमाना सीडी का नहीं था तो सबके रिकॉर्ड्स भी नहीं थे, लेकिन संस्कार रोपने में रेडियो का बहुत बड़ा हाथ रहा। आराधना, रामचरितमानस भजन रोज बजते थे, तो एक बड़ा खूबसूरत बैलेंस म्यूजिक का 24 घंटे में रेडियो ने कर रखा था कि सबके हिस्से

0: में सब कुछ था, कुछ इग्नोर नहीं था।
1: फिल्म म्यूजिक भी था, क्लासिकल भी था, और किस्सा कहानी थी, नौटंकी थी, बहनों के लिए भी था, किसानों के लिए था। रेडियो की उम्र इतनी लंबी रही है कि वो हर आदमी के कान पे वो ये रहता था कि उस सबके लिए कुछ ना कुछ है।
2: ये थी पद्मश्री मालिनी अवस्थी, स्वराज सौजन्य, आकाशवाणी लखनऊ। सोचिए, एक ऐसा कैनवस जिस पर हर देश का रंग है, हर सभ्यता की लकीर है, और फिर भी तस्वीर एक है। आने वाली 21 मई को यूनेस्को का विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस है, और आज भारत इस कैनवस का केंद्र है, जहां ICCR जैसी संस्थाएं, विदेशी कलाकारों के हाथ और हमारी अपनी बहुरंगी परंपराएं मिलकर एक ऐसी भाषा बोलती हैं जिसका कोई अनुवाद नहीं होता, पर समझता हर व्यक्ति है। सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, एक ही मिट्टी 100-100 रंग।
3: आज से करीब 6 दशक पहले मशहूर विचारक मार्शल मैक्लुहान ने एक शब्द दिया था, ग्लोबल विलेज। उन्होंने कल्पना की थी एक ऐसी दुनिया की जो सूचनाओं और तकनीक के जरिए एक छोटे से गांव में सिमट जाएगी।
4: लेकिन सच तो ये है कि मैक्लुहान से हजारों साल पहले इस भारत भूमि ने पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दिया था। भारत के लिए वैश्विक गांव कोई नई खोज नहीं, बल्कि एक प्राचीन जीवन दर्शन है, जहां पूरी दुनिया ही एक परिवार है।
3: इसी शाश्वत विचार और बिखरती हुई वैश्विक कलाओं को एक साझा मंच देने के लिए यूनेस्को ने 21 मई को विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस के रूप में चिन्हित किया है।
4: ये दिन महज एक तारीख नहीं, बल्कि एक जीता जागता स्मारक है इस बात का कि विविधता समाज को बांटती नहीं, बल्कि उसे मुकम्मल बनाती है। आज भारत इसी कल्चरल डाइवर्सिटी के वैश्विक केंद्र के रूप में खड़ा है।
3: भारत दुनिया के लिए एक ऐसी सांस्कृतिक प्रयोगशाला है, जहां 7 समंदर पार के रंग हमारी मिट्टी में मिलकर एक नया इंद्रधनुष बनाते हैं। इस सिलसिले को मजबूत कर रही है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR।
4: एक ऐसा संस्थान जिसका मुख्य उद्देश्य केवल अपनी कला का प्रदर्शन करना नहीं, बल्कि विश्व स्तर पर एक ऐसा साझा मंच तैयार करना है, जहां हर संस्कृति को सम्मान मिले और संवाद के लिए नए रास्ते खुलें।
3: सरकार की इन कोशिशों और वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती सांस्कृतिक धमक पर आइए विस्तार से सुनते हैं परिषद की उप महानिदेशक मनीषा स्वामी को।
5: भारत में हमेशा से ही वसुधैव कुटुंबकम की बात करते आए हैं। हमारी फिलॉसफी जो अप्रोच है सारे दुनिया को लेकर, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की जो हम बात करते हैं, ग्लोबल विलेज भी उसी का रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि हम यही मानते हैं कि सारी दुनिया जो है वो एक समुदाय, एक कुटुंब की तरह है। भारतीय कल्चर जो है वो उसके अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिट होता है। तो मुझे लगता है कि कल्चर और ICCR ग्लोबल विलेज में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम कर सकता है। शुरुआत में जब भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत रखा गया था 1950 में, लेकिन बाद में विदेश मंत्रालय जो है उसके अंतर्गत लाया गया, क्योंकि ये माना गया कि वे फॉरेन पॉलिसी का अभिन्न अंग है। इसीलिए ICCR है उसका जो मैंडेट है वो यही है कि प्रमोशन ऑफ कल्चरल एक्सचेंजेस, आर्टिस्टिक एक्सचेंजेस, पीपल टू पीपल टाई, जो हमारे 2-3 वर्टिकल हैं, उनका मकसद ही यही है कि हम भारतीय संस्कृति का ना केवल प्रचार प्रसार करें, बाकी विश्व के साथ में भी हमारे एक्सचेंजेस बढ़े। ICCR आज की तारीख में 38 जो हमारे ICC जिन्हें कहते हैं भारतीय कला केंद्र, वो विश्व में हैं, और हमारे 11 ऑफिस जो हैं वो भारत के अंदर हैं, प्लस जो हमारे भारतीय मिशन हैं और दूतावास और प्रधान कौंसुल, वो हैं 200 के आसपास। उनके द्वारा हम अपने सभ्यता, संस्कृति, अपनी हेरिटेज का प्रचार प्रसार करते हैं। हमारे पास में बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, हमारे फ्लैगशिप फेस्टिवल्स हैं। मैं उदाहरण के तौर पे बताना चाहूंगी कि हम भारत से कम 700 आर्टिस्ट हर साल भारत से बाहर परफॉर्म करने के लिए भेजते हैं, और ऐसे ही हम 500 के आसपास जो आर्टिस्ट, विदेशी आर्टिस्ट हैं, जो भारत में आते हैं और वो हमारे फेस्टिवल्स में भाग लेते हैं। भारतीय सभ्यता संस्कृति के साथ साथ में जो विश्व में जो आर्टिस्ट

0: परफॉर्म कर रहे हैं, कला साहित्य संस्कृति की कोई भाषा नहीं होती और वो सबके लिए आनंद का विषय है। और विशेष रूप से ICCR जो है फोक ट्राइबल आर्टिस्ट को प्रमोट कर रहा है, तो ICCR स्कॉलरशिप्स के माध्यम से जो है वो विदेशी छात्रों को भारत में पढ़ने के लिए आमंत्रित करता है और 4000 स्कॉलरशिप प्रति वर्ष दी जाती हैं और उसमें भी ग्लोबल साउथ जो हमारा है उसको प्रेफरेंस दी जाती है। कुछ विशेष रूप से स्कॉलरशिप है जो पूरे विश्व के लिए ओपन है फॉर परफॉर्मिंग आर्ट। तो इस प्रकार से आयुर्वेदा, योगा, डांस एंड म्यूजिक एक गिवन पॉइंट पे आप देखेंगे 7 से 8 हजार स्टूडेंट्स हमेशा भारत में पढ़ रहे होते हैं। दे आर अवर रियल ब्रांड एम्बेसडर्स।
1: इस दास्तां का सबसे सुंदर रंग उन विदेशी कलाकारों की आंखों में दिखता है जो यहाँ आकर अजनबी नहीं रहे। सुनिए इन आवाजों को जिन्होंने सरहदों की बंदिशों को पीछे छोड़ दिया और भारत की इस छाव में अपना दूसरा घर ढूंढ लिया।
2: नमस्ते प्यारे दोस्तों, मेरा नाम एके जुगबाय है। 15 साल पहले मुझे भारत सरकार ICCR की छात्रवृत्ति मिली। मुझे 1 साल तक नई दिल्ली में रहने और पढ़ने का अवसर मिला। मेरे लिए ये बहुत ही रोचक और शानदार अनुभव था। मेरा जिंदगी नए रंगों में रंग गई। मैंने दिलचस्प लोगों के साथ पढ़ाई की और हिंदी का उपयोग मैं आज भी करती हूँ।
3: नमस्ते, मेरा नाम दरिया है। मैं ICCR के एक प्रोग्राम में हिंदी सीख रही थी और मैं भारत गई थी 2012 और 13 में। हिंदी केंद्रीय संस्थान दिल्ली केंद्र में हिंदी का 1 साल का कोर्स पूरा किया था। उसके बाद मैंने अपना BA रशिया से पूरा कर लिया था, मास्टर्स भी पूरा कर लिया था और PhD का कोर्स भी पूरा किया था। उसके बाद मैं हिंदी पढ़ा पाई सेंट पीटर्सबर्ग के स्टेट यूनिवर्सिटी में और अलग अलग क्षेत्रों में मैंने काम किया है। भारतीय लोगों के साथ मैंने बहुत काम किया है, अनुवाद के क्षेत्र में और भारतीय टूरिस्ट को बहुत घुमाया रूस में सेंट पीटर्सबर्ग में जो कि मेरा अपना शहर है, और भारतीय प्रतिनिधियों के लिए बहुत अनुवाद किए हैं भारत को जानने के लिए, भारत को घूमने के लिए। हमारे पढ़ाई के दौरान हम ICCR के 2 टूर ले पाए और हम गए थे मुंबई गोवा और कर्नाटक और तमिलनाडु देखने गए थे। और ICCR के प्रोग्राम के तहत हम बहुत सारे देशों के लोगों से भी मिल पाए, दोस्ती बना पाए और अब मैं ये बता पाऊंगी कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, अलग अलग देशों के दोस्त हैं जिससे मुझे बहुत खुशी और आज तक मेरी बात लोगों से होती रहती है। और मैं सबको ये बोलूंगी भारत जरूर जाइए, भारत घूमिए, देखिए, हिंदी सीखिए और आपको सफलता मिलेगी।
4: जब कोई विदेशी हाथ भरतनाट्यम की मुद्रा बनाता है या जब कोई विदेशी कंठ संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण करता है तो भाषा के सारे फासले मिट जाते हैं।
1: शिकागो से टोकियो और सेंट पीटर्सबर्ग से पेरिस तक आज भारत की मिट्टी की महक हर दिशा में है। चाहे वो आयुर्वेद का प्राचीन संयम हो या भारतीय संगीत की मधुर तान, दुनिया आज भारत को खुले दिल से गले लगा रही है।
4: भारत की ये सांस्कृतिक यात्रा हमें उस मोड़ पर ले आती है जहाँ भूगोल के नक्शे धुंधले पड़ जाते हैं और केवल मानवीय संवेदनाओं के रंग उभरते हैं।
1: आज भारत दुनिया के लिए महज एक गंतव्य नहीं बल्कि वो अनुभव बन चुका है जहाँ अलग अलग संस्कृतियाँ नए रंग उड़ती हैं। संस्कृति भारती के लिए मैं नेत्रा
4: और मैं प्रांजल।
5: ये थी हमारी प्रस्तुति एक ही मिट्टी 100-100 रंग। एक तरफ बड़े बड़े बाजार हैं, चमक दमक है, विज्ञापन है और दूसरी तरफ एक छोटी सी दुकान, एक कांपती उंगली और उसमें उतरा पीढ़ियों का हुनर। आज की हमारी अगली लघु प्रस्तुति में उन्हीं की बात होगी। वो महिला शिल्पकार जो वोकल फॉर लोकल को सिर्फ नारा नहीं अपना जीवन मानती हैं। सुनते हैं उन्हीं की जबानी उनकी कहानी, वोकल फॉर लोकल हुनरमंद।
6: मेरा नाम सुनीता जाखड़ है। एक्चुअली मैं प्रोफेशनल टेक्सटाइल डिजाइनर हूँ। 12 इयर्स के बाद फिर मुझे काम करते करते मुझे लगा कि मुझे अब अपना खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहिए, और जो मैं घर बैठे ताकि मैं अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाऊँ, अपने बच्चों को भी देख पाऊँ और घर से अपना कुछ स्टार्ट कर पाऊँ। तो उसी से मेरा आइडिया है, मैंने जहाँ कंपनी में काम करती थी वही के मैंने स्टाफ, एक दो स्टाफ मैंने हायर किया, एक मशीन से मैंने स्टार्ट किया, फिर मैंने प्रोडक्ट अपने डिफरेंट डिफरेंट जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वहाँ पे मैंने उनको लिस्टेड किया। फिर देखा कि वहाँ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है अपने प्रोडक्ट्स को, फिर और हौसला बढ़ाते रहे। मतलब कस्टमर ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, मैं जो भी हूँ अपने कस्टमर्स की वजह से ही हूँ। वो मुझे फीडबैक देते हैं अपना कि इसमें इतना जीपर्स होना चाहिए, इतना इसमें वेट होना चाहिए, चाहिए कि हम इजी कैरी कर पाए और हमारे लुक के साथ जो है वो मैच भी हो जाए। तो अपने मोस्टली जो है अपना B2B मैं एग्जीबिशन के थ्रू ज्यादा सेल करती हूँ। बाकी दो अपने ऑफलाइन स्टोर्स हैं। पूरा जो है मैं राजस्थान का आर्ट, आर्किटेक्चर और कल्चर हेरिटेज को ही अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करती हूँ। जैसे इसमें शेखावटी की हवेलियां मैंने बनाई है, इस पे भी मैंने नवलगढ़ की, मंडावा की, वहां का आर्ट फॉर्म लेकर के उसको फोटोशॉप में लेयर टू लेयर उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिपीट देखते हैं, कलर देखते हैं कि कहां से कैसा मैचिंग करेगा ताकि मेरे कस्टमर को कुछ नया दे पाऊं। मैं हमेशा मेरी यही कोशिश रहती है।
7: मेरा नाम साक्षी है और मैं भादोगढ़ हरियाणा से आई हूँ। मेरा जो काम है वो सांझी कला में है। मैं सांझी कला को प्रोत्साहन देने के लिए और उसको जीवंत रखने के लिए काम कर रही हूँ। और सांझी कला जो है वो बहुत ही प्राचीन कला है, हरियाणा की ही नहीं बल्कि पूरे जो ब्रज क्षेत्र है उसकी जो है वो बहुत ही प्राचीन धरोहर है। तो मैं उसके ऊपर कार्य कर रही हूँ, जिससे मैंने बहुत बचपन से ही करते थे, तो मम्मी काफी चीजें करती रहती थी तो उन्होंने भी बहुत सारा एक्सपोजर दिया और एग्जीबिशंस में भी जाते रहते थे बचपन से। तो ये हमारे घर में ही एक आदत थी कि बचपन से कला की पहचान सीखना। तो मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई करी, बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स ट्राई करे, लेकिन फिर सांझी पे आके मेरा दिल रुक गया कि मेरे को यही करना है। बहुत कम आर्टिजन्स हैं जो ये कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इसी को क्यों ना एज अ नीच लेके चलूं और फिर उसी में काम करूं। तो मैं अभी लगभग 9 से 10 साल हो गए हैं मुझे आर्ट फॉर्म सीखते हुए भी और करते हुए भी बाकी लोगों को उसके बारे में बताते हुए। जब मैंने अपना 12th पास किया था उसके बाद से ही मैंने ये आर्ट फॉर्म स्टार्ट कर दिया था। इन सब चीजों के बारे में बस पढ़ते थे, तो उसके बाद मुझे मौका मिला ताकि मैं ये आर्ट फॉर्म या इसमें कुछ कर पाऊँ। मेरा जो शहर है भादोगढ़, वहाँ पे साल में एक इवेंट ऑर्गेनाइज होता है, उसमें सिर्फ आर्टिजन्स को बुलाया जाता है। तो जिनसे मैंने सीखा, श्री राम सोनी जी जो इस कला में निपुण है और उनको नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, वो वहाँ पे आए थे। तो मैंने उनका काम देखा, फिर मैंने उनसे प्रेरणा ली, तो मैंने उनके साथ सीखते सीखते उनके साथ काम करते करते मैं आज मेरे को स्टेट अवार्ड मिला हुआ है हरियाणा सरकार की तरफ से।
8: मेरा पूजा राहुल नाम है, मैं गुजरात से हूँ, भावनगर कच्छ के साइड से। मेरा ये काम है ज्वेलरी का काम, सारा हैंडमेड रहता है और मेरी ज्वेलरी भी ऐसी ही रहती है, हमेशा हैंडमेड से बनी हुई पीसेस। जब भी मुझे एक पीस बनाना होता है तो 3-4 दिन में मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। हम इतनी जो मेहनत करते हैं और मेहनत के बाद ये जो हमें फल मिलता है जो सरकार की नजरों में आता है, क्योंकि ऐसे तो बहुत से सब होते हैं कारीगर घर में जो काम करते हैं, पर बहुत मुश्किल है वो बाहर निकल के आ पाए। जो सरकार हमें उभारती है, जो अवार्ड देती है, नेशनल अवार्ड दे या फिर स्टेट अवार्ड दे, वो हमारे लिए बहुत महत्व रहता है। उसी से हम बाहर निकलते हैं, उसी से हमें तजुर्बा मिलता है।
5: ये थी हमारी प्रस्तुति वोकल फॉर लोकल हुनरमंद, सहयोग श्रीनाथ दीक्षित का था। कुछ चीजें समय से परे होती हैं, आस्था, स्मृति और श्रद्धा। जब तथागत बुद्ध की पवित्र शरीर धातु उनकी पावन भूमि पर लौटती है तो लगता है जैसे इतिहास ने सांस ली हो। प्रस्तुत है लघु रूपक पुण्य प्रत्यावर्तन।
1: आवाज में उतरने दीजिए इस दृश्य को। हिमालय की गोद में बसा लद्दाख, ऊंचाई ऐसी कि सांस थम जाए, ठंड ऐसी कि पत्थर भी सिहर जाए।
4: और इन्हीं पहाड़ों के बीच इन दिनों एक अलग ही ऊष्मा है, एक अलग ही रोशनी है, एक ऐसी आस्था की लहर जो पूरे भारत में महसूस की जा रही है।
1: वजह है भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का लद्दाख पहुंचना। लोग इसे महज एक आयोजन नहीं मान रहे, उनके लिए ये है बुद्ध का पुनरागमन।
4: सदियों से लद्दाख ने बौद्ध धर्म की उस लौ को थामे रखा है जो बाकी दुनिया में भी रोशनी का पर्याय बन रही है। यहाँ के मठ, यहाँ के भिक्षु, यहाँ की मिट्टी, सब कुछ बुद्ध के संदेश से रचा बसा है।
1: जब पवित्र अवशेषों के प्रदर्शन की बात आई तो लद्दाख को ही चुना गया, लेकिन इन अवशेषों का यहाँ पहुँचना बुद्ध के स्वयं आने जैसा क्यों माना जा रहा है? बता रहे हैं इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के महानिदेशक श्री अजीत हल्दर।
9: ये जो एक्सपोजिशन है, रिलिक जो है गौतम बुद्ध

0: के जो अवशेष है इनको गौतम बुद्ध के खुद उनका अपना ओरिजिनल सेल्फ माना जाता है। जब वो रिलिक को कहीं ले जाते हैं हम किसी देश में, तो बहुत देश में जो बुद्धिस्ट हैं वो मानते हैं कि गौतम बुद्ध खुद आए हमारे देश। लद्दाख में लेने का मतलब इसलिए है क्योंकि लद्दाख ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे सब बौद्ध ट्रेडिशंस जो है वो एक साथ मिल के रह रहे हैं फॉर सेवरल सेंचुरीज। और लद्दाख में जो मोनेस्ट्रीज हैं 100 से ऊपर मोनेस्ट्रीज है, हमें सिर्फ जो मेन मोनेस्ट्रीज उनके बारे में ज़्यादा ज्ञान है। तो इतने सालों से इन मोनेस्ट्रीज ने बुद्धिस्ट आर्ट, स्क्रिप्चर, मैनुस्क्रिप्ट्स, बुद्धिस्ट चैंटिंग, बुद्धिस्ट वैल्यू सिस्टम्स को एक जगह संगठित तरीके से रखा हुआ है, मगर ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। वो अपने कोने में कहीं पर लद्दाख में बैठे हुए अपने पास अपने सब एकत्रित करके किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। रिलिक ले जाने का मतलब यह है कि दूर दराज जगहों से ले में जो लद्दाख में जो लोग हैं सबको एक जगह लाया जाए, हर एक कोने से लोग जो बुद्धिस्ट रह रहे हैं लद्दाख में सबको लाने का बंदोबस्त किया गया है। तो ये पूरा लाके एक माहौल ऐसे क्रिएट किया जाएगा ताकि गौतम बुद्ध का जो सीख है कंपैशन, विजडम एंड पीस, इसके जरिए सब पे ये मैसेज जाएगा कि भाई आप लोगों ने इतने सालों से जो इतना बढ़िया काम किया उसका जो एक ट्रिब्यूट कह सकते हैं जो दिया जा रहा है आपको, ये गौतम बुद्ध का आशीर्वाद, बुद्ध खुद आपके जमीन में आके आपको आशीर्वाद दे रहा है।
1: 21 अप्रैल से 15 मई 2026 तक लेह से जांस्कर तक ये आयोजन एक आध्यात्मिक यात्रा की तरह चल रहा है। प्रार्थना सभाएं, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक संध्याएं, बौद्ध दर्शन पर संवाद
2: और 1 मई बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर पवित्र अवशेषों के सार्वजनिक दर्शन का अवसर भी खुला।
1: ये आयोजन केवल आस्था का पर्व नहीं, ये लद्दाख को दुनिया के नक्शे पर और गहरे अंकित करने का अवसर भी है।
2: केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत बता रहे हैं कि किस तरह यह महोत्सव लद्दाख की सांस्कृतिक पहचान और पर्यटन दोनों को नई ऊंचाइयां देगा।
3: भारत में और भारत की यह वांगमय में भगवान बुद्ध का चरित्र, भगवान बुद्ध का व्यक्तित्व, भगवान बुद्ध का जीवन और उनका दर्शन, ये सब निश्चित रूप से एक स्ट्रॉन्ग होल्ड पिलर के रूप में है। और भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए उनके प्रत्यक्ष स्मृति अवशेषों का इस तरह का प्रदर्शन और उसके चलते हुए जिस तरह की ऊर्जा का उत्सर्जन वहाँ लद्दाख में होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण। और क्योंकि निश्चित ही इस प्रदर्शनी के चलते हुए देश और दुनिया से अनेक लोग लद्दाख में जाने वाले हैं, स्थानीय लोग भी लद्दाख में, उसके कारण से डोमेस्टिक टूरिज्म भी बढ़ने वाला है। और जब इस तरह का बड़ा आयोजन किसी क्षेत्र में होता है, किसी जगह पर होता है, तो निश्चित ही उसके प्रति एक ध्यान आकर्षित पूरे विश्व भर का होता है, एक नई जो है उत्सुकता उस क्षेत्र को लेकर के डेवलप होती है। मैं ये मानता हूँ कि इसका बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव जो है वो लद्दाख के पर्यटन पर पड़ेगा।
2: शांति, करुणा, धैर्य, बुद्ध के ये तीन शब्द लद्दाख की हर घाटी में, हर मठ की दीवार पर, हर भिक्षु की सांस में जीते हैं।
1: आज जब ये पवित्र अवशेष इस धरती पर है तो लगता है जैसे बुद्ध स्वयं कह रहे हो, मैं यहाँ था, मैं यहाँ हूँ और रहूंगा। संस्कृति भारती के लिए मैं प्रांजल
2: और मैं नेत्रा।
4: बुद्ध ने कहा था, जो जाता है वो स्मृति में लौटता है, और आज की इस पत्रिका के अंतिम पड़ाव पर हम उन्हें याद करते हैं जो चले गए पर जिनके अवदान आज भी हमारे बीच मौजूद हैं और हमें समृद्ध कर रहे हैं। भारत रत्न पंडित पी.वी. काणे, जिन्होंने धर्मशास्त्र अध्ययन को नई ऊंचाइयां दी। अमर शहीद मास्टर अमीर चंद, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनके शब्दों में पूरा विश्व, पूरा आकाश समाया हुआ है। सत्यजीत रे, जिन्होंने सिनेमा को ही कविता बना दिया, और विदुषी गिरिजा देवी, जिनके स्वर में गंगा सी पवित्रता थी। इन सभी विभूतियों को पत्रिका का शत शत नमन। इसी के साथ संस्कृति भारती का ये अंक अब संपन्न होता है। नवोदिता को अनुमति दीजिए, नमस्कार।
5: ये आकाशवाणी है। आज के संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है राजकुमार मजुमदार का संतूर वादन।

श्री राजकुमार मजुमदार भारत के बहुमुखी संतूर वादकों में से एक हैं। अपनी विशिष्ट वादन शैली और मधुर ध्वनि के लिए वे संगीत प्रेमियों के बीच अत्यंत लोकप्रिय हैं। विशेष रूप से दोनों हाथों से संतूर को उल्लासपूर्ण और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने की उनकी कला श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देती है।

0: फिरुखाबाद घराने के प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश घोष तथा बनारस घराने के महान तबला वादक पंडित सामता प्रसाद से प्राप्त की। तबला में स्वर्ण पदक प्राप्त करने के बाद उनकी लय और ताल की गहरी समझ ने उनके संगीत को एक सुदृढ़ आधार प्रदान किया। इसी दौरान उन्होंने संतूर सीखने की प्रेरणा प्राप्त की और महान संतूर वादक पंडित भजन सोपोरी के सानिध्य में सूफियाना घराने की शिक्षा ग्रहण की। लय और स्वर के प्रति उनकी गहरी समझ ने उन्हें एक उत्कृष्ट वादक के रूप में स्थापित किया, जिसके लिए उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगीत संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया। श्री राजकुमार मजूमदार आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के ए श्रेणी के कलाकार हैं तथा ICCR के मान्यता प्राप्त कलाकार हैं। वे भारत एवं विदेशों में एक प्रतिष्ठित कलाकार के रूप में अनेक मंचों पर अपनी प्रस्तुतियां दे चुके हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक we bring to you a santoor recital by Rajkumar Majumdar. Rajkumar Majumdar is one of the most versatile santoor players in India, renowned for his distinctive style and exceptional tonal quality. His performances are widely admired by music connoisseurs, particularly for his remarkable ability to play the santoor with both hands in a vibrant and dynamic manner, creating a truly captivating musical experience. He began his musical journey with training in tabla under his father, the eminent classical vocalist, late Sangeet Sadhak, Pandit Prashant Majumdar. He later underwent advanced training in tabla under illustrious gurus including Pandit Prem Ballab of the Delhi Gharana, Professor Gyan Prakash Ghosh of the Farrukhabad Gharana, and the legendary Pandit Samata Prasad of the Banaras Gharana. A gold medalist in tabla, his deep understanding of rhythm laid a strong foundation for his musical evolution. During this period, he was inspired to learn the santoor under the guidance of the legendary santoor maestro, Pandit Bhajan Sopori of the Sufiana Gharana. His innate sense of rhythm combined with melodic sensitivity enabled him to emerge as a distinguished instrumentalist, earning accolades at both national and international levels from various prestigious musical organizations. Rajkumar Majumdar is an A-grade artist of All India Radio and Doordarshan, and an empaneled artist of ICCR. A celebrated performer in India and abroad, he has presented his art on numerous prestigious occasions.
0: आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं उजित उदय कुमार। राजकुमार मजुमदार अपने कार्यक्रम का आरंभ राग जनसम्मोहिनी से कर रहे हैं। प्रस्तुत है आलाप जोड़ और झाला। विलंबित रचना रूपक ताल में निबद्ध है और मध्य लय रचना तीन ताल में निबद्ध है।
1: He is accompanied on tabla by उजित उदय कुमार। राजकुमार मजुमदार begins his संतूर recital with राग जनसम्मोहिनी, presenting आलाप जोड़ एंड झाला। विलंबित कॉम्पोजिशन इज सेट टू रूपक ताल एंड मध्यलय। द्रुत कॉम्पोजिशन इज सेट टू तीन ताल।

0: ये था राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग जनसम्मोहिनी। राग जनसम्मोहिनी के बाद लीजिए अब सुनिए राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग आभोगी। मध्य लय व द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है।
1: That was राग जनसम्मोहिनी। Continuing his recital, he now presents राग आभोगी। मध्य लय एंड द्रुत कॉम्पोजिशन इज सेट टू तीन ताल।

0: अभी आप सुन रहे थे राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग आप होगी। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे उजित उदय कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: You just heard Santoor Recital by Rajkumar Majumdar. With this, we come to the end of tonight's national program of music. He was accompanied on tabla by Ujit Uday Kumar. This program was earlier recorded in the studios of Akashwani Delhi. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashwani.

अभी श्रोता सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी में और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचारों की प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रामाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा

मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे।

0: तमिलनाडु में तमिलग्म वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोक भवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
1: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। दो विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को एक सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्रा पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। भारतीय तटरक्षक बल ICGS ने आज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में नई पीढ़ी के अदम्य श्रेणी के फास्ट पेट्रोल वेसल श्रृंखला के नवीनतम पोत ICGC अचल को सेवा में शामिल किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये पोत तटीय और अपतटीय निगरानी, अवरोधन गतिविधि, खोज और बचाव, तस्करी रोधी अभियान और समुद्री प्रदूषण से निपटने के अभियान में सहयोग करेगा। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डेम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल MTRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renuka. Suvendu Adhikari took oath as the first BJP Chief Minister of West Bengal today. Governor R.N. Ravi administered the oath of office and secrecy to Mr. Adhikari at a grand ceremony held at the Brigade Parade Grounds in Kolkata. Along with him, 5 other MLAs including Dilip Ghosh, Agni Mitra Paul, Ashok Kirtanya, Nisit Pramanik and Shuddhiram today were sworn in as cabinet ministers. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Chief Ministers of various NDA and BJP ruled states, BJP President Nitin Naben and several other leaders of BJP attended the ceremony. The swearing-in ceremony was held on Pochishe Boishak, marking the 165th birth anniversary of poet Guru Rabindranath Tagore. The BJP registered a decisive victory in the recent state assembly elections, securing 207 seats in the 294-member house and ending the 15-year rule of the Trinamool Congress, which was reduced to 80 seats. In Tamil Nadu, TVK Chief C. Joseph Vijay today met Governor Rajendra Arlekar.

प्रसारण सभा यहीं समाप्त होती है। कल सुबह 5:53 पर प्रातःकालीन प्रसारण सभा में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। जय हिंद।